FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। श्रोताओं, आज बुधवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ माह की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। इस समय सुबह के 6 बजने वाली है। हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
2: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कुब्जे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की दो दिन के फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। उनके द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे। श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में GNKNM नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर में अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित

0: करेंगे। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रस्तावित है। श्री चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर और सीआर पाटिल के साथ राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर कर सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं। 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत का पहला मैच 15 अगस्त को वेल्स के साथ होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है देश वंदना और भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। तिरंगा देश की शान है, हर भारतीय का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद का ज्ञान है। तिरंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है।

पंडित भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में पंडित नरेंद्र शर्मा की भक्ति रचना आप सुन रहे थे। संगीत निर्देशन श्रीनिवास खाले का था।

मनोज मुंतशिर का लिखा भक्ति गीत आपने सुना मधु स्मिता की आवाज़ में। संगीत तैयार किया था पायल देव ने। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, आज का मनुष्य बाहरी सौंदर्य, आकर्षक व्यक्तित्व और भौतिक उपलब्धियों को ही जीवन की सफलता और सुंदरता मान बैठा है, जबकि वास्तविक सौंदर्य न चेहरे की चमक में है और न ही वैभव के प्रदर्शन में। जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य पवित्रता है। पवित्रता का अर्थ है विचारों की शुद्धता, भावों की निर्मलता और कर्मों की श्रेष्ठता।

0: पंडित सुखदेव और पंडित गोपाल शर्मा का गाया भक्ति गीत आपने सुना। रचना थी पंडित रामानंद शर्मा की और धुन तैयार की थी मुरली मनोहर स्वरूप ने। और इसी के साथ आज की आराधना संपन्न हुई। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 6:30 हुए हैं। खेती की बात कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है अदरक की खेती। वाचक है रूपेश कंवर।
1: संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। मैं हूं अपन के रेडियो संगवारी पंचू भाई रूपेश कुमार कंवर। आज परिवर्तन खेती के तहत अगर बात करी किसान भाई हो, तो अगर हमन परिवर्तन खेती के माध्यम से मसालेदार पौधा लगावा थन, जैसे कि हल्दी है, अदरक है, कहीं न कहीं हमन अवैया बेर में माटी के उपजाऊ क्षमता बढ़ा सकत हन। संगे संग हमन परिवर्तन खेती के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा हमन फसल अपना के दोहरा आमदनी कमा सकत हन। मसालेदार खेती करे बर आज सरकार कति ले योजना घलो हवय, जेमा हमन ला खेती के माध्यम से अनुदान प्राप्त घलो मिलथे। जैसे कि बात करी किसान भाइयों, आपन अभी के बेरा म हल्दी के खेती करा था या अदरक के खेती करा था, तो आपके लखठा के जन उद्यान विभाग हवा है, वहाँ के अधिकारी कर अपन संपर्क करके गोड़ बात कर सकत था कि हमन अभी के बेरा म अदरक के खेती करना चाहतन, हल्दी के खेती करना चाहतन, का योजना हवा एक बारे में बताओ गई। तो संगवारी हो, आज हमन बात करी अपन करा खेती की बात में अदरक के खेती के। अदरक के खेती ल संगवारी हो, हमार छत्तीसगढ़ में नकदी फसल के रूप में जाने जाते हैं। जलवायु की बात करी तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की जलवायु अदरक के खेती पर सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। माटी के गोड़ बात करी किसान भाई हो, बालुई माटी, डुमड़ माटी सबसे उपयुक्त रहते, और संगे संग हम ये बात के चेत करना चाहिए कि यहाँ पानी की निकासी आसानी रूप से हो सके। काली माटी में हमन देखी किसान भाई हो, तो अदरक के खेती करत हन तो माँ कंद सड़े के ज़्यादा संभावना बने रहते हैं। भुइया की पीएच के मान की बात करी 5.5 से 6.5 अगर हुआ थे सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। खेत के तैयारी के गोड़ बात करी किसान भाई हो, तो हमन ला अदरक के खेती करे बर 2 से 3 अच्छा देसी नांगर से जोताई करना चाहिए, और आखिरी बेरा में हमारा गोबर खाद करीबन 20 से 25 प्रति एकड़ पाछू हमारा छिड़काव करना चाहिए। संगे संग नीम की खल्ली अगर 200 किलो प्रति एकड़ मिलावत हन, तो एमा हमन अदरक की खेती में ज़्यादा से ज़्यादा हमन आमदनी घलो कमा सकत हन। बाड़ी में अगर बोवत हन, तो सबसे पहले हमारा क्वारी बनाना बहुत ही आवश्यकता हो, जला 1 मीटर चौड़ी, 15 सेंटीमीटर ऊँची और 30 सेंटीमीटर नाली हमारा छोड़ देना चाहिए, ताकि पानी है आसानी से निकासी हो सके। बीज बुआई के बात करी किसान भाइयों, तो अभी के बेरा सबसे उपयुक्त हवा है, कबर के अभी बरसात के दिन हवा है। हमन ये जुलाई महीना के आखिरी सप्ताह तक हमन अदरक के खेती बुआई कर सकत हन। और बीज दर की बात करी किसान भाइयों, 800 से 1000 किलो प्रति एकड़ के पाछू हमन बीज के आवश्यकता पड़ते। एमा हमन विशेष करके चेत करी तो जो स्वस्थ बीज हवा है ओला हमन ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सके। कई बार ऐसे होते कि हमन कोनो भी खेती किसानी करथन, तो बाजार हाट ले जोन भी बीजा लावा थन प्रमाणित बीजा, तो सबसे पहले हमें उपचारित करना बहुत ही आवश्यकता होते। उपचारित करके अगर बुआई करा थन, तो कोनो प्रकार के रोग व्याधि लगे के संभावना बहुत ही कम बने रहते। तो बीजा उपचारित करे बर संगवारी हो, अपन कार्बोडिजिम 2 ग्राम, मैकोजेब 2 ग्राम लीटर 30 मिनट तक हमें डुबा देना चाहिए, और संगे संग हमें जिसे बुआई करा थन कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधा की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर हमन ला रखना चाहिए। गहराई की बात करी संगवारी हो, तो हमन ला अदरक के खेती ला 4 से 5 सेंटीमीटर गहरा हमन ला लगाना चाहिए, ताकि कोनो प्रकार के यहाँ नुकसान झन होए। ज्यादा फसल पर किसान भाई हमन ला जितके ज्यादा होए जैविक खाद के उपयोग करत हन, तो हमन ज्यादा से ज्यादा हमन आमदनी कमा सकत हन। बुआई की बेरा संगवारी हो, हमला अगर हमन अच्छे से जैविक खाद मिला के अगर हमन बुआई करत हन, अवैया बेरा में ज्यादा से ज्यादा हमन आमदनी कमा सकत हन। जैसे रासायनिक खाद की बात करी, पोटास 20 किलोग्राम प्रति एकड़ पाछू हमला मिलाना चाहिए। पानी की बात करी संगवारी, 15 से 20 दिन बाद अंतराल हमला पहली के बेरा हमला छिड़काव करना चाहिए। बरसात के बेरा भुइया हाँ कच्चा कच्चा रहते, तो ये बेरा हमला पानी छिड़काव नहीं करना चाहिए। कोनो भी फसल अपनाथन संगवारी हो, तो वहाँ विशेष करके हमें निंदाई गुड़ाई करना बहुत ही आवश्यकता हो गया। अगर हम मल्चिंग पद्धति के माध्यम से अदरक की खेती करते हैं, तो एमा क्या है कि आमदनी भी ज़्यादा होती है और कांदा ज़्यादा ग्रोथ घलो होती है।

0: एमा कोनो प्रकार के खरपतवार आए के संभावना बहुत कम रहते, साथ ही साथ एमा भुइयां के नमी क्षमता ह बने रहते। संगवारी हो, अदरक के खेती करत हन, शुरुआती बेरा में हमला लगभग 30 दिन बाद पहली हमला निंदाई कोड़ाई करना चाहिए। ओकर बाद हमला एम हल्का से माटी चढ़ाना चाहिए। माटी जैसे चढ़ावत हन संगवारी हो, तो एमा कांदा के ग्रोथ बढ़ते। और ए प्रकार के अगर हमन अभी के बेरा में अदरक के खेती करत हन, तो अवैया बेरा में अदरक के खेती के माध्यम से दोहरा हमन आमदनी कमा सकत हन। राम राम, जय जोहार।
1: कार्यक्रम खेती की बात में अभी आप अदरक की खेती विषय पर जानकारी सुन रहे थे और वाचन स्वर रूपेश कंवर का था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है रामचरित मानस का गायन। मुख्य गायक कलाकार है ए हरिहरन और उत्तरा केलकर। संगीत संयोजक है सतीश भाटिया।

भरत को अयोध्या के राजपथ के साथ श्री राम को 14 वर्षों का वनवास देने की कैकेयी की वरदान याचना से अयोध्यावासी स्तब्ध हैं। श्री राम के चरणों में भरत की प्रीति जग विदित है। चंद्रमा की शीतल किरणों से आग की चिंगारियां भले ही बरसने लगें, किंतु भरत स्वप्न में भी श्री राम का विरोध नहीं कर सकते। राज परिवार का हितैषी नारी समाज कैकेयी को तरह तरह से समझाने की चेष्टा कर रहा है। अनुनय विनय के साथ साथ कुछ लोग रानी कैकेयी की कठोरता की भर्त्सना कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति कटु वचन भी बोल रहे हैं। सबके मन में आशंका है कि क्या राम की अनुपस्थिति में भरत अवध के राज्य का सुख भोगना स्वीकार करेंगे? क्या राजा दशरथ पुत्र का वियोग सहन कर सकेंगे? क्या राम, लक्ष्मण, सीता और स्वयं दशरथ जी के बिना सब कुछ उजड़ नहीं जाएगा?

रामचरित मानस का गायन अभी आप सुन रहे थे। मुख्य गायक कलाकार थे ए हरिहरन और उत्तरा केलकर। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। कार्यक्रम नवविहान के अंतर्गत आज आप सुनेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में छोटी सी चर्चा। श्रोताओं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई एक प्रमुख शत प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में असंबद्ध बस्तियों को हर मौसम में चलने योग्य पक्की सड़कों से जोड़ना है। इस योजना का लाभ उन गांवों और बस्तियों को मिलता है जिनकी आबादी मैदानी क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों और रेगिस्तानी इलाकों में 250 या उससे अधिक है। श्रोताओं, ये योजना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से लागू की जाती है। योजना की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। योजना मुख्य रूप से उन गांवों और बस्तियों को 12 मासी पक्की सड़कों से जोड़ना है जो अब तक सड़क संपर्क से वंचित थे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों, छात्रों और आम जनता की बाजारों, स्कूलों और अस्पतालों तक पहुंच आसान हो जाती है। श्रोताओं, इस योजना का खर्च केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मिलकर उठाया जाता है। मैदानी क्षेत्रों के लिए यह अनुपात 60:40 है जबकि उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों के लिए यह 90:10 है, यानी 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार।

श्रोताओं, यह योजना अब तक कई चरणों में लागू की गई है। पहले चरण में नई सड़कें बनाई गई, दूसरे चरण में पुरानी सड़कों का उन्नयन किया गया और तीसरे चरण का फोकस ग्रामीण कृषि बाजारों, स्कूलों और अस्पतालों को जोड़ने वाली सड़कों के नेटवर्क को मजबूत करना रहा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क सुविधा बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा 2024-25 से 2028-29 तक लागू किया गया है। इसके तहत 70 करोड़ रुपए के कुल बजट से लगभग 62,500 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे देश के दूर दराज के 25,000 असंबद्ध गांव और बस्तियों को 12 मासी पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा।

श्रोताओं, योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी और प्रगति रिपोर्ट देखने के लिए आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

कार्यक्रम नवविहान के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में छोटी सी जानकारी। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हो चुके हैं। श्रोताओं, ये वक्त होता है कार्यक्रम विवरण का। आज सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज सुबह। इस कार्यक्रम में सूचनाओं और गीतों के साथ साथ आज आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, यादों के झरोखे से। पुराने फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद आप सुनेंगे सुबह 10:00। प्रस्तुति सुनील चिपड़े की होगी। अमराई कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर आज गायक कलाकार होंगे जीडी मानिकपुरी और साथी, गया सिंह राज, नीका साहू और साथी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे सुबह 9:55 पर और 11:55 पर। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का प्रसारण आप सुनेंगे सुबह 11:00। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे सुबह 9:00 से 9:55 तक, 11:30 से 11:55 तक, 12:00 से शाम 5:00 तक और फिर रात 9:15 से रात 10:00 तक।

आज रात 8 बजे ही आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे संसद में हुई कार्यवाही की समीक्षा। दिल्ली केंद्र से ही रात 10 बजे रिले करेंगे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। शाम 5 बजे सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। युवा जगत कार्यक्रम में शाम 5:05 पर आज की बात का विषय अपनी सेहत की देखभाल और युवा स्वास्थ्य, इन विषयों पर चर्चा की जाएगी। क्रम कला साहित्य में आज आप सुनेंगे स्वतंत्रता आंदोलन, लोकमान्य तिलक और चंद्रशेखर आजाद। प्रस्तुति नेमी चंद साहू की होगी। चित्रपट संगीत शाम 5:05 पर। ईमेल करें, गीत सुने शाम 6:20 पर और शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा सुनेगा रात 8:15 पर।

शाम 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में क्रमबेरा के गोठ में चर्चा का विषय मसाला वाले फसल के खेती में बहुत फायदा। भेंट वार्ता में सुनिएगा सफल कृषक से भेंट, साथ ही सुनिएगा

0: गीत, मौसम, मंडी की जानकारी और किसान भाई बहनों को सामयिक सुझाव भी दिए जाएंगे। हम अपने सुनने वालों को बता दें, आज रात 8 बजे संसद समीक्षा हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। समाचार थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, पहले संस्कृत और फिर हिंदी में।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। प्रशासनेन उक्तं यत् नीट प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे तदनुबद्ध विषयेषु च संसदि चर्चायै प्रशासनं सज्जमस्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीय मन्त्री जितेन्द्र सिंहः लोकसभायां विपक्ष नेतारं राहुल गांधिनम् आरोपितवान् यत् प्रशासनस्य आश्वासनस्य अनन्तरमपि सः नीट विषयक चर्चायाः स्वपूर्वामाग्रहात् निवृत्तः।
2: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: पूर्वाहणे कांग्रेस दलस्य अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अन्ये दल सदस्या नीट विषयक चर्चा आधृत्य प्रदर्शनम अकुर्वन्। केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह तथा केन्द्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन लोक कल्याण मार्गस्थते प्रदर्शनस्थले कांग्रेस नेतृभिः सह मेलनं कृतवन्तौ। तत्रैव संसदि विपक्ष सदस्यैः पुनः पुनः कृतैः व्यवधानैः लोकसभा राज्यसभा च नीट प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणं समेत्य विविध विषयेषु ह्यः आदिवसं यावत् स्थगिते अभवताम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सद्यः एव जाते नीट परीक्षायाः प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे संलग्न जनान् विरुध्य दृढ़ निग्रहं कर्तुं अथ राष्ट्रस्य यूनां हितस्य संरक्षणं च पुनः उद्घाटितवान्। असौ अवदत् यत् भविष्ये एतादृशानां घटनानां निवारणाय प्रशासनेन बहवः उपायाः क्रियमाणाः सन्ति। प्रधानमंत्री एतत् संसद भवन परिसरे राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतेः मंगल मिलन इति नामना अपि प्रख्याते संसदीय दलीयोपवेशने उक्तवान्। वार्ताहरान् संसूचयन् संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजुः अवदत् यत् उपवेशने प्रधानमंत्री देशव्यापिनां भावि परीक्षाणां प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन निवारणाय सर्वेषां संबंधित पक्षाणां समन्वित प्रयत्नानां आवश्यकतां विशेषतया प्रतिपादितवान्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः इत्येषा भारत उत्तर मैसेडोनिया देशयोः आर्थिक सम्बन्धान् विस्तारयितुम् उक्तवती। उभयदेशीय उद्योगिनः व्यापारात् परं निवेश प्राविधिकी नवोन्मेषाधारित दीर्घकालिक सहकार्यं प्रवर्धयितुम् आग्रहम् अकरोत्। स्कोप्जे इत्यत्र भारत उत्तर मैसेडोनिया व्यापार मंचं संबोधयन्ती राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् भारतीय राष्ट्रपतेः उत्तर मैसेडोनिया देशस्य एषा प्रथमा यात्रा अस्ति या उभयदेशयोः संबंध सुदृढीकरणे भारतस्य दृढ प्रतिबद्धताम् द्योतयति। सा अवोचत् यत् वर्तमान व्यापारस्य परिमाणं तस्याः सम्भावनायाः अंशमात्रमेव प्रतिनिधित्वं करोति। अस्य दशकस्य अन्तपर्यन्तं द्वैपाक्षिक व्यापारं द्विगुणं भवितुं शक्यते इति विश्वासः अस्ति। भाजपेति दलं ह्यः लोकसभायाः विपक्षनेतुः राहुलगान्धिनः लोककल्याणमार्गे विरोधप्रदर्शनस्य निन्दामकरोत्। तेन प्रदर्शिताचरणं पूर्णतया अशोभनीयं निन्दनीयं चेति वर्णितवान्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् भाजपेति दलस्य अध्यक्षः नितिननवीनः उक्तवान् यत् एषा घटना दुर्भाग्यपूर्णा अस्ति, भारतस्य राजनैतिक इतिहासे कृष्ण दिवसेति वर्णितवान्। विदेश मंत्री डॉक्टर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसिडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसिडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसिडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्रपति ने डिजिटल नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, औषधि और स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि प्रसंस्करण और हरित ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की दो दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह चेतावनी दी है कि अमरीका हर उस स्थल पर जोरदार हमले करता रहेगा जहां ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम फिर शुरू करने का प्रयास करेगा। व्हाइट हाउस में लेबनन के राष्ट्रपति जोसेफ फाउन की उपस्थिति में श्री ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरान तनाव जारी रखने के बावजूद बातचीत की कोशिश में है। ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमला न करने की चेतावनी देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ऐसा होने पर अमरीका 10 गुना अधिक हमले करेगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रण किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट गतिविधियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किए जा सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति

0: जागरूकता को बढ़ाना है। प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं और 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यों वाली पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम

कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है साथियों। आज मैं हूं आपके साथ सीमा साहू। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस देशभक्ति भरे गीत से।

श्रोताओं, हर वर्ष 22 जुलाई को देश में राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष और एक एकजुट एवं समृद्ध राष्ट्र के लिए जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक है। श्रोताओं, आज के दिन का या भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा महत्व यह है कि 1947 में अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पहले यानी आज ही के दिन 22 जुलाई को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में देश के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकार किया गया था। इसे पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है। बीच में श्वेत पट्टी धर्म चक्र के साथ सत्य और शांति का संकेत है और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाती है। श्रोताओं, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपने आप में ही भारत की एकता, शांति, समृद्धि और विकास का प्रतीक है।

श्रोताओं, स्कूल के दिनों में आपने पाई शब्द जरूर सुना होगा या पढ़ा होगा। श्रोताओं, पाई की बात इसलिए क्योंकि आज है पाई सन्निकटन दिवस। श्रोताओं, ये दिवस हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है। पाई गणित के सबसे प्रसिद्ध प्रतीकों में से एक है। पाई एक गणितीय नियतांक है जिसका संख्यात्मक मान किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात के बराबर होता है। इस अनुपात के लिए पाई संकेत का प्रयोग सर्वप्रथम 1706 में आया। इसका मान लगभग 3.14159 के बराबर होता है। श्रोताओं, पाई का उपयोग आमतौर पर वृत्त की परिधि या क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह वृत्त की परिधि के 1/3 से थोड़ा कम होता है, जिसे वृत्त के व्यास को पाई से गुणा करके जाना जा सकता है। या कहें कि गणित में पाई की जरूरत किसी भी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के बीच का सटीक अनुपात खोजने के लिए पड़ी थी। श्रोताओं, इस स्थिरांक यानी पाई का उपयोग केवल

0: केवल कागजी गणित तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उपयोग वास्तविक दुनिया के क्षेत्रों में भी किया जाता है। पाई के बिना ज्यामिति यानी कि जियोमेट्री की कल्पना नहीं की जा सकती। इंजीनियरिंग, भौतिकी, अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान के साथ साथ कंप्यूटर विज्ञान में भी पाई का उपयोग किया जाता है। पाई एक अपरिमेय राशि है। श्रोताओं, पाई के बारे में आपको और भी जानकारी दे रही हैं गणित की प्राध्यापक डॉक्टर प्रेमलता वर्मा। आइए सुन लेते हैं।
1: आज 22 जुलाई का दिन है, अर्थात अंग्रेजी कैलेंडर के सातवें महीने की 22 तारीख। गणितीय स्थिरांक पाई का लगभग मान भी 22/7 ही होता है, इसलिए 22 जुलाई को कुछ लोग पाई दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे पाई दिवस

0: अंग्रेजी कैलेंडर के सातवें महीने की 22 तारीख। गणितीय स्थिरांक पाई का लगभग मान भी 22 बटे 7 ही होता है, इसलिए 22 जुलाई को कुछ लोग पाई दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे पाई दिवस पूरे विश्व में हर साल 14 मार्च को भी मनाया जाता है। इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि पाई का लगभग मान 3.14 होता है, इसलिए 14 मार्च को भी पाई डे मनाया जाता है। पाई का आविष्कार नहीं किया गया था, बल्कि इसका अस्तित्व प्रकृति में पहले से ही छिपा हुआ है। प्राचीन काल में जब मनुष्य को परिवहन की आवश्यकता हुई, तब उसने पहिया बनाया। प्रारंभ में पहिया पूरी तरह गोल नहीं बन पाया। तब उसने देखा कि पहिए को गोल बनाने के लिए उसके प्रत्येक बिंदु की दूरी उसके केंद्र से समान होनी चाहिए। इस दूरी को बाद में त्रिज्या कहा गया। यह भी देखा गया कि पहिया चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके चारों ओर के घेरे अर्थात परिधि और उसके व्यास यानी केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा की लंबाई का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। इस अनुपात का मान दशमलव के बाद खरबों अंकों तक ज्ञात किया जा चुका है। इसके अंकों में ना कोई निश्चित पुनरावृत्ति होती है और ना कोई नियमित पैटर्न दिखाई देता है। यह अनंत तक चलता रहता है, यानी यह एक अपरिमेय संख्या है। इसी स्थिर अनुपात को पाई नाम दिया गया। अब प्रश्न उठता है कि इस अनुपात को पाई ही क्यों कहा गया। पाई ग्रीक वर्णमाला का 16वां अक्षर है। पाई पेरिफेरिया से संबंधित माना जाता है, जिसका अर्थ परिधि या घेरा होता है। पाई दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1988 में भौतिक विज्ञानी लैरी शॉ द्वारा कैलिफोर्निया के विज्ञान संग्रहालय में की गई थी। दैनिक जीवन में पाई के बहुत से उपयोग हैं, जैसे वास्तु और निर्माण के क्षेत्र में गोल खंभों, गुंबदों और पाइपों का डिजाइन तैयार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह तय करने में मदद करता है कि किसी खंभे या टनल को बनाने के लिए कितनी सामग्री जैसे कंक्रीट या स्टील की आवश्यकता होगी। वाहनों के पहिए जैसे साइकिल, कार या बाइक के पहिए की गोलाई और उसके द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी निकालने के लिए पाई की आवश्यकता होती है। भोजन और पैकेजिंग में पिज्जा, केक का आकार और क्षेत्रफल मापने में या विभिन्न आकारों के डिब्बे व बोतलों का आयतन निर्धारित करने में इसका इस्तेमाल होता है। घड़ियों की सुइयों की गति, विभिन्न खेलों के रनिंग ट्रैक या क्रिकेट फुटबॉल के बॉल्स का आयतन और माप पाई के आधार पर ही तय किए जाते हैं। हमारे फोन में रेडियो तरंगे, वाईफाई और ब्लूटूथ सिग्नल एक निश्चित गोलाकार दायरे में काम करती हैं। इन तरंगों की आवृत्ति और संचार को नियंत्रित करने वाले वेव इक्वेशंस में पाई शामिल होता है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में देखें तो इसरो जैसी अंतरिक्ष एजेंसियां उपग्रहों को लॉन्च करने, उनकी कक्षा की गणना करने और अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण को निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग करती है। चिकित्सा के क्षेत्र में आंखों के लेंस की क्षमता, खून की नसों के आयतन और एमआरआई या अल्ट्रासाउंड स्कैन जैसी इमेजिंग तकनीकों में पाई का बहुत बड़ा योगदान होता है। जीव विज्ञान के क्षेत्र में डीएनए की संरचना को समझने में पाई का उपयोग किया जाता है। तो आज हमने देखा कि पाई हमारे अध्ययन में कितना उपयोगी है। अंत में मैं आप सभी को पाई दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और आकाशवाणी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पाई के महत्व को जन साधारण तक पहुँचाने का मुझे अवसर प्रदान किया। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप पाई के बारे में जानकारी सुन रहे थे और इसे बता रही थी गणित की प्राध्यापक डॉक्टर प्रेमलता वर्मा। आज सुबह कार्यक्रम में अब आइए आगे बढ़ते हैं और सुन लेते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट।
2: इस समय आप सुन रहे हैं यातायात संबंधी सूचनात्मक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर। मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा आज अपनी मांगों के संबंध में दोपहर 3 बजे पुराना कंपोजिट बिल्डिंग परिसर में एकत्र होकर वहां से कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन प्रस्तुत करने का आह्वान किया गया है। ज्ञापन सौंपने जाने वाले सभी सदस्य ये भली भांति जानते ही हैं कि यह स्थान शासकीय कार्यालयों का

0: केंद्र है, पास ही माननीय जिला न्यायालय भी स्थित है। इसलिए आप सभी ये 100% सुनिश्चित करें कि आपके इस प्रदर्शन से आम यातायात या शासकीय कार्य किसी भी स्थिति में बाधित ना हो। मित्रों, हाल की मूसलाधार वर्षा के साथ ही अभी भी लगातार हो रही वर्षा से शहर के साथ साथ गांव की भी अनेकों सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़कों के टूटने फूटने से वाहनों की स्वाभाविक गति प्रभावित हुई है। पुनः आप सभी से यही कहना है कि इस स्थिति में सड़क में बहुत ही चैतन्य रहें, धीरे चलें, प्रयास करें सड़कों में जहां पानी भरा हो वहां से अपने वाहन के पहिए बचाकर चलें। मित्रों, बच्चों का मन कोरा कागज की तरह होता है, उसे जो भी सिखाएंगे या बताएंगे वह उसका पूरी तरह पालन करता है, आगे चलकर यही उसकी आदत में शुमार हो जाता है। बच्चे के माता पिता या शिक्षक उसके आदर्श हुआ करते हैं, बच्चा उनकी हर आदत गतिविधि आदि का अनुकरण करता है। इसलिए घर में प्रत्येक माता पिता या अभिभावक को अथवा उस स्कूल के सभी शिक्षकों से यही अनुरोध है कि जब भी किसी भी वाहन के साथ आप जा रहे हो यातायात के नियमों का पूरी तरह पालन करें। जैसे यदि आप दोपहिया वाहन से कहीं जा रहे हो या कोई शिक्षक दोपहिया वाहन से स्कूल आ रहा है तो हेलमेट पहनकर ही आवें। ठीक इसी प्रकार यातायात संकेत का पूरी तरह पालन करें, तेज रफ्तार वाहन कभी भी ना चलाएं, दोपहिया में तीन सवारी कभी ना चलें, मोबाइल से बातें करते वाहन बिल्कुल ना चलाएं, कार जैसे चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं और गलत दिशा में वाहन चलाने से बचें। विशेषकर सभी शिक्षकों से निवेदन है, बच्चा स्कूल में पढ़ने सीखने जाता है और ये अच्छी आदतें आप बच्चों को तभी सिखा सकते हैं जब आप स्वयं इन नियमों के प्रति या बच्चों के प्रति निष्ठावान होंगे। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
1: जी हाँ साथियों, यातायात के नियमों का पालन हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। आप स्वयं भी इनका पालन करिए और औरों को भी इसके लिए प्रेरित करिए। ये था आज का ट्रैफिक अपडेट।
2: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
1: श्रोताओं, 22 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय आम दिवस। वर्ष 1950 में आम के फलों को राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया। मैंगीफोरा इंडिका यानी आम, जिसे फलों का राजा कहा जाता है, एक उष्णकटिबंधीय फल है, यानी यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की गर्म जलवायु में अच्छी तरह उगता है। श्रोताओं, ये फल 4000 वर्षों से अधिक समय से भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक प्रथाओं में भी इसका उल्लेख मिलता है। आज भारत विश्व का

0: सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है और वैश्विक आम उत्पादन का लगभग 50% का योगदान देता है। श्रोताओं, आम तौर पर आम अंडाकार होते हैं और इसके छिलके का रंग हरा, पीला और लाल हरा होता है। रसीले और स्वादिष्ट फल आम को सम्मानित करने के लिए हर साल राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं, भारत में आम सिर्फ एक फल नहीं बल्कि धूप, मिट्टी की सुगंध, बचपन की दोपहरी और संस्कृति का रस है। हमारे देश में लोग जेठ की गर्मी और लू की तपिश जिस फल के सहारे जी जाते हैं वो है आम। आम सांस्कृतिक, कृषि और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से भारत जैसे देश में जहाँ इसकी व्यापक रूप से खेती और खपत होती है। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुन लेते हैं ये संदेश।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, हिंदी सिनेमा के प्रमुख पार्श्व गायक मुकेश, जिनका जन्म 1923 में आज ही के दिन यानी 22 जुलाई को हुआ था, इन्हें पहला काम 1945 में फिल्म पहली नजर में मिला। हिंदी फिल्म में मुकेश ने जो पहला गाना गाया था वो था दिल जलता है तो जलने दे। इस गीत में मुकेश के आदर्श गायक केएल सहगल के प्रभाव का असर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। श्रोताओं, मुकेश का जन्म दिल्ली में हुआ था। इंडस्ट्री में शुरुआती दौर मुश्किलों भरा था, लेकिन इनकी आवाज़ को पसंद किया गया। 40 के दशक में मुकेश का अपना पार्श्व गायन शैली था। 50 के दशक में इन्हें एक नई पहचान मिली जब उन्हें राज कपूर की आवाज़ कहा जाने लगा। 60 के दशक में मुकेश का करियर चरम पर था और 70 के दशक में मुकेश हर बड़े फिल्मी सितारे की आवाज बन गए थे। उन्हें याद करता है आकाशवाणी का बिलासपुर परिवार और इनके गाए गीतों को हम आपको सुनवाएंगे यादों के झरोखे से कार्यक्रम में, अब से बस थोड़ी ही देर में प्रायोजित कार्यक्रम के बाद।

0: आज सुबह।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए पेश है प्रायोजित कार्यक्रम हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी।
2: हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी।

जुलाई 1947 में बंटवारे के समय हुए दर्दनाक सांप्रदायिक बंटवारे के बीच एक धार्मिक और कई पीढ़ियों से चले आ रहे पंजाबी ईसाई परिवार में जन्मी राजकुमारी अमृत कौर भारत के राष्ट्रीय ध्वज को ऐतिहासिक रूप से अपनाए जाने के दौरान राष्ट्रीय और सामाजिक एकता के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरी। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने आधिकारिक तौर पर तिरंगे को अपनाया। राजकुमारी अमृत कौर ने झंडे के रंगों को किसी संकीर्ण धार्मिक नजरिए से देखने की बजाय तिरंगे को एक धर्मनिरपेक्ष प्रतीक के रूप में पेश किया, जो हर नागरिक के लिए साहस, शांति और प्रगति का प्रतिनिधित्व करता था। सांप्रदायिक घावों को भरने के लिए उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई पारसी धर्मों की महिलाओं के विविध समूहों को एकजुट किया ताकि वे खुद खादी के पहले आधिकारिक झंडे तैयार कर सके, जिसमें खादी का इंतजाम करना, हाथ से सूत काटना और झंडे की सिलाई करना शामिल था। महिलाओं के इस आपसी सहयोग और एकजुटता ने बंटवारे की ओर बढ़ रहे देश के सामने एक मजबूत और एकजुट घरेलू मोर्चे की मिसाल पेश की। इससे यह साबित हुआ, जब भौगोलिक सीमाएं खींची जा रही थी तब भी भारत की महिलाएं एकजुट थी। सबसे अहम बात यह कि जुलाई में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हुई कमेटी की चर्चाओं के दौरान राजकुमारी अमृत कौर ने महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए अलग चुनाव के क्षेत्रों और आरक्षित विधायी सीटों का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुरक्षात्मक कोटे को कानूनी रूप देने से भारतीय समाज हमेशा के लिए राजनीतिक गुटों में बट जाएगा, जिससे सच्चा सामाजिक एकीकरण नहीं हो पाएगा। उनका मानना था कि एक सुरक्षित और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है अल्पसंख्यक समुदाय अपने साथी नागरिकों पर भरोसा करें और विधायी अलगाव के बजाय योग्यता और विचारों के आधार पर जनादेश हासिल करें। इन विशेषाधिकारों को स्वेच्छा से त्याग कर उन्होंने नए गणतंत्र के धर्मनिरपेक्ष ढांचे में अटूट विश्वास दिखाया। जुलाई 1947 में उनकी दोहरी मुहिम, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को साझा गर्व के प्रतीक के तौर पर आगे बढ़ाया और साथ ही समुदायों को बांटने वाली राजनैतिक दीवारों को गिराया। झंडा

उन्हें राष्ट्र की संस्थापक माताओं में से एक के तौर पर स्थापित किया। अपनी दूरदर्शी लीडरशिप से राजकुमारी अमृत कौर ने साबित कर दिया कि उनकी ईसाई विरासत और भारत के प्रति गहरा प्रेम आपस में पूरी तरह जुड़े हुए थे। उस अहम महीने में उनकी कोशिशों ने अलग अलग समुदायों के बीच भाईचारे का ताना बाना बुनने में मदद की, जिससे यह साबित हुआ कि सच्ची राष्ट्रीय एकता सामूहिक भलाई के लिए सक्रिय और निस्वार्थ योगदान में ही निहित है।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:36 हुए हैं। लीजिए पेश है पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से।

संगीत सम्राट तानसेन, इस फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज़ में। गीत लिखा था शैलेंद्र ने और धुन तैयार की थी एस एन त्रिपाठी ने।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

इंदिवर का लिखा गीत अभी आपने सुना मुकेश की आवाज़ में। संगीत निर्देशन रोशन का था और फिल्म थी अनोखी रात। पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई

0: कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 23 जुलाई 2026 यानी कल स्टूडियो में पशु चिकित्सा सेवाएं मुंगेली के संयुक्त संचालक डॉक्टर आर एम त्रिपाठी उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा वर्षा ऋतु में पशुओं को होने वाली बीमारियां एवं उनके बचाव, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा वर्षा ऋतु में कुत्तों में होने वाली आक्रामकता या कुत्तों के काटने से होने वाले रेबीज के बीमारियों से बचाव के उपाय। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665 92 और 3100026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 23 जुलाई 2026 और 24 जुलाई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आ गए सैलरी? नहीं झुमके?
3: ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमको का क्या?
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: तीसरी कसम फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज़ में। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने और धुन तैयार की थी शंकर जयकिशन ने।
1: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।

छलिया फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज़ में। गीत लिखा था कमर जलालाबादी ने और धुन तैयार की थी कल्याण जी आनंद जी ने। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सूचना सुनिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। नामांकन या अनुशंसा ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक जमा किया जा सकता है। विस्तृत विवरण राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई और अब आइए सुनते हैं यादों के झरोखे से कार्यक्रम का ये आखिरी गाना।

नीरज का लिखा गीत आपने सुना, शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में, मुकेश की आवाज़ में, फिल्म पहचान से। और इसी के साथ यादों के झरोखे से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो।

0: मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का सामना उन्नति होटा से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
4: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। 3 दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
6: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
7: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित INS मालवण आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें RBU 6000 रॉकेट और DRDO द्वारा विकसित टॉर्पेडोज की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहे श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा

0: और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
2: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुँचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ।
3: UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
4: और मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावती सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं ना कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
1: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन अम्स करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए

0: 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा भी की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नास।
2: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जंतर मंतर पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है, पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोकसत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला ने धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीयों को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल ये है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
1: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की 3री बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुड्डा से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: श्रोताओं, अमराई कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक सूचना सुनिए। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नेवरा बिलासपुर में एक वर्षीय व्यवसाय कोपा तथा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोटा में एक वर्षीय व्यवसाय कोपा एवं स्टेनोग्राफर हिंदी तथा द्विवर्षीय व्यवसाय फिटर एवं इलेक्ट्रिशियन की रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु पुनः आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 17 जुलाई 2026 से 24 जुलाई 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट https://cgiti.admissions.nic.in पर पंजीयन कर आवेदन कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी पूर्व से पंजीकृत हैं और अगले चरण में भाग लेना चाहते हैं, वे अपनी लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन कर कंसेंट प्रदान करते हुए निर्धारित शुल्क जमा करें तथा आवश्यकता होने पर च्वाइस फिलिंग में संशोधन या परिवर्तन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी संबंधित संस्था से अथवा उक्त वेबसाइट पर प्रदर्शित हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।
0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: अमराई कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं गया सिंह राज, निका साहू और साथियों का गाया गीत।

0: गंगादास मणिपुरी और साथियों का गाया गीत आपने सुना।
1: ऑडियो विजुअल

0: गया सिंहराज और निका साहू का गाया गीत आपने सुना।
1: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्कार।

0: रास्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

गंगादास मानिकपुरी और साथियों का गाया गीत आपने सुना। अमराई कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, 22 करोड़ की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज
4: और सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
3: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती
1: सुरीली संदली।
5: श्रोताओं, अमराई कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 23 जुलाई 2026 को स्टूडियो में पशु चिकित्सा सेवाएं मुंगेली के संयुक्त संचालक डॉक्टर आर एम त्रिपाठी उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा वर्षा ऋतु में पशुओं को होने वाली बीमारियां एवं उसके बचाव। विषय एक बार फिर सुन लीजिए, वर्षा ऋतु में पशुओं को होने वाली बीमारियां एवं उनके बचाव। और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा वर्षा ऋतु में कुत्तों में होने वाली आक्रामकता और कुत्तों के काटने से होने वाले रेबीज के बीमारियों से बचाव के उपाय। विषय वर्षा ऋतु में कुत्तों

कुत्तों में होने वाली आक्रामकता और कुत्तों के काटने से होने वाले रेबीज के बीमारियों से बचाव के उपाय। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665 92 और 3100026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 23 जुलाई 2026 और 24 जुलाई 2026 को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई और अब आइए अमराई कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत गया सिंह राज और निका साहू का गाया हुआ।

गया सिंहराज और निका साहू का गाया गीत आपने सुना, और इसी के साथ छत्तीसगढ़ी लोक संगीत का कार्यक्रम अमराई अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब से लेकर 9:55 तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

आपने ट्यून किया है विविध भारती और सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं बागी फिल्म का गीत, मोनाली ठाकुर और मीत ब्रोज की आवाजों में, कुमार की रचना, मीत ब्रोज का संगीत।

अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा और प्रीतम का संगीतबद्ध किया ये गीत सुनिए अख्तर चन्नाल की आवाज में। फिल्म का नाम फैंटम।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: हेट स्टोरी 3। इस फिल्म का गीत अरमान मलिक और नीति मोहन की आवाजों में, रश्मि विराग ने इसे लिखा है, अमाल मालिक का संगीत।

आपने ट्यून किया है विविध भारती और सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म का गीत, अश किंग की आवाज।

ए आर रहमान और श्रीनिधि वेंकटेश की आवाजों में अभी आपने सुना ओके जानू फिल्म का ये गीत, गुलजार के बोल थे और संगीत था ए आर रहमान का। इस गीत के साथ ही आज के इस चित्रलोक कार्यक्रम से नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको एक दिलचस्प घटना बताते हैं। एक लड़का था जिसकी बहन की शादी हो रही थी और अभिनेता मोतीलाल चूंकि उसके रिश्तेदार थे इसलिए वो इस शादी में शामिल होने के लिए आए थे। चूंकि माहौल शादी के जश्न का था तो उस लड़के से कहा गया कि तुम गाना गाओ क्योंकि परिवार में सब जानते थे कि इसे गाने का शौक है। उस लड़के ने गाना गाया और सब लोग मुग्ध होकर सुनते रहे। मोतीलाल जी को लगा कि इस लड़के में प्रतिभा है। उन्होंने उसे मुंबई बुला लिया और बस यहां से फिल्म संगीत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया क्योंकि ये नौजवान था मुकेश चंद्र माथुर।

0: हमारे रहेंगे।
1: हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास को खंगालें तो जो सबसे रोशन सितारे हमें नजर आते हैं पुरुष गायकों में, वो हैं मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार। जाहिर है कि इन तीन मुख्य सितारों को अलग कर दें तो फिल्म संगीत के न जाने कितने अनमोल गाने फिल्म संगीत के इतिहास से हट जाएंगे। मुकेश चंद्र माथुर के अपने फैन रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में रहे हैं। सबसे बढ़िया बात तो यह है कि मुकेश की गायकी में ऐसी सादगी, ऐसी सरलता है कि यूं लगता है जैसे वो हमारे लिए गा रहे हैं और हम उनके साथ गा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि आपके परिवार में अंत्याक्षरी हो रही हो, कोई पिकनिक हो, कोई अन्य उत्सव हो, गाने का माहौल हो, तो कोई ना कोई मुकेश का फैन आपको जरूर मिल जाएगा। यूं लगेगा जैसे मुकेश उसकी आवाज में गा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुकेश जी की जीवन यात्रा।
2: मैंने

मुकेश चंद्र माथुर का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। पिता लाला जोरावर चंद इंजीनियर थे और मां थी चांद रानी। दरअसल पुरानी दिल्ली में पैदा हुए इस लड़के के जहन में संगीत की महक बहुत पहले से थी। बहुत बचपन से इस लड़के ने गुनगुनाना शुरू कर दिया था। ये वो दौर था जब सबसे बड़े गायक थे कुंदन लाल सहगल और सभी उनके दीवाने हुआ करते थे। जाहिर है कि यंग मुकेश भी कुंदन लाल सहगल के फैन थे। दसवीं पास की उस जमाने में इतनी पढ़ाई बहुत मानी जाती थी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग में काम करना शुरू कर दिया। तकरीबन यही दिन थे जब उनकी बहन की शादी हुई और वही घटना हुई जो हमने आपको इस कार्यक्रम की शुरुआत में सुनवाई थी, और इस तरह से मुकेश का मुंबई जाने का रास्ता खुल गया। हुआ यूं कि रंजीत मूवी टोन की ओर से एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि एक नए गायक की तलाश जारी है,

फिर क्या हुआ कि चंदूलाल शाह के जारी किए गए इस विज्ञापन को देखकर मुकेश मोतीलाल जी के पास मुंबई आ गए। यहां आने के बाद उन्होंने पंडित जगन्नाथ प्रसाद से संगीत की तालीम लेनी भी शुरू कर दी और उन्होंने बड़ी शिद्दत से ये सपना देखा कि वो गायक अभिनेता बनेंगे। और ऐसा हुआ भी। सन 1941 आया, मुकेश ने अपनी पहली फिल्म साइन की निर्दोष। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया और गाया भी। यानी ये वो पहला गाना है जो मुकेश जी ने गाया, पर इस गाने में मुकेश जी ने प्लेबैक नहीं किया, यानी किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए गाया। ये गाना था दिल ही बुझा हुआ है तो फसले बहार क्या।

मुकेश जी का पहला प्लेबैक गाना कौन सा था ये भी आपको बता देते हैं। सन 1945 में फिल्म पहली नजर बन रही थी। संगीतकार अनिल बिस्वास से मोतीलाल ने ये कहा कि आप मेरे लिए एक युवा गायक से प्लेबैक करवाएं। मुकेश की आवाज जब अनिल बिस्वास ने सुनी तो उन्हें ये आवाज जम गई और फिर मुकेश ने गाया अपना पहला प्लेबैक सॉन्ग पहली नजर फिल्म में।

जब कुंदनलाल सहगल तक इस गाने की ख्याति पहुंची और उन्होंने इस गाने का रिकॉर्ड सुना तो वो चकित रह गए। उन्होंने तपाक से ये सवाल पूछा, ये गाना मैंने कब गाया? इसके बाद उन्होंने मुकेश को अपने घर बुलवाया और कहा कि तुम गाने गाते जाओ। मुकेश एक के बाद एक कई गाने गाते चले गए और कुंदनलाल सहगल उस जमाने के सुपरस्टार, उस जमाने के लाजवाब गायक और अभिनेता मुकेश को मुग्ध भाव से सुनते चले गए। उन्हें लगा कि यही है मेरा उत्तराधिकारी और उन्होंने अपना रियाज वाला हारमोनियम मुकेश को भेंट कर दिया। ये कुंदनलाल सहगल का मुकेश के लिए आशीर्वाद था। सन 1941 में निर्दोष में अभिनय करने के बाद सन 1943 में मुकेश ने एक और फिल्म में अभिनय किया जिसका नाम था आदाब अर्ज। सन 1953 में उन्होंने फिल्म माशूका में अभिनय किया जहां उनकी हीरोइन थी सुरैया और सन 1951 में मल्हार फिल्म में अभिनय किया। संगीतकार रोशन की ये पहली

ये वो दौर था जब मुकेश कुंदन लाल सहगल की छाया में थे, उनके प्रभाव में थे और उनके जैसा गाया करते थे। सन 1948 में नौशाद ने दिलीप कुमार की फिल्म मेला के लिए मुकेश को गाने का मौका दिया और नौशाद के जरिए कुंदन लाल सहगल की छाया से बाहर आया उस जमाने का युवा पार्श्व गायक मुकेश। और फिर बस मुकेश की अपनी शैली तैयार हो गई। सन 1949 तक मुकेश का स्वर कुछ ऐसा हो चुका था।

1948-49 का दौर भारत में फिल्म संगीत के बदल जाने का दौर था। कैसे, आपको बताते हैं। लगातार नई प्रतिभाएं आती चली जा रही थीं और इन नई प्रतिभाओं में शामिल थे युवा संगीतकार शंकर जयकिशन। शंकर सिंह रघुवंशी और जयकिशन पांचाल किस तरह से मिले, ये तो एक इतिहास है। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म बरसात में संगीत देने का मौका दिया और इस युवा संगीतकार जोड़ी ने कई युवा कलाकारों से गाने गवाए, जिनमें से एक मुकेश भी थे। फिल्म बरसात में मुकेश ने दो गाने गाए थे। एक गाना था ये।

इसके बाद राज कपूर, शंकर जयकिशन और मुकेश की इस तरह से टोली बनी कि एक के बाद एक इनकी फिल्में आती चली गईं और इन तमाम फिल्मों में मुकेश के गाने आते चले गए। यहां तक कि मुकेश का आखिरी गीत भी राज कपूर की ही फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था। ये कहानी बाद में, पहले आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताते हैं। जरा सोचिए कि मुकेश ने किस संगीतकार के लिए सबसे ज्यादा गाया होगा। आपने सही सोचा है, शंकर जयकिशन के लिए मुकेश ने कुल 133 फिल्मों में पार्श्व गायन किया, जबकि कल्याण जी आनंद जी के लिए 99 फिल्मों में। जाहिर है कि कल्याण जी आनंद जी भी मुकेश के कम फैन नहीं थे।

चलिए फिर से पीछे चलते हैं, समय के चक्र को घुमाते हैं और पहुंच जाते हैं सन 1948 में। आप सोच रहे होंगे कि यहां हम क्यों आए हैं। दरअसल यहां हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि बरसात वो पहली फिल्म नहीं थी जिसमें मुकेश ने राज कपूर के प्रोडक्शन के लिए गाया था। राम गांगुली के निर्देशन में आग में वो ये गाना गा चुके थे।

0: नहीं।
1: अब राज कपूर के साथ मुकेश ने किन किन फिल्मों के लिए गाया, एक के बाद एक लड़ी में फिल्में और गाने पिरोते हुए आज के फनकार कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आप हमारे साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए जरा अपने पैंट को थोड़ा सा ऊपर मोड़ लीजिए, सिर पर एक

0: है।
1: सन 1964 में राज कपूर ने अपनी बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म बनाई, जो राज कपूर की पहली कलर फिल्म थी, फिल्म संगम। इस फिल्म में मुकेश ने ये मार्मिक गाना गाया था।

सन 1966 तक हम आ पहुंचे हैं और यहां हमारे हाथों में है फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक मारे गए गुलफाम। हमें याद शैलेंद्र की आ रही है जिन्होंने इस पुस्तक पर तीसरी कसम फिल्म बनाई और इस फिल्म में मुकेश ने बड़े मन से गाया।

और फिर सन 1978, मुकेश को अमेरिका की यात्रा पर जाना था और जाने से पहले जो आखिरी गीत उन्होंने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए रिकॉर्ड करवाया वो सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के लिए था।

इस गाने को रिकॉर्ड करने के बाद मुकेश ने एक लंबी उड़ान ली अमेरिका के लिए, और वहां से इससे भी लंबी उड़ान वो इस फानी दुनिया को अलविदा कह के चले गए। ये बातें हुई राज कपूर और मुकेश के साथ वाले गानों की। लेकिन ऐसा नहीं था कि राज कपूर के लिए सिर्फ उनके प्रोडक्शन में मुकेश ने गाया हो। जरा 1950 में केदार शर्मा की बनाई फिल्म बावरे नयन का ये गाना सुनिए और याद कीजिए नीली आंखों वाले राज कपूर को।

अब आप सोच रहे होंगे ये भी कोई बात हुई कि पूरे आज के फनकार कार्यक्रम में केवल राज कपूर की बातें। अरे नहीं नहीं, ये नाइंसाफी हम नहीं होने देंगे। दिलीप कुमार के लिए जो प्लेबैक मुकेश ने किया वो तो लाजवाब था। फिल्म यहूदी का ये गाना सुनिए, शैलेंद्र के बोल हैं।

0: कहीं।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। इस समय 9:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में आकाशवाणी रायपुर से रिले किए जाएंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। आरटीई के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में दाखिले के लिए तीसरा और अंतिम चरण आज से शुरू हो गया है। स्टेट जीएसटी विभाग ने लगभग 10 करोड़ रुपए की कथित टैक्स चोरी के मामले में स्टील कारोबारी विजय यादव को उतई से गिरफ्तार किया। और मौसम विभाग ने आज बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए तीसरा और अंतिम चरण आज से शुरू हो गया है। पात्र अभिभावक आज से 5 अगस्त तक आरटीई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन और आवश्यक संशोधन कर सकेंगे। 10 अगस्त से 14 अगस्त तक ऑनलाइन लॉटरी काउंसलिंग के माध्यम से चयनित बच्चों की सूची जारी की जाएगी और 17 अगस्त से 25 अगस्त तक लॉटरी में चयनित बच्चों का संबंधित निजी विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित कर लिया जाएगा। राज्यपाल रमन डेका ने वनवासी विकास समिति द्वारा जनजाति बालिकाओं में अध्ययन और पठन पाठन की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित शबरी वाचनालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि शबरी वाचनालय एक दूरदर्शी पहल है जो जनजाति बालिकाओं के

0: अध्ययन, चिंतन, आत्मविकास और व्यक्तित्व निर्माण का केंद्र बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कल भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान संगठन की ओर से दिए गए पुराने कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में 2028 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन की आगामी रणनीति और चुनावी तैयारियों को लेकर भी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने बताया कि आज मोर्चा प्रकोष्ठ की बैठक होगी। इसी क्रम में आने वाले समय में जिले के पदाधिकारियों की बैठक, मंडल, शक्ति केंद्र और फिर मन की बात के साथ बूथ स्तर तक की बैठक आयोजित की जाती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार विक्रम यादव के उपचार के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि विक्रम यादव केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश की सांस्कृतिक धरोहर हैं। उन्होंने बांस वादन कला के माध्यम से भारत की समृद्ध लोक परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया है। संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने परिजनों से दूरभाष पर चर्चा करते हुए बेहतर इलाज और हर संभव सहायता का भरोसा दिया। श्री अग्रवाल ने राजनांदगांव के कलेक्टर तथा मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव के वरिष्ठ चिकित्सकों से भी चर्चा की। राज्य कर स्टेट जीएसटी विभाग ने कार्रवाई करते हुए लगभग 10 करोड़ रुपए की कथित टैक्स चोरी के मामले में स्टील कारोबारी विजय यादव को उतई से गिरफ्तार किया है। विजय यादव आयरन और स्टील स्क्रैप के कारोबार से जुड़ा है और रायपुर, दुर्ग सहित प्रदेश के कई जिलों में उसका व्यवसाय संचालित है। मौसम विभाग ने आज बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि प्रदेश में ये स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहेगी। राजधानी रायपुर के माना कैंप स्थित शूटिंग रेंज में आयोजित 25वीं छत्तीसगढ़ राज्य शूटिंग मीट का कल समापन हो गया। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश भर के सैकड़ों निशानेबाजों ने विभिन्न राइफल और पिस्टल स्पर्धाओं में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम थे। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने आरा दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस को पुनः बहाल कर दिया है। इससे पहले आधारभूत संरचना संबंधी आवश्यक कार्यों के लिए मेगा ब्लॉक के चलते साउथ बिहार एक्सप्रेस को विभिन्न तिथियों में आरा दुर्ग आरा के मध्य आंशिक रूप से रद्द किया गया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य पुलिस सेवा के 10 अफसरों की आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू रायपुर तथा एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी रायपुर में पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। कवर्धा में जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा आज सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक ठाकुरपारा स्थित जिला रोजगार कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आरटीई के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में दाखिले के लिए तीसरा और अंतिम चरण आज से शुरू हो गया है। स्टेट जीएसटी विभाग ने लगभग 10 करोड़ रुपए की कथित टैक्स चोरी के मामले में स्टील कारोबारी विजय यादव को उतई से गिरफ्तार किया। और मौसम विभाग ने आज बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद। प्रस्तुत करता है सुनील चिपड़े।
2: हेलो आपकी पसंद।
3: नमस्कार, कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद में आप सभी का स्वागत। बारिश की फुहारों के साथ आपके प्यार मोहब्बत की जो बारिश आपकी बातचीत के साथ हुई है उसे हमारे लिए सहेजा है हमारे तकनीकी सहयोगी लकरा जी ने। तो मैं सुनील चिपड़े और लकरा जी मिलकर आपका कार्यक्रम में इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, आपको सुनवाते हैं ये पहला फोन कॉल।
4: नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलेज जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से आपका निमित श्रोता
3: इंद्रभान सिंह
4: जी सर।
3: कैसे हैं इंद्रभान जी?
4: ठीक है सर, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। और आपका कार्यक्रम में फोन किया हूँ सर। और आपसे बातचीत हो रहा है, डबल खुशी बढ़ रहा है सर। मौसम एकदम यहाँ बादल किया हुआ है, चारों तरफ बादल है, आप

0: तो दक्षिण दिशा तरफ पानी गिरने का कगार में है। कल बताया गया था मौसम विभाग से कि छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों में भीषण वर्षा और गरज चमक की संभावना है। एकदम सही बात है, सही निकला सर, मौसम विभाग वाले एकदम करेक्ट सही बता।
1: हाँ बिल्कुल, यही विज्ञान है, विज्ञान का भी गलत नहीं होता है।
0: जी सर, विज्ञान के क्षेत्र में तो लोग विज्ञान के क्षेत्र बहुत तेजी से है सर, उसमें हर समाचार हमको हर चीज हर मौसम की जानकारी एकदम सही सटीक मिलता है सर।
1: विज्ञान सही होता है, बल्कि प्रकृति हमें कई बार गच्चा दे जाती है, वो भी इसलिए कि हमने प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ किया है कि वो भी हमें छकाती रहती है।
0: हाँ सर, क्या कहते हम जंगल पेड़ पौधों के अंधाधुंध कटाई कर देते हैं सर, उसके चलते हमको वर्षा सही ढंग से नहीं होता है। पेड़ पौधे के होने से मतलब वर्षा काफी होता है और वर्षा के चलते हमको पूरा जल मिलता है और जल से और सर बिजली पैदा होता है, खेती होता है, घर का सार्वजनिक काम होता है, कई कार्य होते हैं सर। उलट पुलट मौसम हो रहा है, कहीं उमस गर्मी हो रहा है, कभी कम वर्षा हो रहा है, कहीं ज्यादा वर्षा हो रहा है, कहीं पर बादल फट जा रहा है तो कहीं पर वो जनधन का हानि हो रहा है सर। कितने लोग बह जा रहे हैं, कितने लोगों का मकान तोड़ जा रहा है, ये सब मतलब प्रकृति के खेल अजीब निकाला है।
1: प्रकृति के साथ हमने खिलवाड़ किया है तो वो हमारे साथ खिलवाड़ करेगी ही। और जो आपने वर्षा जल की बात की, वर्षा जल को बचाना है, कैच द रेन एक नया प्रोग्राम, उसके तहत जल के संग्रहण का काम, बारिश के पानी के संग्रहण का काम हमें करना है। बताइए इस नोट के साथ आप गीत कौन सा सुनेंगे इंद्रभान जी?
0: सर फिल्म का नाम अगर मिलता है महाचोर का गाना है ना, प्यार के दिन आए काले बादल छाए, गायक किशोर कुमार लता मंगेशकर, ये गीत मिलेगा सर तो जरूर सुना दीजिएगा।
1: आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं और सुन रहे हैं हम सभी मिलकर के।
2: मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अरे बाबा मैं तुमसे प्यार प्यार करती हूँ।
3: मैंने नहीं सुना जरा जोर से, मैंने नहीं सुना जरा जोर से कहो।

0: जी आकाशवाणी बिलासपुर है, कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार,
1: मैं आपका नियमित श्रोता आकाश पांडे, ग्राम भनेसा जिया जाएंगे।
0: आकाश पांडे जी, आप हमारे

0: हमारे नियमित श्रोता हैं
1: जी सर।
0: कितने साल हो गए आप हमें सुनते?
1: 10 साल हो गए।
0: अभी क्या करते हैं आकाश आप?
1: पढ़ाई BA LLB कर चुका हूँ, आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर।
0: अच्छा, क्या सलाह देंगे तमाम छात्रों को, समय कैसे बचाएं?
1: सोशल मीडिया पर ज्यादा वक्त जाया ना करें, बस यही सलाह देना चाहिए।
0: और पढ़ाई पर ध्यान रखें।
1: जी सर।
0: तो आकाश जी बताइए गीत कौन सा सुनेंगे?
1: गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही, चलना ही जिंदगी है, चलते ही जा रही।

0: हेलो।
1: जी, नमस्कार। कौन साहब बोल रहे हैं?
0: नमस्कार सर, मैं कमल कांत मरावी लोरमी ग्राम चचेड़ी से बोल रहा हूँ सर।
1: तो कमल कांत जी,
0: जी सर,
1: ये जो लोरमी है उससे चचेड़ी कितना दूर पड़ता है?
0: 15 किलोमीटर है सर, पश्चिम दिशा ओर में अपना खुड़िया बांध है ना, उसी रास्ते में है।
1: अच्छा, तो खुड़िया बांध की क्या स्थिति है अभी बरसात में?
0: अभी बरसात में फुल हो गया है सर, पूरा चल रहा है उसका, जो ओवरफ्लो वाला रहता है, उलट बोलते हैं उसको। हाँ
1: उलट पानी खुल गया है पूरा।
0: हाँ 3-4 फीट चल रहा है सर, उसमें से जो बस अपना बिलासपुर वाला खुड़िया जाते थे वो बंद हो गया है।
1: अच्छा।
0: हमारे रास्ते से इधर से ही नहर रोड से आ रहे हैं इधर।
1: लेकिन ओवरफ्लो के कारण जो नीचे के गांव हैं, आसपास की जो बस्तियां हैं, उसके लिए अलर्ट भी जारी हुआ होगा?
0: जी, और नीचे तरफ है अपना लोरमी का, पिछले साल डूब गया था 2-3 मकान, वाला टक्कर देते हैं पहले से। हाँ
1: ऐसी कोई विपत्ति आ जाती है तो आप तमाम गांव वाले मिलकर के मदद भी करते होंगे लोगों की?
0: जी सर, जी,
1: क्या क्या क्या क्या तैयारी रखते हैं इस तरह की विपत्तियों पर जो बरसात के पानी के कारण आ जाती है?
0: अब बरसात के समय ज्यादा पानी डूबने से अब सलाह देते हैं सर लोगों को, देखिए ज्यादा से ज्यादा जो नदी किनारे में बसे रहते हैं उनको सूचना करते हैं। हाँ, अपने बचाव के लिए सावधानी बरतें। हाँ
1: जी, बहुत सारा सामान जमीन पर न रखें, कुछ चीजें ऐसी रख लें कि पानी भर जाए और आप कहीं निकल ना पाए, तो आप कम से कम घर पर ही पेट भरने के लिए बहुत सारी चीजें, सूखी चीजें आपके पास हो, ईंधन आपके पास हो, तमाम व्यवस्था के साथ, जहां पे जलभराव वाली स्थितियां बार बार पैदा होती है उन लोगों को एक

0: ख्याल रखना चाहिए।
1: और अभी बिलासपुर का क्या हालचाल है सर, खाली हो गया बिलासपुर?
0: हाँ, अभी तो पानी उतरा है और लोग घरों की गाद भी निकाल चुके हैं, ये मना रहे हैं कि दोबारा इस तरह से पानी न भरे।
1: बहुत तो, ज्यादा पानी हो गया सर, जितना जरूरत नहीं था अभी।
0: तो कमलकांत जी बताइए, गीत कौन सा सुनेंगे?
1: हाँ, मेरे को गीत सुनना है सर, फिल्म जीने की राह है पुराने, गीत का बोल है आने से उसके आए बहार।
0: बारिश की फुहारों से जो बहार है, हरियाली है, वो वाकई आ गई है, और ये हरियाली हम बनाए रखें, हरियाली को जपें, ये हमारी ड्यूटी है।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी जी कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद आकाशवाणी बिलासपुर से जुड़े हैं आप।
1: जी बिल्कुल नमस्ते।
0: कौन सा आप बोल रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: सिसोदिया जी कैसे हैं?
1: बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: उज्जैन में अभी बारिश पानी का क्या हाल है?
1: जी यहाँ पे कल शाम से बारिश होने लगी है, और रुक रुक के हल्की सी, कभी हल्की से तो कभी तेज बारिश हो जाती है, और ये बारिश फसलों के लिए काफी फायदेमंद है। यदि मतलब आपको बताऊं, खरपतवार निकालने का काम चल रहा था खेतों में, सोयाबीन की फसल लगाई हुई है। तो अभी पिछले हफ्ते पानी गिरा था, उसके बाद में 10-12 दिन से पानी नहीं था, तो मतलब फसलों को पानी की जरूरत पड़ रही थी।
0: तो आपके यहाँ सोयाबीन की खेती ज्यादा होती है उस तरफ?
1: हाँ सर, पूरे इलाके में हमारे यहाँ पे सोयाबीन की फसल लगाई जाती है, मैदानी इलाका है। हाँ जी, और आपको बताऊँ, कुछ लोगों ने ऑरेंज के बगीचे भी लगा रखे हैं।
0: अरे वाह,
1: हाँ जी
0: क्या बात है।
1: और मैंने भी अपने घर के पीछे

0: कुछ जगह खाली पड़ी थी
1: हाँ।
0: वहाँ पे ऑरेंज भी लगाया है, जायफल भी लगाए है, चीकू भी लगाए हैं और अमरूद के पेड़ तो हमें फल भी देने लगे, कम से कम 7 साल के मतलब पौधे हो गए हैं।
1: तो जायफल का जो पौधा होता है घर के लिए यूज के लिए लगाया है आपने कि उसकी मार्केटिंग भी करेंगे?
0: घर के लिए लगाया, अब जैसे आपको बताऊं कि हमने 7-8 मतलब पेड़ हो चुके हैं ये, अभी 7-8 में काफी फल लगेंगे तो इतना तो हम घर के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, जब थोड़ा बचेगा तो हम बेच भी सकते हैं
1: या मोहल्ले में बांट सकते हैं।
0: हाँ मोहल्ले में भी मतलब घर के आसपास में तो जो लोग होते हैं ना वो तो मतलब यूं ही आके तोड़ के ले जाते हैं, मना भी नहीं करते उन लोगों को।
1: यही तो हमारा पड़ोस का रिश्ता रहा है शुरू से बाग बगीचे के साथ, घर का मुनगा कोई तोड़ के ले जाए, घर की भी अमरूद कोई तोड़ करके ले जाए, तो ये साझेदारी अपने आप बनी रहती थी।
0: जी बिल्कुल, जैसे हमने कुछ सब्जियां भी लगाई हुई है घर के पास में ही, तुरई है और करेला है, गिलकी है, भिंडी है, लौकी है, इन सब के मतलब लगाए हैं ना, तो ये जब पक के तैयार होंगे तो ये भी हम अपने पड़ोस वाले को देते हैं।

0: तैयारी अपने आप बनी रहती थी।
1: जी बिल्कुल, जैसे हमने कुछ सब्जियां भी लगाई हुई है घर के पास में ही, तुरई है और करेला है, गिलकी है, भिंडी है, लौकी है, इन सब के मतलब लगाए हैं ना, तो ये जब पक के तैयार होंगे तो ये भी हम अपने पड़ोस वाले को देते हैं बिना पैसे के।
0: पड़ोसी धर्म आप निभाते हैं जी, है ना। पैसों से ज्यादा आपसे रिश्ते बनाने की जो कीमत होती है वो ज्यादा बड़ी होती है। तो सिसोदिया जी
1: से जुड़े रहते हैं, हमें इस बात का बड़ा गर्व होता है।
0: क्या बात है, हमें भी गर्व है कि आप जैसे लोगों के साथ हमारा साझा है अपनी तरंगों के माध्यम से। बताइए गीत कौन सा सुनेंगे?
1: तो मैं सुनना चाहूंगा लगान फिल्म का है, काले मेघा पानी तो बरसा।
0: काले मेघा ने सुन ली है पूरे भारत में लोगों।
1: हाँ जी बिल्कुल,
0: सुनवा रहे हैं गीत।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी जी
1: सर
0: नमस्कार
1: जी नमस्कार
0: नमस्कार।
1: जी हम बात कर रहे हैं सर जूना पारा से राम कुमार जायसवाल
0: राम कुमार जी
1: जी सर
0: कैसे हैं?
1: ना अच्छे हैं सर और साथ में अच्छे होने के लिए बारिश भी यानी अच्छे से हो रहे हैं सर
0: क्या बात है, बारिश भी अच्छी हो रही है, मन प्रफुल्लित
1: जी
0: है।
1: जी सर
0: हाँ, ये जूना पारा
1: हाँ
0: कहाँ का जूना पारा है?
1: सर लोडमी के पास सर बिलासपुर से जूना पारा का दूरी या 60 किलोमीटर
0: अच्छा ठीक
1: जी
0: ठीक
1: सर
0: तो लोरमी का जूना पारा से आप बोल रहे हैं।
1: हाँ सर
0: बारिश हो रही है हमारे आसपास, उसको संचय करने की क्या बात आप चाहते हैं हो? बारिश को रोकने का, बारिश का पानी धरती को वापस मिले, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: अब क्या है सर अब सर मैं बस बताना चाहता हूँ पानी के लिए हम सब लोग व्याकुल हो जाते हैं है ना

0: तो सबसे पहले सर या पेड़ पौधा जो जो ना आसपास में हरा था ना, इसी लिए बारे बारिश होता है सर, ठीक है। और पेड़ पौधा नहीं है तो बारिश कोई संभावना भी नहीं हो पाता सर।
1: बिल्कुल, आसपास पेड़ पौधे होने चाहिए जिसके कारण बारिश होती है। बादल पेड़ पौधों की और पहाड़ों की रिश्तेदारी यदि हम बना के रखेंगे तो हमारा जीवन तरल रहेगा हमेशा।
0: जी जी,
1: बताइए राम कुमार जी, कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
0: ऐसे मौसम में अब मन भी आने वाला है तो अच्छा सा भक्ति गीत सुना दी ये सर। हे भोले बाबा,
1: सावन के इंतजार के साथ भोले बाबा का ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं।

0: हेलो सर, नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: मैं गंगाधर सावनकर, कुंडलवाड़ी, नांदेड़, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर।
1: सावनकर
0: जी? सर
1: क्या बात है, सावन आने वाला है और सावनकर जी से बात हो रही है नांदेड़?
0: जी सर, बरस रहा है सर अभी।
1: श्रोताओं के बातचीत की भी बरसात हो रही है, रिमझिम फुहार भी है हमारे स्टूडियो के बाहर, और
0: जी जी सर,
1: इतनी खुशनुमा बातों के साथ सावनकर जी का कॉल हम तक पहुँच गया।
0: धन्यवाद सर।
1: नांदेड़ कैसा है?
0: बहुत अच्छा है सर, नांदेड़ गुरुद्वारा है, सिखों का एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है सर।
1: तो वहाँ सिखों का गुरुद्वारा होना और पंजाबी लोगों का वहाँ पे रहवासी होना, ये इसको कैसे देखते हैं आप? ये कब से शुरू हुआ होगा, कैसे वहाँ पहुँचे होंगे वो लोग?
0: बहुत पुराना है सर, जब गुरु गोविंद सिंह जी का समाधि बनाया गया जब से वो नांदेड़ भी के नाम पे रखा गया।
1: अच्छा, नांदेड़ गुरु गोविंद जी जी के नाम पे है?
0: हाँ जी, हुजूर साहेब।
1: अच्छा, तो ये कैसे है, मतलब हम समझे नहीं, इसको थोड़ा सा और यदि विस्तार दे सकते हैं क्या आप?
0: सर, ये गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ में आए थे।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो उनका

0: वाइन समझो इधनों का शहीद हो गए वहां पर।
1: हाँ, गोविंद तो, साहब जी नांदेड़ में शहीद हुए।
0: हाँ, तो उस तरफ से वो जगह बहुत बड़ी गुरु गोविंद सिंह जी की स्मारक समाधि बनाई गई और गुरु गोविंद सिंह के नाम पे जानते थे। बहुत से लोग सिख धर्म के आते हैं गुंडवाड़ी में, नांदेड़ में, नांदेड़ आके वो वहाँ पर बहुत से लंगर है सर, खाने की व्यवस्था अच्छी है, रहने का व्यवस्था है, बाजू में गोदावरी नदी है, जो समझो गुरुद्वारे में गया बहुत मन शांति होती है सर। आप भी एक बार आइए सर, गुरुद्वारा दर्शन दीजिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, यही तो हमारी विविधता की पहचान है कि महाराष्ट्र का एक शहर नांदेड़, जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी आए थे लगभग 1708 में और वहां उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे और उनकी याद में नांदेड़ को याद किया जाता है और वहां एक बड़ा गुरुद्वारा है, एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व की भी बात है। और 1708 से लेकर उन दो अलग अलग कल्चर को नांदेड़ ने संभाला हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है, यही विविधता है, यही हमारी भारत की एकता है।
0: बिल्कुल सर।
1: तो गंगाधर जी बताइए गीत कौन सा सुनेंगे?
0: गीत सर कालिया फिल्म का तुम साथ है जब तो
1: वाह
0: दुनिया को बता देंगे।
1: गुरु गोविंद साहब हमारे साथ हैं और हमारी एकता एक दूसरे के साथ बंधी हुई है, एक डोर से हम बंधे हुए हैं, हम सब साथ हैं तो दुनिया को तो बता ही देंगे।

0: हेलो
1: जी नमस्ते
0: सुनील भैया नमस्कार गा
1: जी जी नमस्कार गा
0: मैं धनगांव गोसाई जिला मुंगेली मुकेश गोस्वामी बोला था भैया।
1: हाँ मुकेश गोस्वामी जी कैसे हो?
0: बढ़िया हो भैया। मैं
1: गांव का नाम एक बार फिर बता दो आप।
0: धनगांव गोसाई भैया।
1: धनगांव कैसे हैं खेत?
0: खेती तो भैया यहाँ बुमारा हो गया है। ट्यूबवेल वाले ने पहले से रोपा दिया था करहा, वही रोपा का काम चल रहा है भैया अभी तो।
1: हाँ लबालब जब खेत हो जाए तो रोपा का काम जारी हो जाता है। आपकी आवाज इतनी थकी थकी सी क्यों लग रही है? कहाँ पर हैं आप?
0: नहीं भैया थकी थकी सी लग रही है।
1: हाँ थोड़ा ऐसे मुस्कुराते बात करिए तो थोड़ा जोश आ जाए।
0: घर बात कर रहा हूँ तो।
1: तो आपकी खेती बाड़ी किस तरह की है?
0: हमारी खेती तो भैया ट्यूबवेल का साधन नहीं है, बस ऊपर वाले के ही भरोसा रहते हैं हम।
1: इसीलिए तो एक अभियान चल रहा है कैच द रेन का, ताकि हम बरसात के पानी का संचय धरती में कर सकें, धरती की नमी बढ़ा सकें, धरती को गर्म होने से बचा लें।
0: जी भैया।
1: है ना मुकेश जी, बताइए गीत कौन सा सुनेंगे?
0: एक प्रेम कैदी फिल्म का है भैया। मैंने प्रेम किया जब से, जब भूल गए तब से,

0: जी सर नमस्ते, प्रणाम करता हूँ। संतोष कुमार राव बात कर रहा था सर, उमरिया मध्य प्रदेश से।
1: संतोष कुमार राव
0: जी सर, उमरिया मध्य प्रदेश से बात कर रहा था।
1: उमरिया के पहाड़ कैसे?
0: बिल्कुल बहुत ही प्यारे होते हैं सर, क्योंकि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पे नेशनल पार्क है ना बांधवगढ़, इसकी वजह से बहुत खूबसूरत नजारा दिखता है यहाँ का।
1: हाँ बिल्कुल, और अभी उमरिया स्टेशन भी काफी चकाचक और खूबसूरत हो गया है।
0: जी बिल्कुल सर, पहाड़ियों से लगा हुआ है ना, खास करके पेड़ों की जो औसतन जो बारिश के समय है मौसम में बिल्कुल उतार चढ़ाव जो देखा जा रहा है उसमें हरियाली।

0: बिल्कुल घुल गई है सर, मिल गया है इसमें।
1: उमरिया रेलवे स्टेशन पर जब हम खड़े रहते हैं तो आसपास खूब बड़े बड़े पहाड़ भी दिखाई देते हैं ना?
0: जी बिल्कुल सर, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ना, वहीं पे सर कोदो कुटकी की फसल इस समय ली गई है, क्योंकि खरीफ की जो फसलें हैं वो बो दी गई है और इस समय कोदो कुटकी की फसल के लिए किसान पूरी तरह से तैयार है सर।
1: क्या बात है, एक जरूरी काम चल रहा है मतलब।
0: जी बिल्कुल सर, जरूरी काम के साथ साथ AIR एप्लीकेशन के साथ ही आकाशवाणी बिलासपुर के तमाम कार्यक्रमों का भी हम लोग समा बांधते हैं और आपकी प्रस्तुति बेहद ही खास होती है सर, और इसे हम लोग पूरा परिवार के सहित इस कार्यक्रम का आनंद उठा पाते हैं।
1: क्या बात है संतोष जी, आपने दिल जीत लिया हमारा।
0: जी बिल्कुल सर, ये खास करके जो वर्कर होते हैं ना, उद्घोषक होते हैं, अपनी पूरी मेहनत इस कार्यक्रम के लिए निछावर कर देते हैं, और जो हमारे तकनीकी विभाग होते हैं, इंजीनियर होते हैं, इस कार्यक्रम को एडिट करते हैं और पूरी ऊर्जा के साथ कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम बन पड़ता है सर आकाशवाणी बिलासपुर के।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब तक पूरी टीम काम नहीं करती तब तक प्रोग्राम अच्छे नहीं होते, और उस टीम में आप तमाम श्रोता भी शामिल हैं जिनकी वजह से हमारे कार्यक्रम और बेहतर होते जाते हैं।
0: बिल्कुल सर, ईमेल बेस्ड जो कार्यक्रम आते हैं वो भी बहुत खूबसूरती से होते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है लगातार उसमें ईमेल्स की भरमार होती है आकाशवाणी बिलासपुर में, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आता है आकाशवाणी बिलासपुर का, और बहुत ही स्पष्ट आवाज पहुंच पाती है हम तक सर।
1: तो हमारी और आपके बीच की ये स्पष्टता बनी रहे और हमारी तरंगों के माध्यम से हमारी रिश्तेदारी भी बनी रहे। बताइए गीत कौन सा सुनेंगे?
0: मूवी का नाम है आहुति।
1: गीत कौन सा?
0: नौ के

0: जी नमस्ते सर जी।
1: कैसे हैं, कौन सा आप बोल रहे हैं?
0: जी सर, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ सर जी।
1: सतीश रघुवंशी
0: जी, बहुत दिनों बाद बात हो रही सर मेरी आपसे।
1: छिंदवाड़ा
0: जी जी बिल्कुल सर, बहुत याद आ रही थी इनको आकाशवाणी बिलासपुर फोन।

0: तब लग जाया कि इसको नस्सी आने लग गया।
1: छिंदवाड़ा से वहाँ से पचमढ़ी की पर्वतमाला भी होकर गुजरती है।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर जी, ये सर जी क्या बोलते हैं हम पचमढ़ी महादेव धाम होता है वहाँ पे मनोकामना लेके जाते हैं आदमी वहाँ पे सर, तो वहाँ से पचमढ़ी घूम के आते हैं सर, महादेव का मेला लगता है बहुत बड़ा वहाँ पे।
1: हाँ, और एक वहाँ पे आगे एक हनुमान जी की मूर्ति भी है जो विश्राम कर रही है, लेटी हुई है।
0: जी जी सर बिल्कुल सर।
1: कौन सा इलाका है वो?
0: ये सर हमारे छिंदवाड़ा जिले में सर, वो वाला इलाका भी हनुमान जी की मूर्ति सर बहुत बड़ी है वहाँ पे।
1: हम्म।
0: ये सर गाँव का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, बाकी छिंदवाड़ा जिले में है सर वो।
1: जाम सावली एक है।
0: जी बिल्कुल सर, जाम सावली हनुमान जी है सर, ये बात है।
1: जाम सावली में हनुमान जी है, और जो पचमढ़ी की पर्वतमाला शुरू होती है वो कौन सी जगह है?
0: नाम याद नहीं आ रहा सर वो वाला।
1: हम्म। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सतीश रघुवंशी जी, वहाँ पर जो छिंदवाड़ा के पास जो जुन्नार देव है वो पर्वतमाला से घिरा हुआ है, कहना चाहिए कि सतपुड़ा की जो पर्वतमाला है उससे घिरा हुआ है, और वहाँ जब जाओ तो आपको वो सतपुड़ा वाली जो कविता है वो याद आ जाती है। तो सतीश रघुवंशी जी बताइए, गीत कौन सा सुनेंगे?
0: सर जी आप मुझे सुना दीजिए, फिल्म का नाम सर सुहाग, और गीत के बोल रहेंगे सर जी, गोरे गोरे मुकड़े पे काला काला चश्मा।

0: हेलो,
1: जी नमस्ते।
0: नमस्कार सर जी।
1: नमस्कार।
0: सर जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। सर
1: अच्छा लोकेंद्र जी।
0: जी, सर जी, आज काफी दिनों के बाद में बातचीत हो रही है सर जी आपसे। जी
1: तो नानाखेड़ा बस स्टैंड।
0: सर।
1: तो ये नानाखेड़ा बस स्टैंड तो उज्जैन के बीचों बीच है एकदम ना?
0: हाँ सर जी, बीचों बीच है। आज से करीब 20-25 साल पहले मतलब इस बस स्टैंड का नया बनाया गया था। फिर इसके आसपास बहुत सी कॉलोनी डेवलप होने लग गई। उसके बाद से फिर ये शहर के मध्य में हो गया सर।
1: उज्जैन के जो प्रवासी हैं, आसपास के लोग हैं, नाना खेड़ा में पहले उतरते हैं, फिर उज्जैन शहर का भ्रमण करते हैं।
0: हाँ जी, जो भी मतलब बाहर से यात्री आते हैं
1: हाँ।
0: तो वो नानाखेड़ा बस स्टैंड पे उतरते हैं। फिर जैसे महाकाल दर्शन करने के लिए जाना है या कोई उज्जैन के भी निवासी हैं वो बस स्टैंड पर उतरते हैं। और खास करके जितने भी बाहर से जो तीर्थ यात्री आते हैं ना, जितनी टूरिस्ट बसें आती है स्लीपर, वो सारी नानाखेड़ा बस स्टैंड पर ही आती है। तो यहाँ से सब बाईपास बने हुए हैं अलग अलग रोड, तो वहां से उनको बाहर जाने में निकलने में असुविधा नहीं होती है सर।
1: नाना खेड़ा से उधर लाल चौक होते हुए निकलती है बसेस।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लाल गेट होती हुई निकलती है। और नाना खेड़ा बस स्टैंड पर भी अब ये विद्यापति कॉलोनी में आकाशवाणी उज्जैन खुल चुका है नया।
1: अरे वाह।
0: हाँ जी जी सर
1: तो
0: बिल्कुल,
1: प्रसारण आरंभ हो
0: यहाँ से
1: गया।
0: भी कार्यक्रम प्रसारण होते हैं, अच्छे प्रसारण होते हैं। और आपका प्रोग्राम तो मैं मोबाइल ऐप प्रसार भारती से सुनता हूँ सर जी। हमारे दोस्त सेवाराम रत्नानी जी, अब तो वो नहीं रहे, पर वो अधिकतर आपके प्रोग्राम में फोन लगाते थे।
1: तो उज्जैन और बिलासपुर का रिश्ता यूं ही बना रहे और उज्जैन आकाशवाणी से भी आपकी जो दोस्ती है वो जारी रहे।
0: जी बिल्कुल सर जी।
1: बताइए लोकेंद्र जी, गीत कौन सा सुनवाए आपको?
0: ये गाना सुनना है सर जी, ये मुझे मोम की गुड़िया फिल्म का, इसमें गाना है, बागों में बहार आई, फूलों में बहार आई, आजा आजा आजा मेरे राजा, ऐसा गीत है सर।
1: तो बहारों का मौसम है, बाग बगीचे हरे भरे हैं, आनंद बख्शी की आवाज का जादू और उनकी लेखनी आप तक पहुंचा रहे हैं।

0: तो हमारे बाग बगीचे और हमारी बहार यूं ही बनी रहे, उसके लिए बेहद जरूरी है हमारे भीतर की तरलता। जी हाँ, मनुष्य के शरीर में बड़ी मात्रा में पानी होता है, ठीक उसी तरह प्रकृति का भी सामंजस्य है कि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी का होता है। मनुष्य जीवन और प्रकृति का जो गठजोड़ है वो बना रहे, इसलिए जरूरी है कि हम पानी को सहेजे, और खासकर इस मौसम में यानी कि बारिश के मौसम में जो पानी बादल से रिस कर हमारे तक पहुंच रहा है, उसे धरती तक बहुत भीतर हम पहुंचा सकें, यानी कि बरसात को पकड़ सके। कैच द रेन का यही सूत्र है कि जो धरती से वाष्प बनकर जो पानी पहुंचा है ऊपर, उसे हम बादलों के माध्यम से, जंगलों पहाड़ों के माध्यम से फिर से वापस धरती को पिला सके। तो याद रखिएगा, जल का संग्रहण बेहद जरूरी है। इसी नोट के साथ कार्यक्रम हम संपन्न करते हैं। अनुमति दीजिए सुनील चिपड़े को। नमस्ते।
1: हेलो, आपके पास है?

0: फोन पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थे सुनील चिपड़े। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10:55 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: नमस्कार दोस्तों, प्रतिदिन की तरह इस समय आप सुन रहे हैं यातायात संबंधी सूचनात्मक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट ऑफ बिलासपुर। मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा आज अपनी मांगों के संबंध में दोपहर 3 बजे पुराना कंपोजिट बिल्डिंग परिसर में एकत्र होकर वहां से कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन प्रस्तुत करने का आह्वान किया गया है। ज्ञापन सौंपने जाने वाले सभी सदस्य ये भलीभांति जानते ही हैं कि यह स्थान शासकीय कार्यालयों का केंद्र है, पास ही माननीय जिला न्यायालय भी स्थित है। इसलिए आप सभी ये 100% सुनिश्चित करें कि आपके इस प्रदर्शन से आम यातायात या शासकीय कार्य किसी भी स्थिति में बाधित ना हो। मित्रों, हाल की मूसलाधार वर्षा के साथ ही अभी भी लगातार हो रही वर्षा से शहर के साथ साथ गांव की भी अनेकों सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़कों के टूटने फूटने से वाहनों की स्वाभाविक गति प्रभावित हुई है। पुनः आप सभी से यही कहना है कि इस स्थिति में सड़क में बहुत ही चैतन्य रहें, धीरे चलें, प्रयास करें सड़कों में जहां पानी भरा हो वहां से अपने वाहन के पहिए बचाकर चलें। मित्रों, बच्चों का मन कोरा कागज की तरह होता है। उसे जो भी सिखाएंगे या बताएंगे वह उसका पूरी तरह पालन करता है। आगे चलकर यही उसकी आदत में शुमार हो जाता है। बच्चे के माता पिता या शिक्षक उसके आदर्श हुआ करते हैं। बच्चा उनकी हर आदत गतिविधि आदि का अनुकरण करता है। इसलिए घर में प्रत्येक माता पिता या अभिभावक को अथवा उस स्कूल के सभी शिक्षकों से यही अनुरोध है कि जब भी किसी भी वाहन के साथ आप जा रहे हो यातायात के नियमों का पूरी तरह पालन करें। जैसे यदि आप दोपहिया वाहन से कहीं जा रहे हो या कोई शिक्षक दोपहिया वाहन से स्कूल आ रहा है तो हेलमेट पहनकर ही आवे। ठीक इसी प्रकार यातायात संकेत का पूरी तरह पालन करें। तेज रफ्तार वाहन कभी भी ना चलाएं। दोपहिया में 3 सवारी कभी ना चलें। मोबाइल से बातें करते वाहन बिल्कुल ना चलाएं। कार जैसे 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं और गलत दिशा में वाहन चलाने से बचें। विशेषकर सभी शिक्षकों से निवेदन है, बच्चा स्कूल में पढ़ने सीखने जाता है और ये अच्छी आदतें आप बच्चों को तभी सिखा सकते हैं जब आप स्वयं इन नियमों के प्रति या बच्चों के प्रति निष्ठावान होंगे। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
0: ये था आज का ट्रैफिक अपडेट। श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 23 जुलाई 2026 यानी कल स्टूडियो में पशु चिकित्सा सेवाएं मुंगेली के संयुक्त संचालक डॉक्टर आर एम त्रिपाठी उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा वर्षा ऋतु में पशुओं को होने वाली बीमारियां एवं उनके बचाव, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा वर्षा ऋतु में कुत्तों में होने वाली आक्रामकता और कुत्तों के काटने से होने वाली रेबीज के बीमारियों से बचाव के उपाय। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665 और 3100। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 23 जुलाई 2026 और 24 जुलाई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस समय 11 बज चुके हैं। लीजिए पेश है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, आप सबका स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा हो जाती है। इसलिए हमेशा संगठित रहें और बिखर कर कचरा न बने।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद एकता और संगठित रहने का सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। श्रोताओं, हमें पहला संदेश मिला है कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: डॉक्टर कामिल बुल के 24 तारीख को सुने, बेल्जियम में जन्मे कैसे भारत को अपना कर्मभूमि बना लिया, रामचरितमानस पर शोध किया और कामिल बुल के से कामिल बुल के बाबा बन गए। बहुत अच्छा लगा इतनी अच्छी जानकारी और प्रस्तुति के लिए। उमंग टीम को बहुत बहुत बधाई।
1: और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर का।
2: भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और सुरेंद्र कौर रंधावा जी का।
1: और गणेशवाड़ी कोल्हापुर महाराष्ट्र से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार जी का।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए के अंतर्गत आज की कड़ी। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं भारत के अनूठे मेलों की,
2: ऐसे मेलों की जो प्रयास है समुदायों को उनकी संस्कृति से जोड़ने का। इनके बारे में लोगों को अधिक पता नहीं है, लेकिन वे अपने आप में सचमुच अद्भुत हैं, जीवंत हैं और प्रेरणा देने वाले भी। तो कल हमने चर्चा की थी असम राज्य के जॉन बेल मेले की, जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का आज भी प्रचलन है।
1: आज हम चलेंगे एक और सुंदर और मनोरम उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय राज्य नागालैंड और जानेंगे एक और मेले के बारे में। इसे हॉर्नबिल मेले के नाम से जाना जाता है। तो विमलेश जी, अब चर्चा को आगे बढ़ाइए।
2: जी अजीत जी, श्रोताओं, हॉर्नबिल महोत्सव या मेला नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक मेला है। इसे त्योहारों का त्योहार यानी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। अजीत जी, अब जानते हैं कि ये कब मनाया जाता है।
1: जी विमलेश जी, हॉर्नबिल मेला हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है।
2: जी,
1: ये कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है। लेकिन विमलेश जी, एक स्वाभाविक प्रश्न मेरे मन में आता है और वो ये है कि इस उत्सव या मेले का नाम हॉर्नबिल क्यों पड़ा।
2: अजीत जी, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने।
1: जी,
2: इसका जवाब भी उतना ही सुंदर है। हॉर्नबिल एक पक्षी है जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये जबरदस्त उड़ान भर सकता है। इसके पंख इतने शक्तिशाली होते हैं कि जब ये उड़ता है तो उसके पंखों की फू फू जैसी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है।
1: जी विमलेश जी, पूर्वोत्तर भारत में विशेषकर नागालैंड में इस पक्षी को यानी हॉर्नबिल पक्षी को साहस, सम्मान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
2: जी, यही वजह है कि नगा परंपराओं में विशेषकर सर के आभूषणों में हॉर्नबिल पक्षी का प्रतिरूप अवश्य दिखाई देता है। आइए अब जानते हैं कि क्या होता है हॉर्नबिल मेले में।
1: श्रोताओं, इस मेले में रंग बिरंगे पारंपरिक नृत्य देखने को मिलते हैं।
2: जी,
1: जिनमें सबसे लोकप्रिय और आकर्षक है युद्ध नृत्य।
2: जी,
1: युद्ध नृत्य में पुरुष योद्धा पारंपरिक हथियार लेकर नृत्य करते हैं। तेज ड्रम की ताल, वॉर क्राई और तालबद्ध पैरों की गति के साथ ये नृत्य होता है।
2: जी
1: विमलेश जी, एक बहुत विशेष बात तो हम भूल ही गए थे, ये तो बता दें कि इस मेले के दौरान एक बड़ी खास प्रदर्शनी होती है।
2: जी,
1: जिसे मोरुंग कहते हैं।
2: जी,
1: ये मोरुंग होता क्या है।
2: अजीत जी, मोरुंग नागालैंड की जनजातियों का युवा आवास हुआ करता था। ये बांस और लकड़ी से बना हुआ बड़ा सामुदायिक भवन होता था।
1: जी, प्रत्येक गांव में कम से कम एक मोरुंग अवश्य होता था। वहाँ जनजातीय इतिहास, युद्ध कौशल, वाद्य संगीत और लकड़ी के हस्त कौशल सिखाए जाते थे।
2: जी, यहाँ हस्तशिल्प, हैंडलूम यानी हस्तकरघा, स्थानीय व्यंजन इत्यादि प्रचुरता से मिलते हैं।
1: श्रोताओं, ये उत्सव नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रदर्शन है।
2: जी,
1: यहाँ आकर लोग असली नागा जनजातीय जीवन, आतिथ्य और उनकी परंपराओं की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी नागालैंड के बेहद खास मेले हॉर्नबिल उत्सव की।
2: जी,
1: कभी नागालैंड जाएं तो इस मेले का आनंद जरूर लें।
2: जी,
1: तो अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
2: मोरुंग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मोरुंग किसे कहते हैं? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश हमें भेज सकते हैं। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है सुंदरिया।
2: कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक प्यारी गाय सुंदरिया की कहानी बताई गई है और उसके माध्यम से बच्चों को संदेश दिया गया है कि पशुओं में भी भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं।
3: एक समय की बात है, हरियाणा के एक गांव में एक किसान रहता था। नाम था हीरा सिंह। निर्धनता के कारण बड़ी मुश्किल से उसके परिवार का गुजारा चलता था। उसके पास एक गाय थी, नाम था सुंदरिया। उस गाय के कारण हीरा सिंह से गांव वालों को बड़ी ईर्ष्या होती थी। निर्धनता का ये हाल

0: था कि हीरा सिंह सुंदरिया के लिए चारा भी नहीं जुटा पाता था। वो भी गाय को बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि किसी प्रकार गाय को अच्छा चारा मिल सके, लेकिन तंगी पीछा नहीं छोड़ती थी, इसलिए कई बार उसके मन में एक विचार आया।
1: अब तो सुंदरिया को पालना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कहां से आएगा उसके लिए चारा? यहां तो परिवार के खाने के लाले पड़े हुए हैं। सोचता हूं उसे किसी धनी किसान को बेच दूं, कम से कम अच्छा चारा तो मिलेगा उसे।
0: लेकिन हीरा सिंह अपने बड़े बेटे जवाहर सिंह से डरता था, क्योंकि उसे सुंदरिया गाय से बहुत लगाव था। जवाहर सिंह सुंदरिया को प्यार से मौसी बुलाता था। समय बीतता गया और आखिर परिवार की दरिद्रता समाप्त करने के लिए हीरा सिंह नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गया। वहाँ एक सेठ के यहाँ उसे चौकीदार की नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ ने कहा,
2: हीरा सिंह, शहर में आजकल दूध की बड़ी किल्लत हो रही है।
1: जी मालिक, ये बात तो है।
2: पता नहीं जो दूध तुम दुकानों से लाते हो वो ठीक भी है या नहीं। बहुत मिलावट चल रही है। तुम तो हरियाणा के हो, सुना है वहाँ की गायें बड़ी अच्छी और दुधारू होती हैं। एक काम करो, तुम हमारे लिए किसी अच्छी गाय का प्रबंध कर दो।
1: जी मालिक, कोशिश करता हूँ। वैसे एक गाय है मेरी निगाह में।
2: अच्छा,
1: ऐसी कि साक्षात कामधेनु। दूध भी 15 सेर से ज्यादा ही उतरता है और उसके 200 रुपए तक लग चुके हैं।
2: भाई, इतनी अच्छी गाय है तो 10 रुपए अधिक हम दे देंगे। ये लो 100 रुपए, बाकी तुम्हारे आने पर मिल जाएंगे।
1: जी मालिक।
0: दरअसल हीरा सिंह के मन में उसकी प्यारी गाय सुंदरिया ही थी। सोचने लगा, यहाँ आएगी तो अच्छा चारा भी मिलेगा और मैं उसकी सेवा भी कर लूंगा। हीरा सिंह उसी दिन गांव चला गया। जैसे तैसे अपने बेटे जवाहर को समझाया और गाय लेकर दिल्ली आ गया। सेठ जी ने गाय को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी स्वस्थ सुंदर गाय उन्होंने पहले न देखी थी। दूसरे दिन सेठ जी ने पास के एक ग्वाले को बुलाया और गाय उसके सुपुर्द कर दी। हीरा सिंह का दिल भरा जा रहा था। उसने सेठ जी से कहा,
1: सेठ जी, गाय की नौकरी पर मुझे ही लगा दीजिए, चाहे पगार कम ही दीजिए।
2: ये नहीं हो सकता हीरा सिंह। भाई, हमें तुम जैसा दूसरा ईमानदार और मेहनती चौकीदार कहाँ मिलेगा? तुम्हें तो यहीं ड्योढ़ी पर ही रहना होगा।
0: ग्वाले ने सुंदरिया को ले जाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन गाय टस से मस नहीं हुई। अपनी भोली आंखों से वो हीरा सिंह को ही देख रही थी, मानो कह रही थी, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। हीरा सिंह ने गाय को थपथपाया, फुचकारा और बोल उठा,
1: मेरी प्यारी सुंदरिया, अब चली जाओ ना, मैं यही तो हूँ तुम्हारे पास। तुम चिंता ना करो, अरे मैं तुम्हें देखने आता रहूंगा, मेरी प्यारी सुंदरिया।
0: अनमने मन से सुंदरिया चल दी। लेकिन अगले ही दिन कुछ विचित्र हुआ। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाया।
2: हीरा सिंह, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आज गाय का 5 सेर दूध भी नहीं उतरा। तुम तो कहते थे कि 15 सेर से भी ज्यादा दूध मिलेगा।
1: सेठ जी, कल ही तो मैंने पूरा 15 सेर दूध दुहकर आपको दिया था, भला मैं झूठ क्यों बोलने लगा?
2: ये बात तो है, लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो कल फिर देखते हैं।
1: जी सेठ जी।
0: लेकिन दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेठ जी को गुस्सा आ गया, बोले,
2: हीरा सिंह, तुमने सचमुच मुझे धोखा दिया है। गाय को ले जाओ और मेरे पैसे वापस करो।
1: लेकिन मालिक, पैसे तो मैं गांव भेज चुका हूँ और उसमें से काफी मकान की मरम्मत में खर्च हो गए, अब पैसे कहाँ से लौटाऊं?
2: तो ठीक है, पैसा मैं तुम्हारी पगार से काट लूंगा।
0: अब रोज रोज यही शिकायत आने लगी। कभी गाय दूध बहुत कम देती, कभी चारे को मुंह तक नहीं लगाती। हाँ, एक बात जरूर थी, जब हीरा सिंह उसे देखने जाता तो बहुत प्रसन्न हो जाती और चारा भी खा लेती। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हीरा सिंह को निहारती रहती, मानो कह रही हो, मुझे वहाँ क्यों भेज दिया। एक रात की बात है, हीरा सिंह अपने कमरे में सो रहा था कि तभी

0: सुंदरिया तुम मेरी प्यारी सुंदरिया।
1: वो अपराधी भाव से उसे देख रही थी, मानो कह रही हो क्षमा करना, मेरा वहां मन नहीं लगा, इसलिए रस्सी तोड़ कर आई हूँ, मुझे तो तुम्हारे संग ही रहना है। उस मूक गाय की आंखों में वेदना थी। हीरा सिंह भाव विभोर हो उठा। वो सुंदरिया के गले से लिपट कर देर तक सिसकता रहा।
0: अब तू कहीं नहीं जाएगी, हम कहाँ चलेंगे? मैं अपराधी हूं कि मैंने तुम्हें बेच दिया, लेकिन सुंदरिया वो तो तुम्हारे भले के लिए ही तो था। लेकिन अब हम साथ रहेंगे। हाँ, अब मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं करूंगा। मैं सुबह ही सेठ जी से बात करूंगा।
2: आओ हीरा सिंह, कुछ बात बनी? गाय कैसी?
0: सेठ जी, मैं गाय को आज ही गांव ले जाऊंगा।
2: लेकिन उसके लिए जो पैसे तुमने लिए हैं उनका क्या होगा?
0: सेठ जी, मैं उसे चुकाने के लिए मुफ्त में आपकी चाकरी करने के लिए तैयार हूं। रुपए जब चुकता हो जाएं तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं भी छुट्टी कर लूंगा। सुंदरिया का दुख मुझसे नहीं देखा जाता सेठ जी।
1: इतना कहकर उसने गाय की डोर थाम ली और कहा,
0: सेठ जी, गाय को गांव छोड़कर मैं आपकी सेवा में फिर आ जाऊंगा और रुपए वसूल होने तक मैं आपके यहाँ काम करूंगा। नमस्ते।
1: हीरा सिंह ने गाय को फुचकारा, थपथपाया और चलने लगा। सेठ जी का मन भी भर आया था, कहने लगे,
2: हीरा सिंह, इस प्यारी गैया के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अरे, तुमसे यहाँ मुफ्त में काम करवाकर क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? मान लो कि मेरे रुपए भी वसूल हो गए। जाओ हीरा सिंह, जाओ।
0: जी सेठ जी।
2: खुशी से जाओ हीरा सिंह, और हाँ, सुंदरिया का खूब ख्याल रखना, और जब कभी भी समय मिले आपसे मिलने जरूर आना।
0: धन्यवाद सेठ जी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुंदरिया। आशा है कि आपको जरूर ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है मेरा प्यारा दोस्त।
4: नमस्कार श्रोताओ, प्रेरक कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है।
5: ये कहानी है पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मेघालय की। लेकिन कहानी सुनने से पहले आइए लेते हैं मेघालय राज्य की थोड़ी जानकारी। मेघालय शब्द दो शब्दों के मेल या संधि से बना है, मेघ और आलय।
4: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो मेघालय का अर्थ हुआ बादलों का घर। साथियों, प्राकृतिक सुंदरता में मेघालय का कोई सानी नहीं है।
5: जी हाँ साथियों, यहाँ जब तब अनायास ही उमड़ते बादल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल कल करती नदियाँ और हरे भरे जंगल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं।
4: मेघालय की राजधानी है शिलांग। ये कहानी शिलांग की है।
5: यूजीन लगभग 15 वर्ष का एक किशोर है। आज शिलांग शहर के पुराने बाजार में यूजीन चला जा रहा था। उसकी आंखें लगातार दुकानों के

0: यूजीन लगभग 15 वर्ष का एक किशोर है। आज शिलोंग शहर के पुराने बाजार में यूजीन चला जा रहा था। उसकी आंखें लगातार दुकानों के साइन बोर्ड्स पर ही टिक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई खास दुकान खोज रहा हो।
1: यहीं कहीं तो थी वो दुकान, कहाँ है वो? अब ये तो रही वो फूल वालों की दुकान। उसके बाद हाँ वो रही।
0: उसे वो दुकान मिल गई थी। साइन बोर्ड पर एक पिल्ले की सुंदर सी तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था पपीज फॉर सेल।
2: यूजीन को कुत्तों से बहुत लगाव था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो भी एक प्यारा सा कुत्ता पाले जो उसका दोस्त बन सके और उसके साथ खेल सके।
0: बात वास्तव में ये थी कि स्कूल में सहपाठी यूजीन के साथ रहने और खेलने से थोड़ा कतराते थे।
2: कुछ सोचकर वो दुकान में दाखिल हुआ।
1: हाँ, यहां से अंदर चलता हूं। अरे वाह, कितनी सुंदर दुकान है और ले प्यारे प्यारे पपीज भी हैं। आजा आजा।
0: उसने कई बार अपने घर में कहा था कि वो एक प्यारा सा पिल्ला पालना चाहता है, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई थी। किसी पशु को पालना काफी जिम्मेदारी का काम होता है। एक पिल्ले को पालने के लिए यूजीन के माता पिता तैयार नहीं थे।
2: लेकिन अब यूजीन बड़ा हो गया है, अब वो खुद पिल्ले का ध्यान रख सकता है। इसीलिए आखिरकार वो मान ही गए। और आज
0: यूजीन पिल्ला खरीद सकता है अपनी पसंद का। यूजीन सीधा काउंटर पर दुकानदार के पास चला गया और बोला,
1: नमस्ते मैडम।
3: नमस्ते बेटा।
1: मेरा नाम यूजीन है, मैं एक पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उसका दाम बताएंगी?
3: देखो बेटा यूजीन, हमारे पास तो ढेर सारे पपीज हैं, सभी नस्ल के। लेकिन बेटा ये बताओ, क्या तुम सच में खरीदना चाहते हो?
1: जी बिल्कुल, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं?
3: बेटा बात ये है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा तो है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस देखो और चले जाओ?
1: नहीं,
3: क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, देखने की जिद करते हैं, सारे पिल्ले देखते हैं और अंत में लिए बिना ही चले जाते हैं। इससे हमारा समय बर्बाद होता है ना, तो
1: नहीं ऐसा नहीं है, मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ, मैं सच में खरीदूंगा। आप उनके दाम बताइए तो सही।
3: यूजीन देखो बेटा, सबसे कम दाम के हमारे पास लगभग 2000 रुपए के पिल्ले हैं, फिर 3000 और ऐसे ही। मेरा मतलब नस्ल के हिसाब से और भी महंगे हैं।
1: अच्छा,
3: क्या तुम इतना पैसा दे पाओगे?
1: ओहो, अभी इस समय तो मेरे पास 1500 रुपए ही हैं। अब ये तो मैं आपको अभी तुरंत दे सकता हूँ, बाकी पैसे आपको कल दे सकता हूँ। मैं पापा से बात कर चुका हूँ, वो मुझे मेरी पसंद का पिल्ला लेने के लिए कह रहे थे, आप मुझसे कल तक ले लीजिए।
3: बेटा ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना, समझो मेरी बात। वो क्या है कि अगर अभी तुम्हें पपी चाहिए तो तुम्हें पूरा पैसा भी अभी ही चुकाना होगा, समझे ना?
1: ठीक है मैडम, पर आप मुझे पपी दिखाइए तो सही, मैं आपको इसका मूल्य चुका दूंगा आज ही शाम तक। अब आया हूं तो पसंद करके ही जाऊंगा। अभी 1500 दूंगा और जब बाकी पैसे लाऊंगा तब मैं आपसे पिल्ला ले लूंगा।
3: ठीक है। शेल्बिलिन, शेल्बिलिन, अरे कहाँ हो भाई?
4: हाँ जी बताइए।
3: देखो सारे पपीज ले आओ, ग्राहक

0: खड़े हैं, ध्यान रखा करो।
1: हाँ हाँ अभी लाता है, बस एक मिनट।
2: थोड़ी ही देर में सामने एक छोटा सा दरवाजा खुला और 5-6 प्यारे प्यारे पिल्ले कूं कूं करते हुए सामने आए। वो ऐसे लग रहे थे मानो ऊन के गोले हों। सब के सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
3: यूजीन ने देखा कि उनमें एक पिल्ला था जो उछल कूद नहीं मचा रहा था। उसके सामने के दोनों पांव तो काम कर रहे थे, लेकिन पीछे के दोनों पांव घिसट रहे थे। वो धीरे धीरे घिसटता हुआ सबसे पीछे पीछे आ रहा था।
0: अरे शेल्बिलिन, तुमसे कितनी बार कहा है इसे मत लाया करो। तुम्हें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती क्या? तुम फिर से इस पिल्ले को ले आए, हटाओ इसे।
1: ये तो बहुत शैतान है, पीछे पीछे आ ही जाता है। अभी ले जाता हूँ इसे, चलो शाबाश, वापस चलो।
4: एक मिनट, अब इसे क्या हुआ? ये ऐसे क्यों चल रहा है? आजा आजा, इधर आ।
0: ये जन्म से ऐसा ही पैदा हुआ है। सही होता तो इसकी बहुत कीमत होती, अब तो बोझ ही है हमारे लिए।
4: मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, कितनी कीमत होगी इसकी?
0: है? अच्छा, समझ गई बेटा, समझ गई। मुझसे मजाक कर रहे हो ना? अरे ये देखो, ये वाला कितना सुंदर है। महंगा तो है, लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं इस वाले पिल्ले को खरीदने के लिए।
4: नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। वो वाला कितने का है?
0: अरे बेटा, कैसी बातें करते हो, ये बेकार है। अरे बिन पैर का पिल्ला, बहुत से लोग आते हैं इस दुकान में, हम तो इसे छुपाई देते हैं।
4: क्या?
0: वैसे भी ये भला किस काम का, कौन खरीदेगा इसे?
4: मैडम, मैं खरीदूंगा इसे, मैं इसे ही खरीदूंगा।
0: मगर क्यों? तुम्हें पता है ये तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा। तुम आखिर इसे क्यों खरीदना चाहते हो?
4: मुझे यही चाहिए।
0: देखो बेटा, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम अभी जोश जोश में ऐसा कह रहे हो। शायद इसकी हालत पर तुम्हें दया आ रही होगी, है ना?
4: नहीं।
0: लेकिन सोचो, कुछ ही दिनों में अगर ये बीमार हो गया तो तुम इसे सड़कों पर या कहीं और छोड़ दोगे। और देखो, अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।
4: जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके साथ। मैं इसके साथ कुछ नहीं होने दूंगा। ये अपने इन्हीं कमजोर पैरों पर चलेगा। चलेगा ना मेरे साथ, बनेगा ना मेरा दोस्त। अल्ले।
0: अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर इसे यूं ही ले जाओ।
4: यूं ही?
0: हाँ, अब इसकी भला क्या कीमत?
4: क्या मतलब? अगर इसकी टांगें खराब हैं, तो क्या इसकी कोई कीमत नहीं है?
0: अच्छा अच्छा, समझी, स्वाभिमानी हो, मुफ्त में कुछ नहीं लोगे, अच्छी बात है। तो ऐसा करो, इसके तुम बस 50 रुपए दे दो, खुश?
4: 50 रुपए क्यों? ये तो इसका अपमान हुआ ना। इस नस्ल के दूसरे पिल्लों की जितनी कीमत है वो ही इसकी भी है। मैं आपको इसके पूरे पैसे दूंगा।
0: पर बेटा ये तो
4: बताइए ना, इसकी नस्ल की कितनी कीमत है?
0: बहुत महंगी है, अब 2000 रुपए। मेरा मतलब है कि
4: तो यही इसकी कीमत भी है। अब ये रहे 1500 रुपए। और अब ये मेरा हुआ, मेरा दोस्त है ना मेरा दोस्त, तू यूजीन का दोस्त। तुम्हें शाम तक ले जाऊंगा दोस्त।
0: देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं और जानवरों के लिए तुम्हारे इस प्यार का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन बेटा क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने इस पपी में ऐसा क्या देखा कि तुमने इसको ही चुना, वो भी इतनी कीमत देकर?
3: आखिर क्यों बेटा?
4: आप पूछते हैं क्यों? ये देखिए मैडम, ये देखिए।
2: यूजीन नीचे झुका और उसने धीरे धीरे अपनी पैंट ऊपर उठाई। दुकानदार ने देखा यूजीन का बायां पांव घुटने से कटा हुआ था, नीचे का आधा पैर कृत्रिम था, वहां धातु का पांव लगा हुआ था जिसके सहारे वो थोड़ा मुश्किल से लेकिन बिना सहारे के चल सकता था।
3: अरे बेटा, ये तुम्हारा...
4: जी मैडम, आधा पैर नहीं है मेरा। अब बताएं मेरी क्या कीमत है आप जैसे लोगों के बीच? मैं भी इस पपी की तरह कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो हो गया ना मैं भी बेकार बोझ।
3: अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो, वो तो मैं बस...
4: मैं भी मौका मिलते ही सबसे खुलना मिलना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी ये कटी टांग ने मुझे सबके बराबर नहीं होने दिया। और 5 साल की उम्र से जानता हूँ मेरे साथ कोई नहीं खेलता, ये सब मैं जानता हूँ, ये सब मुझे पता है
3: बेटा।
4: इसलिए मुझे लगता है कि ये पपी मुझे मेरी कटी टांग से नहीं पहचानेगा, मुझे मेरी दोस्ती और मेरे प्यार से पहचानेगा। मैं नहीं चाहता ये अभी से मेरी तरह आजादी को, प्यार को तरसे। आज से, अभी से ये मेरा हुआ। आजा मेरा दोस्त, आजा।
3: यूजीन बेटा, इस पपी को तुमसे बेहतर भला कौन समझेगा, और शायद ये किसी और के साथ उतना प्यार भी ना पा सके जो इसका अधिकार है। इसे तुम्हें सौंपकर मैं भी निश्चिंत रहूंगी। ये लो, ये अब तुम्हारा हुआ, लो।
4: आजा।
5: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरा प्यारा दोस्त, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी का, यही बिलासपुर केंद्र है। इस समय 11:31 हुए हैं। अब से लेकर 11:55 तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची है, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: ये है हरिहरन की आवाज, शब्दकार ताहिर फराज, संगीत हरिहरन का एल्बम जश्न।

दलेर मेहंदी की आवाज़ में ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। दलेर मेहंदी का ये संगीत है और गीत है दलेर मेहंदी और संजीव आनंद का।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। अब मधुश्री की आवाज में जावेद अख्तर का लिखा हुआ गाना, राजेश रोशन का संगीत एल्बम मोक्ष।

अगली जो आवाजें हैं जगजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाजें हैं, बोल निदा फाजली के, जगजीत सिंह का संगीत और एल्बम किसका चेहरा।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस समय 11:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। 12 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 11:55 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज आयोजित की जा रही है। आरटीई के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में दाखिले के लिए तीसरा और अंतिम चरण आज से शुरू हो गया है। और मौसम विभाग ने आज बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हो रही ये बैठक नवा रायपुर के महानदी भवन स्थित मंत्रालय में हो रही है। इस बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में दाखिले के लिए तीसरा और अंतिम चरण आज से शुरू हो गया है। पात्र अभिभावक आज से 5 अगस्त तक आरटीई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन और आवश्यक संशोधन कर सकेंगे। 10 अगस्त से 14 अगस्त तक ऑनलाइन लॉटरी काउंसलिंग के माध्यम से चयनित बच्चों की सूची जारी की जाएगी। राज्यपाल रमन डेका ने वनवासी विकास समिति द्वारा जनजातीय बालिकाओं में अध्ययन और पठन पाठन की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित शबरी वाचनालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि शबरी वाचनालय एक दूरदर्शी पहल है जो जनजातीय बालिकाओं के लिए अध्ययन, चिंतन, आत्मविकास और व्यक्तित्व निर्माण का केंद्र बनेगा। रायपुर मंडल के भाटापारा हथबंद स्टेशनों के मध्य तीसरी लाइन सेक्शन में ऑटो सिग्नलिंग के लिए एनआई का कार्य किया जाएगा। इसके कारण रद्द की गई गाड़ियों में से कुछ गाड़ियों का परिचालन यथावत रहेगा। कल 23 जुलाई को रायपुर बिलासपुर मेमू पैसेंजर, बिलासपुर कोरबा और कोरबा बिलासपुर मेमू पैसेंजर तथा बिलासपुर रायपुर मेमू पैसेंजर निर्धारित समय के अनुसार चलेंगी। मौसम विभाग ने आज बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि प्रदेश में यह स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहेगी। इस बीच कोरबा जिले के लेमरू थाना क्षेत्र में उफनते सांचर नाले को पार करने की कोशिश में 28 वर्षीय युवक बाइक समेत बह गया। मंगलवार सुबह पुलिस और ग्रामीणों की संयुक्त तलाश में युवक का शव घटनास्थल से करीब 3 किलोमीटर दूर बरामद किया गया। कवर्धा में जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा आज ठाकुरपारा स्थित जिला रोजगार कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। वहीं गौरेला में जिला रोजगार केंद्र द्वारा भी आज टिकरकला स्थित संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में

0: रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित कृषक रत्न पुरस्कार के लिए जिले के पात्र किसानों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक किसान निर्धारित आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर अपने विकास खंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय में 31 जुलाई तक जमा कर सकते हैं। रायगढ़ जिले की कोतवाली पुलिस ने सहारा इंडिया निवेश धोखाधड़ी मामले में करीब 3 वर्षों से फरार चल रहे ब्रांच मैनेजर विजय कुमार शराफ को कोतरा रोड क्षेत्र से 20 जुलाई को गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार विक्रम यादव के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विक्रम यादव केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश की सांस्कृतिक धरोहर हैं। उन्होंने बांस वादन कला के माध्यम से भारत की समृद्ध लोक परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज आयोजित की जा रही है। आरटीई के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में दाखिले के लिए तीसरा और अंतिम चरण आज से शुरू हो गया है और मौसम विभाग ने आज बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी बिलासपुर है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय 12 बजने वाले हैं। शाम 5 बजे तक रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में एनएचपीसी की तीस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में हुई दुखद दुर्घटना में जानमान की हानि पर शोक व्यक्त किया है। श्री राधाकृष्णन ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये उपलब्धि पर्यावरण अनुकूल परिवहन और मानवता के हित में वैकल्पिक हरित ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भारत की प्रगति को और मजबूत करेगी। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल किया। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
3: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी।

0: Balki, because various sectors take different times to grow, and I think in as far as naval shipbuilding is concerned, India has always had an edge, and we had carried our legacy forward and in making ships. So very good progress has been made in Atmanirbharta as far as shipbuilding is concerned.
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भागीदारी की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने हिंद प्रशांत भू राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा की और हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत आसियान को केंद्र में रखते हुए स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति वचनबद्ध है। इस बैठक से अलग डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के तहत कल चंडीगढ़ में पारंपरिक पूरक और एकीकृत चिकित्सा पर ब्रिक्स सम्मेलन की सफलता पूर्वक मेजबानी की। ये सम्मेलन चंडीगढ़ में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्यक्रम के 4 दिवसीय व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा था। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। तीर्थयात्रियों को यात्रा फिर शुरू होने के संबंध में आधिकारिक माध्यमों से अपडेट रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे लता मंगेशकर और मुकेश के गाए कुछ दो गाने। वीर दुर्गादास फिल्म का गाना सबसे पहले आपको सुनवाते हैं, भरत व्यास के बोल, एस एन त्रिपाठी का संगीत।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में अब आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म का नाम उजाला।

0: साथ रखकर वो जा रहे हैं देखो दो प्यार करने वाले दुनिया वालों से दूर चलने वाले।
1: यादों की महफिल कार्यक्रम के बाकी गाने आप सुनेंगे एक ब्रेक के बाद।

हम हाजिर हैं यादों की महफिल कार्यक्रम के बाकी गानों को सुनवाने के लिए। तीसरा कौन, इस फिल्म का गाना बोल है आनंद बख्शी के, संगीतकार राहुल देव बर्मन। आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं ये लता मंगेशकर और मुकेश के गाए युगल गीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
6: लीजिए अब सुनिए शोर फिल्म का गाना, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजों में, संतोष आनंद का लिखा हुआ गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गाना सावन फिल्म से है, प्रेम धवन के बोल, संगीत है हंसराज बहल का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश के गाए कुछ युगल गाने। पूनम की रात इस फिल्म का गाना, शैलेंद्र का लिखा हुआ, सलील चौधरी का संगीत।

आज के यादों की महफिल इस कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना राज फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

नमस्कार श्रोताओं, आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आज की जो इबारत है, विविध भारती के फेसबुक पेज पे हमने पोस्ट की है, जो आप लोगों ने पढ़ी है, उस इबारत को हम यहाँ पढ़ के आपको सुनाते हैं। इंसान अपने जीवन में कई परिस्थितियों का सामना करता है, कभी सफलता, कभी संघर्ष, कभी असफलता। अंतिम परिणाम तो बाद में आता है, पर इंसान की पहचान उसके धैर्य और साहस से होती है। हर ठोकर के बाद भी चलते रहना और व्यक्तित्व को गढ़ना अपने आप में महत्वपूर्ण है। जब कोई हृदय तोड़ दे, जब कोई चांदी की दीवार छोड़ दे, जब दोस्त दोस्त ना रह जाए, जब बहारें भी चमन लूट लें, जब वक्त भी वफा करना छोड़ दे, जब समझ में ना आए कहाँ जाए, तब एक जादुई रूहानी आवाज हमारा दामन थाम लेती है। उस आवाज का दामन थामे हम अपने एहसासों को बड़ी शिद्दत से बयां करते हैं और कहते हैं, भूली हुई यादों हमें इतना न सताओ, क्योंकि हमें ये पता है दुनिया बड़ी है संग दिल। बताइए कौन सी है वो आवाज जिसने हमें जिंदगी के मायने समझाए और मुश्किल समय में हमें आवाज दी। जी हाँ, आपको अपने बारे में भी बताना है कि आपके लिए वो कौन सी आवाज है। एक हमारे साथी ने बहुत प्यारी बात लिखी है, लिखते हैं कि मुकेश जी की आवाज दर्द की वो स्याही थी जो कागज पर नहीं सीधे दिल पर उतर जाती थी। वो न ऊंचे सुरों के जादूगर थे, न शब्दों के बाजीगर, वो बस सच गाते थे। उनकी आवाज में वो थकान थी जो हर टूटे हुए इंसान के भीतर होती है, वो सन्नाटा था जो बिछड़ने के बाद कमरे में रह जाता है। उनके गाए दर्द भरे गीतों को सुनते हुए लगता है जैसे कोई अपना बहुत पास बैठकर बिना शिकायत किए बस अपनी कहानी सुना रहा हो। मुकेश जी ने दर्द भरे गीतों में खुद को जिया है, इसीलिए दशकों बाद भी जब रात भारी हो जाती है, जब आंखें भिगो देती है, जब सबसे पहले उनकी आवाज कंधे पर हाथ रखकर कहती है, मैं हूं ना। जी हाँ, यही

आपको बताना है कि जीवन में बहुत सारे संघर्ष होते हैं, कई बार परिस्थितियां बहुत नकारात्मक होती है, हम परेशान होते हैं, लेकिन एक आवाज होती है या एक व्यक्ति होता है जिसकी आवाज सुन के, जिसकी बातें सुन के, या फिर जिसका हमारे सिर पर हाथ रख देना ही काफी होता है, और वो ये कहता है कि मैं हूं ना, आप धैर्य रखिए, और उनकी आवाज सुनकर मन को बड़ा संबल मिलता है। आप बताइए कि आपके जीवन में वो कौन सी आवाज है, वो कौन सा व्यक्ति है, वो कौन सा शख्स है जिनके वो प्यारे शब्द सुन के, जिनके मन को बहुत सांत्वना देने वाले जो शब्द होते हैं वो मिलते हैं और आपके मन को बहुत संबल मिलता है। चलिए पूरब और पश्चिम फिल्म का ये गाना सुनते हैं, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये भी आपको बताना है।

क्या आपसे कभी किसी ने कहा है कि जब मुश्किल हालात हो तब मेरे पास आना और मेरे पास वो सुकून मिलेगा जो तुम ढूंढ रहे हो? ऐसी ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई आवाज आपके पास है तो उसे हमें बताइए। मनोज कुमार और सायरा बानो पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी की ये बात है कि निराशा के इन घने बादलों के बीच जब जिंदगी से भरोसा उठने लगता है तब रेडियो के किसी कोने से एक बेहद दर्द भरी रूहानी और मखमली आवाज गूंजती है। वो आवाज हमारे टूटते हौसले को संभालती है और गुजरे जमाने की भूली हुई यादों को ताजा कर देती है। भले ही ये दुनिया बड़ी है संगदिल, लेकिन उस आवाज का जादू हर गम को सहने

हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि बचपन में माता पिता, बाद में वाइफ, और सूरत में जब 2006 में पूर आया था यानी कि बाढ़ जब आई थी, तब मेरे अंकल यानी कि मेरे जो काका हैं उन्होंने मुझे कहा था मैं हूं ना। एक साथी की ये बात है कि आज जो इबारत है इंसान के भीतर छिपे उस असीम धैर्य और जज्बे को सलाम करती है जो सबसे गहरे अंधेरे में उम्मीद की लौ जलाए रखता है। ये रूहानी और जादुई आवाज सदी के महान गायक मुकेश जी की है, जिनके गाए गीत जाऊं कहां बताए दिल की गूंज, इस इबारत के हर लफ्ज को महसूस होती है। जब रिश्तों के धागे टूट जाते हैं और अपने ही पराए होने लगते हैं, तब मुकेश जी की आवाज किसी ठंडी छांव की तरह हमारा हाथ थाम लेती है। उनकी गायकी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि केवल सुर नहीं लगाते थे, बल्कि इंसान के एकाकीपन और इसके उसके भीतर चल रहे संघर्ष को अपनी आवाज में जी लेते थे। उनका वो सादगी भरा, दर्द से भीगा अंदाज भरोसा दिलाता है कि बिखर जाना अंत नहीं है, ठोकरे खाकर फिर से खड़े होना जिंदगी का असली नाम है। बहुत अच्छी बात है आपकी, धन्यवाद आपका। और हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं, देखिए कठिन समय हर व्यक्ति के जीवन में आता है, विपरीत परिस्थितियां हर व्यक्ति के जीवन में आती है, लेकिन अपने आप को संभाले रखना बहुत मुश्किल कार्य होता है। आप अपने आप को किस तरह से संभालते हैं? क्या कहते हैं आप अपने दिल को, अपने मन को किस तरह समझाते हैं? और ये भी हमने आपसे पूछा है कि कौन सी आवाजें हैं, कौन सी व्यक्ति हैं जिन्होंने आपसे कहा है कि हाँ मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये हमारे सवाल हैं, दो सवाल हैं, बताइए इसके बारे में। चलिए अगला गाना संगम फिल्म से है, शंकर जयकिशन का संगीत है, और इसमें तीन कलाकार हमें दिखाई देते हैं। तो राज कपूर तो हैं ही, उनके अलावा दो और कलाकार हैं, वो कौन कलाकार हैं ये आप हमें बताइए।

राज कपूर, राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी लिख रहे हमारे कि जब मैंने कक्षा 10वीं परीक्षा दी थी, लास्ट पेपर के दिन पापा का देहांत हो गया था। मेरे पापा निरंतर विविध भारती सुना करते थे और ऑल इंडिया रेडियो भी सुना करते थे। आज लगभग 30 वर्ष हो गए, मैं भी निरंतर रूप से विविध भारती सुनता हूँ और जब कभी परेशानी में होता हूँ तब विविध भारती में एक हिम्मत दिलाने वाला गाना बज जाता है और कहीं से ये सुनाई देता है कि चिंता मत करो मैं हूं ना। एक साथी लिख रहे कि हमारे पास मुकेश जी के गाए गीतों की किताब हुआ करती थी जिसमें से हमने सारे गीत याद कर लिए थे, तो उनके तो सारे गीत ही हमारे फेवरेट हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि चांदी की दीवार ने तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया, पैसे का महत्व धन की महिमा बखान करता है, यह गीत बता रहा है कि प्रेम में भी पैसे ने सेंध मारी की है, पैसे के खातिर लोग कैसे दिल तोड़ देते हैं और अलग दुनिया बसा लेते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि मुकेश जी के गाने की बात है तो दिल की गहराइयों में समा जाता है वो जो गीत है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि मुकेश जी का व्यक्तित्व उनके गायन की तरह ही अत्यंत सरल, विनम्र और सहज था। वे प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचने के बाद भी जमीन से जुड़े रहे, उनके उनमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं था। वे सहकर्मियों, संगीतकारों और अपने प्रशंसकों के प्रति आत्मीय व्यवहार रखते थे। उनकी सादगी और विनम्रता ही उनके व्यक्तित्व को और अधिक महान बनाती है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, देवर फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। आनंद बख्शी के बोल हैं, धर्मेंद्र शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया ये गाना है। संगीत किसका है आपको बताना है।

देवर फिल्म का ये गाना, इस गाने को संगीतबद्ध किया रोशन ने। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि जब हमारे साथी हमें छोड़कर चले गए, हमारी तो मानो दुनिया ही खत्म हो गई। तब सहारा दिया हमारे कई अपनों ने, जिसमें सबसे ऊपर नाम हमारे पापा का है, उसके बाद बच्चे और कुछ प्यारे से दोस्त। सबसे ज्यादा सहारा मिला विविध भारती का, जिसके साथ हमारा ज्यादा से ज्यादा समय बीता और गीत जो शुरू से शामिल थे हमारी जिंदगी में। एक हमारे जो साथी हैं वो ये बात लिख रहे हैं कि मुकेश की आवाज का जादू बयां करते हुए कुछ प्रशंसक पंक्तियां लिख रहा हूं। दर्द में डूबी वो आवाज जो रूह को छू जाए, मुकेश के गीतों में सारा जहां समा जाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए कि धुन हर दिल को सुकून और गहराई दे जाए। धन्यवाद आपका। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। दिल ने पुकारा, इस फिल्म का गाना, इन देवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि मैं कभी मुकेश जी के गाने पहले सुनता नहीं था, लेकिन जब गाने सुने तो पता चला कि इन लोगों को या इन गानों को लीजेंड क्यों कहते हैं। इन लोगों के गाए गाने सीधे दिल की गहराई में उतरते हैं। और एक गाना जो हमने देवर फिल्म का सुनवाया था, बहारों ने मेरा चमन लूट के, तो एक साथी हमारी ये लिख रहे हैं कि वाह क्या बोल है, किसी ने चलो दुश्मनी की मगर इसे दोस्ती का नाम क्यों दे दिया, अप्रतिम गाना है। और इसी गाने के बारे में हमारे साथी ने ये भी लिखा है कि देवर फिल्म की ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है, ये इंसानी रिश्तों की मजबूरी, किस्मत के क्रूर खेल और निस्वार्थ प्रेम के बदले मिले धोखे को दर्शाता है। ये गाना सिखाता है कि जब इंसान के पास अपनी बेबसी जाहिर करने का कोई रास्ता नहीं बचता तो वो संगीत का सहारा लेता है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मुकेश जी 1972 में हमारे शहर कटक में आए थे, बाराबाती स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ था, नितिन मुकेश छोटे थे वो भी आए थे, और गाना बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं ये गाना उन्होंने गाया था, और ये बातें इन्हें याद आ रही है। एक साथी लिख रहे हैं कि मुकेश जी की आवाज यानी सादगी, सच्चाई और दर्द का ऐसा संगम जो सीधे रूह को छू जाए। उन्हें विरह के गीतों का बेताज बादशाह यूं ही नहीं कहा जाता, बिना किसी शास्त्रीय तामझाम के भी उनकी गायकी सीधे दिल में उतर जाती है। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं छोटी बहन फिल्म का गाना। मुकेश की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, कौन से कलाकार पर फिल्माया गया है ये आपको बताना है।

0: बस कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहां से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूल।

0: झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशर्म, शेखर।
2: मेरे पास वक्त नहीं फजूल बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
0: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
1: होता है तो होने दो।

रहमान पर फिल्माया गया ये गाना है। एक हमारे साथी की बात है कि मुकेश की गायकी कोई दिखावा या बनावटीपन नहीं था, उनके हर गीत में शब्दों का उच्चारण इतना साफ और संजीदा होता था कि हर शेर एक कविता की तरह कानों में रस घोलता था। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि इन गीतों को सुनते सुनते बड़े हुए हैं, एकदम अंदर तक धंसे हुए हैं दिल में ये सारे गाने। हम लोग के घर में लॉन्ग प्लेयर था रिकॉर्ड, मुकेश जी का हर तरह के गाने का कलेक्शन हुआ था होता था। बहुत अच्छे लगते हैं उनके ये गाने। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि राज कपूर के रूप में मुकेश को सिनेमा का बेहतरीन साथी मिला। आवारा हूँ या मेरा जूता है जापानी जैसे गीतों में उन्होंने आम आदमी, उसके संघर्ष और उसकी जिंदा दिली को अपनी गायकी से एक मुकम्मल अंदाज में बयां दिया। राज कपूर ने शायद इसीलिए कहा था कि मैंने अपनी आवाज खो दी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हरियाली और रास्ता इस फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। किसने लिखा है ये गाना, ये आप हमें बताइए।

हरियाली और रास्ता फिल्म का ये गीत शैलेंद्र का लिखा हुआ है। आपने सही जवाब हमें लिख करके भेज दिए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि जिंदगी की राह में कभी ठोकरें मिलती है, कभी बहारें, कभी दोस्त साथ छोड़ जाते हैं, तो कभी वक्त वफा करना भूल जाता है। ऐसे में कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं, रूह तक पहुंचती है। वे हमारे दर्द को शब्द देती है, हमारी यादों को सहलाती है और अंधेरे में उम्मीद का दिया जलाती है। ऐसी ही ये आवाजें। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में पार्श्व गायक मुकेश चंद्र माथुर जी एक ऐसी आवाज का नाम है जो सीधे दिल में उतर जाती है। द वॉइस ऑफ द मिलेनियम और द मैन विद द गोल्डन वॉइस कहे जाने वाले मुकेश जी की आवाज में जो दर्द, सादगी और एक अनूठी कसक थी, मुकेश जी की गायकी की सबसे बड़ी खासियत उनकी आवाज का ठहराव और उर्दू की बेहतरीन अदायगी थी। मुकेश जी अपने गीतों में जीवन के दर्शन, प्यार की तड़प और आशावादी दृष्टिकोण को बहुत खूबसूरती से उन्होंने पिरोया था। चलिए, संजोग फिल्म का गाना, संगीत किसका है यह आपको बताना है। दो कलाकार हैं, प्रदीप कुमार और शोभा खोटे, उन पर फिल्माया गया ये गाना है।

मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि मुकेश जी की आवाज की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो केवल एक गीत नहीं गाते थे बल्कि सुनने वाले के दिल का बोझ हल्का कर देते थे। जब वे गाते हैं चांदनी आई घर जलाने, तो ऐसा लगता है मानो जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजें भी उस वक्त इंसान को तकलीफ दे रही है। ये आवाज हर अकेले और उदास इंसान को ये तसल्ली देती है कि इस दर्द में वो अकेला नहीं है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में, वो मुझको आपको मिल ना सके सुबह के उजालों में। कुछ आवाज़ ऐसी रूहानी होती है ढूंढने से नहीं मिलती, गानों के माध्यम से कानों से होकर सीधे हमारे दिल में उतर जाती है वो आवाज़ मुकेश की। एक साथी हमारी लिख रही कि क्या आवाज़ थी वो, जब गम के साए घेरते तो चुपके से कहीं दूर रेडियो से झरती वो आवाज़ हमें अपने आगोश में ले लेती और हम कुछ देर के लिए गम भूल जाते, और सब जब सुख के फूल बिखरते हैं तो ये आवाज़ हमें अपने साथ झूला झुलाती। न जाने कितनी उपमाओं से सजी थी मुकेश जी की आवाज़, जितना लिखूं कम है। आकाश में जितने तारे हैं, नदी में जितना पानी है, वैसे ही गायकी की दुनिया में मुकेश की उपस्थिति दर्ज है। सदियां बीत जाएंगी मगर मुकेश जी की आवाज़ का जादू कम न होगा। चलिए अनीता फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप बताइए।

मनोज कुमार और साधना पर फिल्माया गया ये गाना। एक साथी की ये बात है कि आज की इबारत मानव जीवन के सबसे गहरे दर्शन, संघर्ष और संगीत के रूहानी असर का एक अत्यंत भावुक और जीवंत चित्रण है। ये सच है कि परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हर ठोकर के बाद संभलना ही जीवन है। जब इंसान तन्हाई, छल और वक्त की बेवफाई से टूट जाता है, तब शब्द और तर्क काम करना बंद कर देते हैं। उस वक्त केवल संगीत और एक रूहानी आवाज ही दिल को तसल्ली दे पाती है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बंदिनी फिल्म का गाना, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, नूतन पर फिल्माया गया, संगीत किसका है आपको बताना है।

दिल को सीधे लगती है मुकेश जी की आवाज, बिल्कुल सीधी सादी सादगी सच्चाई भरी आवाज। कौन भला न होगा जो मुकेश जी की आवाज पर मोहित ना हो। एक साथी लिख रहे हैं कि हर इंसान की असली पहचान उसके जीवन की कठिन परिस्थितियों और चुनौती भरे समय उसके जीवन का हिस्सा होती है, कोई भी इससे अछूता नहीं रहता। विपरीत परिस्थितियों में भी असली पहचान व्यक्ति के धैर्य और संयम से होती है, इसमें सफलता मिले या असफलता उसकी परवाह नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की बातें उन्होंने लिखी है। समय कम है, चलिए एक गाना आपको सुनवाते हैं। बंबई का बाबू इस फिल्म का ये गाना है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन है यह आपको बताना है।

0: सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोके रोके।
1: अब हमें भी चलना होगा, समय जो है हमें अब इजाज़त नहीं दे रहा है कि कुछ और बातें की जाए या और गाने सुनवाए जाए। ये जो गाना आपने सुना, इस फिल्म के मुख्य कलाकार देव आनंद और सुचित्रा सेन हैं, और आपने बहुत प्यारी बातें फेसबुक पर लिख करके भेजी, इसके लिए धन्यवाद। और अब मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

नमस्कार, मैं हूं यूनुस खान। आज 22 जुलाई है, कैलेंडर के पन्ने पर एक आम सी तारीख, लेकिन इतिहास के झरोखों में झांकें तो हमारे देश के लिए ये बहुत गौरवशाली और महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि आज ही के दिन 1947 में भारत की संविधान सभा ने हमारे तिरंगे को आधिकारिक रूप से स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया था। देश के आजाद होने के बाद संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया था। इसमें तीन रंग थे, ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा। सफेद रंग की पट्टी में नीले रंग से अशोक चक्र बना था, जिसमें 24 तीलियां थीं जो धर्म और कानून का प्रतिनिधित्व करती थीं। राष्ट्रध्वज तिरंगे का वही स्वरूप आज भी मौजूद है और ये तिरंगा हमारे गौरव का प्रतीक है।

इतिहास के गलियारों में भटकें तो पता चलता है कि सबसे पहले देश के राष्ट्रीय ध्वज की पेशकश 1921 में महात्मा गांधी ने की थी, जिसमें बापू ने दो रंग के झंडे को राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात कही थी। इस झंडे को मछलीपट्टनम के पिंगली वेंकैया ने बनाया था। दो रंगों में लाल रंग हिंदू समुदाय और हरा रंग मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करता था। बीच में था गांधी जी का चरखा, जो इस बात का प्रमाण था

भारत का झंडा अपने देश में बने कपड़े से बना है। धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होते चले गए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिंगली वेंकैया ने इस झंडे को डिजाइन किया था। 1923 में पहली बार इस तिरंगे का प्रयोग हुआ था नागपुर में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में। इस दौरान हजारों लोगों ने इस ध्वज को अपने हाथों में थामा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध में इस ध्वज का इस्तेमाल किया था। आज हम अपने घरों और दफ्तरों में तिरंगा फहरा सकते हैं, इस बात की अनुमति है। तिरंगा भारत के गौरव का प्रतीक है और हम इस तिरंगे को सलाम करते हैं।

साल 2002 से इंडियन फ्लैग कोड में बदलाव किए गए हैं। अब कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी दिन अपने घर, दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर में सम्मान के साथ राष्ट्रध्वज फहरा सकता है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर

पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस उपलक्ष्य में देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया और लोगों ने घर घर में तिरंगा फहराया और अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, जिनकी कुर्बानी की वजह से आज हम आजाद हैं। जब किसी खेल में भारत के खिलाड़ी जीतते हैं तो वो तिरंगा उड़ते हैं या पूरे मैदान में तिरंगा लहराते हुए दौड़ते हैं। ये भारत के गर्व को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। हम सब चाहते हैं कि हम ऐसे काम करें जिससे देश का मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाए और हम तिरंगा लहरा सकें।

ध्वज दिवस यानी फ्लैग डे पर केंद्रित थी आज की त्रिवेणी। हर साल 22 जुलाई को यह दिन मनाया जाता है। अब यूनुस खान को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत आईएनएस मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि बहस जितनी भी लंबी चले उतनी लंबी होनी चाहिए और यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते।
1: देखिए, जो ऑपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है।
2: संवैधानिक पद पे रह के संविधान की गरिमा को तार तार किया, उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं।
0: भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है।
3: आप सब जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जिसमें 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं उसकी तैयारी में 6 महीने लगते हैं, लेकिन मात्र 37 डेज में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया और रिजल्ट भी मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने ला खड़ा कर दिया गया। जो री एग्जामिनेशन हुई उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको

0: प्लग इन किया जाए।
1: सुश्री स्वराज ने बताया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे सभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट

0: पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। इससे पहले जब लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू करने के लिए एकत्रित हुई तो अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिड़ला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष ने नीट मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सदस्यों का अधिकार है।
1: आजादी के 50 साल बाद सदन ने यह संकल्प लिया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाएंगे। ये मेंबर्स के आवर है। आपके प्रश्नों को जो उत्तर तैयार करने में कितना श्रम जाता और जनता का धन जाता है आप इसकी कल्पना करिए। आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चलने दीजिए।
0: बार बार अपील करने के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने उपसभापति की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार INS कदंबा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। INS मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
2: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैड कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि IASV त्रिवेणी पर सवार होकर पहली बार सभी सेनाओं की महिला सदस्य समुद्री अभियान समुद्र प्रदक्षिणा ने न केवल पृथ्वी का चक्कर लगाया बल्कि इस असाधारण उपलब्धि से करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित भी किया। उन्होंने IASV त्रिवेणी को आत्मनिर्भर भारत और भारत के नवाचार क्षमताओं और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण बताया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।

0: In this era of volatility and disruption,
1: उथल पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं, इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
0: इवन वाइल एड्रेसिंग चैलेंजेस,
2: बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारतीय अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान को हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण की अनुमति देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए एक बेहद खतरनाक कदम होगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान फिलीपींस, रूस और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 16 जिलों में पानी भरा हुआ है। राज्य में बाढ़ में 21 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 31 हो गई है।
3: आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 872 गांव अभी भी जलमग्न हैं और 5,64,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 24,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। कामरूप और कामरूप महानगर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां 4,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार ने 71 राहत शिविर और 202 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन शिविरों में 12,000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है, जबकि 1,00,000 से अधिक प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 753 अंक गिरकर 76,717 पर और निफ्टी 202 अंक की गिरावट के साथ 23,986 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्रों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम

सदाबहार नगमे। पहला जो गीत है ये उसने कहा था, इस फिल्म का गाना है, मन्ना डे, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, सलील चौधरी का संगीत।

तू नहीं और सही, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की आवाजों में, गीतकार असद भोपाली, संगीतकार रवि।

0: ये प्यार से।
1: परख फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार सलील चौधरी।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया। एक और आ गया। जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: विविध भारती से, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अब आपको सुनवाते हैं मियां बीवी राजी, इस फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, एसडी बर्मन का संगीत।

तीर और तलवार इस फिल्म का ये गाना आपको सुनवाते हैं। आशा भोसले की आवाज, फारूक कैसर के बोल, संगीत निसार का।

अगला गीत सुनते हैं रंगीला राजा फिल्म का गाना तलत महमूद और सुधा मल्होत्रा की आवाजों में, असद भोपाली के बोल संगीत शिवराम का।

रंगीला राजा फिल्म का ये गाना आपने सुना, तलत महमूद और सुधा मल्होत्रा की आवाजों में, असद भोपाली के बोल और संगीत शिवराम का। सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला जो गीत है, जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ। इस गीत को लिखा हसरत जयपुरी ने और धुन

शर्म किया, इन आँखों का रंग हो गया गुलाबी गुलाबी।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी
2: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: कैसी हो आरती?
2: बिल्कुल ठीक हूँ।
1: बिल्कुल बढ़िया।
2: बिल्कुल मॉनसून में
1: बारिश का आनंद ले रही हो, है ना?
2: बिल्कुल।
1: देखिए कई जगहों पर तो अभी बहुत ज्यादा बारिश होने वाली, उसका रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। तो हम तो अपने सभी सखियों से, सखाओं से, साथियों से यही कहना चाहते हैं कि आप सावधानी रखिए और बारिश में और भी बहुत सारी पानी से संबंधित सावधानियां, खान पान से संबंधित सावधानियां तो वो तो आपको रखनी ही है जब तक ये मानसून चलेगा।
2: बिल्कुल। और जितना ज्यादा हम अपना ध्यान रखेंगे उतना ही इस मानसून का हम लुत्फ भी उठा सकते हैं,
1: आनंद ले सकते हैं
2: जी।
1: अन्यथा बीमार होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। चलिए आज के विषयों की हम बात कर लेते हैं आरती
2: जी।
1: तो हाँ, पहला विषय भी हमारा फिटनेस से संबंधित है। महिलाएं और फिटनेस
2: जी,
1: ये हमारा पहला विषय है
2: जी।
1: और दूसरा
2: है लेखिका ज्योति जैन जी से ममता सिंह जी की बातचीत होगी, जिसमें वो फिटनेस के बारे में हमें बताएंगी, जानकारी देंगी, तो उसको आप सुनिएगा जरूर।
1: हाँ।
2: और साथ ही हम बात करेंगे साड़ियों के संसार के अंतर्गत, आज हम मणिपुरी साड़ी लेकर आए हैं।
1: अच्छा, जो कि मणिपुर में बनती है।
2: जी हाँ, बिल्कुल।
1: और अगला जो विषय है हमारा, हमारा शब्द, हमारा विचार आपके, तो जो शब्द है वो है फिजूल खर्ची। तो फिजूल खर्ची तो हमें नहीं करनी चाहिए, मितव्ययता से रहना चाहिए, सोच समझ कर कहां जरूरत है वहीं पर पैसा खर्चा करें, क्योंकि अगर हमने इस बात का ध्यान नहीं रखा तो हमारे पूरे महीने का बजट बिगड़ जाता है, बचत नहीं हो पाती है। तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है,
2: क्योंकि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो बिल्कुल दिमाग से निकल जाता है कि हमें बजट के हिसाब से चलना है। हम जो हमें जरूरत की चीजें नहीं भी होती हैं उसको भी खरीद लाते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए। तो आप बताइए, आपने क्या फिजूल खर्ची करी है या फिर आप अपने अच्छे तरीके से अपने बजट के हिसाब से चलते हैं?
1: हाँ, तो ये आप हमें बता सकते हैं। और हमारा जो फेसबुक पेज है www.facebook.com, तो वहां जाकर के आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं इसके बारे में। और व्यंजन की भी आज बात करेंगे। देखिए आज फिटनेस की बहुत सारी बात हो रही है, तो ज्वार के व्यंजन। अब ज्वार भी एक ऐसा अनाज है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है
2: जी,
1: तो उससे बनने वाले जो व्यंजन है आपके जिस जगह पर, देखिए हमारा जो देश है विविधता से भरा हुआ देश है, हर राज्य में अलग अलग तरह एक ही चीज से अलग अलग तरह के व्यंजन बनते हैं। तो आप जहां पर रहते हैं, आपके एरिया में, आपके घर में ज्वार से किस तरह के और क्या व्यंजन बनाए जाते हैं उसके बारे में आप हमें बता
2: बिल्कुल सकते। क्योंकि जो फिटनेस का ध्यान रखते हैं वो अधिकतर ये ज्वार ही खाते हैं, तो आप बताइए आप किस तरीके से आप इसको ज्वार को बनाते हैं?
1: हाँ, तो रोटी तो बनती ही है, ये तो पारंपरिक तौर पर बहुत वर्षों से हम देखते आए हैं हमारी दादी नानी के जमाने से कि ज्वार के आटे से रोटी बनाई जाती है और विभिन्न तरह की उसके साथ दालें सब्जियां उसके साथ खाई जाती है। लेकिन इसके अलावा भी और कोई व्यंजन अगर बनाए जाते हैं तो उनके बारे में आप हमें लिख

0: अंदर भेज सकते हैं। और जब फिटनेस की बात आती है तो फिटनेस तो तभी आती है जब हमारा मन चंगा हो, दिल बहुत स्वस्थ हो, दिमाग बहुत स्वस्थ हो, और उसका एक बहुत ही अच्छा साधन है और वो
1: गीत
0: है
1: संगीत
0: संगीत।
1: जी।
0: चलिए सुनते हैं गीत।

0: आरती, देखो पहली फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवाया, हेमलता और सुरेश वाडकर की आवाजें, और
1: जी
0: इसमें भी बारिश से संबंधित बातें थी, लेकिन बड़ी खुशी वाली बातें थी। लेकिन ये खुशी तभी बरकरार रह सकती है जब हम अपने फिटनेस का ध्यान
1: जी
0: रखें,
1: बिल्कुल
0: और खास तौर पर जब बारिश बहुत हो रही हो, मानसून का सीजन हो, तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हुए फिटनेस का ध्यान रखा जा सकता है, तभी
1: जी
0: इनका आनंद ले सकते हैं।
1: तो
0: चलो,
1: फिटनेस के ऊपर हमारे कुछ बताने वाले हैं।
0: हाँ बिल्कुल, एक लेखिका है ज्योति जैन उनका नाम है, और वैसे तो वो लेखिका है, उन्होंने अपने लेखन के बारे में भी हमें बताया है, उनकी पुस्तकों के बारे में भी बताया है, लेकिन आज इस अंक में वो फिटनेस की बातें करने जा रही हैं,
1: जी
0: तो सुनते हैं उनकी ये बातें, और आने वाले अंकों में हम उनके लेखन के बारे में भी जानेंगे।
1: बिल्कुल,
0: चलो
1: और ममता जी ने इनका इंटरव्यू लिया है, इनसे बातचीत करिए, तो सुनते हैं।
0: बिल्कुल।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, और विविध भारती के स्टूडियो में साहित्यकार ज्योति जैन जी आई हैं। आपका हम सखी सहेली की ओर से और विविध भारती परिवार की ओर से स्वागत कर रहे हैं। ज्योति जी नमस्कार, आपका बहुत स्वागत।
0: नमस्कार ममता जी, और सचमुच सखी सहेली में आकर के मुझे बस सखी वाली ही फीलिंग आ रही है, तो आपका बहुत
2: बिल्कुल
0: सारा धन्यवाद।
2: सखी सहेली आप सुनती रही हैं
0: जी
2: लगातार,
0: जी बिल्कुल।
2: तो आपको कैसा लगता है?
0: ऐसा लगता है कि देखिए, हम अभी तक जिसको दूर बैठकर सुनते थे सखी

0: सहेली कार्यक्रम, उसके विज्ञापन भी सुनते थे कि सखी सहेली कार्यक्रम सुनने के लिए पुरुष वर्ग भी किस तरह से वो
1: सखा भी
0: समय सखा भी
1: सुनते
0: सुनते हैं,
1: हैं
0: तो अभी तक जिसको दूर बैठकर सुनते थे उसमें खुद आकर के तो एक अद्भुत अनुभूति हो रही है कि अरे वाह, मैं खुद भी एक सखी बन गई हूँ यहाँ
1: जी।
0: आकर।
1: हम सखियों को बता दें कि ज्योति जी के पास बहुत सारे हुनर हैं, और एक ऐसा हुनर है जो आप सबके लिए प्रेरणा की बात है। इन्होंने अपने फिटनेस के लिए बहुत कुछ किया है, डाइट से लेकर जिम जाती हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं कि बताइए सखियों को अपने फिटनेस के लिए क्या कुछ करना चाहिए।
0: सबसे पहले तो मैं सभी सखियों से ये कहना चाहूंगी कि स्वयं को कमतर न आके, क्योंकि आपकी जो देखभाल वाली लिस्ट है उसमें आपका नाम सबसे आखिरी में होता है,
1: बिल्कुल।
0: और ये चीज बिल्कुल गलत है। ये आप अपने साथ न्याय नहीं कर रही हैं, क्योंकि आप परिवार में हर सदस्य का ध्यान रखती हैं। आपको पता होता है आपकी सास को क्या पसंद है, ससुर जी को क्या पसंद है, या माता पिता हैं तो उनको क्या पसंद है, पति को क्या पसंद है, बच्चों को क्या पसंद है, हर एक का ध्यान रखती है और उसके अनुसार आप व्यंजन बनाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ईमानदारी से अपने लिए सलाद काटा?
1: अपने अकेले के लिए कभी खाना बनाया?
0: नहीं, अमूमन नहीं होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये पहले तो यहां से शुरू हो जाए कि आपको अपना स्वयं का ध्यान रखना है। आपने जिम की बात कही है तो ममता जी, मैं इसको यहाँ से शुरू करती हूँ कि लगभग 13-14 साल पूर्व मुझे अस्थमा था, और पुराने लोग यह कहते पाए जाते हैं कि दमा जो है वो दम के साथ जाता है। अस्थमा यानी दमा, सांस की बीमारी, तो कहते हैं कि दमा दम के साथ जाता है। मैंने भी सुना ये कि, तो मुझे एक मन में चीज लगी कि अरे ये मुझे बहुत ही गंभीर बीमारी है
1: जी।
0: और मुझे इससे अब बचना है। यहां तक कि मैं स्टेराइड्स पर थी,
1: जी।
0: तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मैं चूंकि खिलाड़ी रही हूं, एनसीसी की कैडेट रही हूं
1: बैडमिंटन खिलाड़ी।
0: और बैडमिंटन खिलाड़ी रही हूं, तो मुझे लगता है कि अपने फिजिकल जो फिटनेस है वो आपको बहुत सारी चीजों से बचाती है।
1: जी।
0: तो उस वक्त जब मैंने जिम ज्वाइन किया, और धीरे धीरे, देखिए अभी क्या होता है, मैं कई लोग मेरे वीडियोस देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे डेडलिफ्ट है 40 किलो का, या बेंच प्रेस है 25 किलो का डंबल का, तो उनको लगता है कि बड़ा अच्छा है ये तो। लेकिन कैसे होता है कि आपको ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से चीजें आती हैं। आप एकदम से आप 50 किलो का या 40 किलो का या 25 किलो का डंबल नहीं उठा सकते हो। तो जब मैंने इसकी शुरुआत की तब मैंने 2.5 किलो के डंबल से शुरू किया, 5 किलो से शुरू किया। तो जब जब मैंने जिम जाना शुरू किया, जब मुझे लगा कि नहीं, सेहत के प्रति हमको जागरूकता चाहिए, तो मैंने महसूस किया कि धीरे धीरे मैं स्ट्रांग होती जा रही हूं। तो जब आप भीतर से भी स्ट्रांग होते हैं तो आपको बीमारियां फिर थोड़ी सी आपसे दूर भागती हैं, बीमारियां आपसे डरने लगती हैं। ये मैंने जिम शुरू किया, और जब सिक्किम में हम गए पहाड़ी क्षेत्र में, तो वहां से आकर के मैंने जितनी स्टेरॉइड्स थी वो पैक की हुई थी, और वो मैंने घर आके डस्टबिन में डाल दी। मुझे उसके बाद स्टेरॉइड्स नहीं लेना पड़ी। तो एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि आपका शरीर मजबूत होता है, आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, तो बीमारियों पर आप इस तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी
0: और तब मैंने एक कहानी लिखी फतेह, इसी
1: जी
0: थीम को
1: जी
0: लेकर के तब मैंने कहानी लिखी। दूसरी चीज ये हो गई है कि डाइट का आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप जल्दी छोटी उम्र से शुरू कर दें, ने महिलाएं अगर 30 बरस से भी शुरू कर दें तो भी बहुत अच्छा है, और बड़ी उम्र से शुरू करें तो भी, बोलते हैं ना कि अभी समय नहीं बीता है, जब जागे तभी सवेरा। तो प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल कीजिए।
1: जी
0: प्रोटीन यानी, और मैं ये नहीं कहती कि प्रोटीन पाउडर लीजिए, मैंने कभी प्रोटीन पाउडर नहीं लिया,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन पनीर है, स्प्राउट्स है, मूंग मोठ चना चवला तो महिलाएं अपने किचन में रोज गलाएं खाएं,

0: और छाछ लें, सत्तू लें, सत्तू तो आदिकाल से चला आ रहा है हमारे यहाँ पे, हाई प्रोटीन है उसमें, तो अपनी डाइट का अपने को ध्यान रखना चाहिए।
1: जी
0: मैं ये भी नहीं कहती कि आप कचौरी समोसे ना खाओ, सैंडविच ना खाओ, खाएं कभी कभी, लेकिन आपके पेट में क्या जा रहा है उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
1: तो ये तो डाइट की बात हो गई, और हमने एक वीडियो देखा था जिसमें आप बहुत बड़ा डंबल उठा के और झुकी हुई हैं, ऊपर नीचे कर रही हैं, और एक में देखा कि आप टायर उठा उठा के फेंक रही हैं। तो ये कितने समय बाद ये शक्ति आपके भीतर पैदा हुई?
0: मेरे ख्याल से डेडलिफ्ट तो मैंने थोड़े टाइम बाद शुरू कर दिया था, लेकिन शुरू में जब हम डेडलिफ्ट करते हैं तो 20 केजी का बार होता है, 20 किलो का बार, तो पहले खाली बार से शुरू किया, फिर उसमें 5-5 किलो के चक्के डाले, पहिए जैसे होते हैं वो डाले, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया।
1: ओ
0: तो वही कि आप एक झटके से नहीं कर सकते। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप जिम जाते हैं तो वहाँ हर जिम में, या तो आप कुछ ऐसा स्तरीय जिम ढूंढें, जिम में ट्रेनर जो होते हैं वहाँ, जो भी हैं जो आपको अटेंड करते हैं, वो पहले पूछते हैं आपकी कोई सर्जरी हुई है, आप उसको सब सच सच बताइए, है
1: जी जी
0: ना, फिर वो पूछते हैं आपकी कहीं कोई इंजरी तो नहीं है, वो आप बताइए, आपको बैक पेन तो नहीं है वो बताइए, नी पेन तो नहीं है वो बताइए। मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मुझे एक घुटने में मेरे बहुत सालों पहले पस हो गया था, और उसकी एक छोटी सी सर्जरी हुई और करीब 2.5 महीने तक वो प्लास्टर रहा। तब मैं घुटना नहीं मोड़ पाती थी, मुझे नीचे बैठना मना था क्योंकि मैं नहीं बैठ पाती थी, लेकिन फिर जब जिम शुरू किया तो स्क्वाट्स लगाए तो मैं नहीं लगा पाती थी, लेकिन ट्रेनर के देखरेख में धीरे धीरे स्क्वाट्स लगाना शुरू किया और आज मैं बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। तो कोई भी चीज को आप निरंतर अभ्यास से करेंगे और धीरे धीरे एक एक सीढ़ी को ऊपर चढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आप जिस जगह में हूं आप भी उस जगह पर आ सकते हैं।
1: बिल्कुल। और एक लेखक को तो हाथ की तकलीफ अमूमन हो जाती है,
0: होती है
1: क्योंकि वो नियमित रूप से
0: गर्दन की
1: थोड़ा,
0: होती है,
1: हाँ,
0: गर्दन की
1: गर्दन की,
0: होती
1: हाथ
0: है।
1: की।
0: तो मैं भी जब लिखती हूं, मैं अभी भी कागज कलम पे लिखना ज्यादा पसंद करती हूँ, मैं अभी कंप्यूटर युग में है पर मैं कंप्यूटर वाली अभी भी नहीं हूँ, मुझे लिखने के लिए कागज और कलम ही चाहिए, तो मैं लिखती हूँ, कई बार लंबा भी लिखना पड़ता है, लेकिन बीच में आप थोड़ा सा गर्दन को चारों तरफ घुमा लीजिए और फिर लिखना शुरू कीजिए। जब आप अभ्यास में, आप शारीरिक रूप से आप मजबूत हैं, तो फिर ये छोटी मोटी चीजें आपको परेशान नहीं करती हैं।
1: जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही। और अब चलते चलते हम हमारी तमाम सखियों को बताइए कि आपने तो अपनी जिंदगी के साथ बहुत सारे समझौते किए, समझौता कहें या अपनी चॉइस पर, अपनी शर्त पर आपने छोड़ी, कैजुअल अनाउंसर रही, फिर आकाशवाणी में अनाउंसर बनी, वो आपने छोड़ा परिवार के लिए, अपने प्रेम के तहत, और पायलट बनते बनते रह गई, रिटर्न में आप क्वालिफाई की। लेकिन सखियों से आप क्या कहेंगी कि आज के जमाने में उन्हें क्या करना चाहिए?
0: देखिए, जमाना बदला है ना, इस बदलाव को सभी लोगों ने स्वीकार किया है।
1: जी
0: एक जमाना था जब मैंने ये चीजें छोड़ी, लेकिन आज मैं मीडिया के बच्चों को हिंदी पढ़ा रही हूँ, और जमाना बदला है तो, और अब चीजें भी बदली हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आजकल लड़कियों को ये सब कुछ छोड़ के और करना पड़ता है। आजकल की जो बच्चियां हैं वो दोहरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा लेती हैं, और मुझे लगता है कि अपने सपनों को जीवित रखें, उनको जीवित रखना बहुत जरूरी है। जिंदगी के प्रति जो अपना नजरिया है वो सकारात्मक रखें, तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं।
1: बिल्कुल।
0: मैं यहाँ एक चीज और कहूंगी कि
1: हाँ।
0: हक तो है ही, देखिए जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो वहां कर्तव्य भी जुड़े होते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो कर्तव्यों के साथ अपने अधिकार को प्राप्त करें,
1: जी
0: इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता।
1: जी और इस समय बहुत बेहतर होगा कि एक गाना हम सुनवा दें अपनी सखियों को। कौन सा गाना?
0: मैं ना खूब मस्ती खोर हूं, मैं खुल के जीती हूँ, खुल के नाचती हूँ, जब मौका मिलता
1: जी
0: है
1: जी
0: मुझे नृत्य करना अच्छा लगता है। मैंने विधिवत नहीं सीखा है, पर जहां म्यूजिक होता है मेरे पैर अपने आप उठ जाते हैं।
1: थिरकने लगते
0: तो
1: हैं।
0: मुझे

0: एक कॉलेज में मुझे एक टाइटल मिला था मेरे आचरण को देखते हुए, तो हम वही गाना सुनते हैं और वो टाइटल था जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने
1: किसने
0: जाना,
1: जाना, सुनते
0: तो
1: हैं।
0: बस यही गाना सुनते हैं।

0: ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी
0: आपका। विविध भारती के स्टूडियो में आई और सखियों सहेलियों से इतनी उम्दा जानकारी वाली
1: जी
0: बातें की और इतनी इतनी प्रेरक बातें आपने साझा
1: जी
0: की।
1: जी बहुत
0: शुक्रिया
1: धन्यवाद ममता जी, आपका दिन शुभ हो और स्वस्थ हो।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
1: नमस्कार। तो आरती देखो, हमारी जो सखी ज्योति जैन है उनकी ममता सिंह से जो बातचीत हुई वो हमने सुनी, और उन्होंने भी फिटनेस के बारे में काफी कुछ बातें हमें बताई।
0: जी
1: और देखिए, हंसना, खिलखिलाना, नृत्य करना, गीत सुनना, ये भी फिटनेस के
0: बिल्कुल, ये
1: कुछ
0: भी
1: राज
0: फिटनेस में ही आता है।
1: तो ये उन्होंने हमें
0: जी
1: बताया। चलिए अब हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं कि अक्सर महिलाएं क्या करती हैं, पूरे परिवार का ध्यान रखती है, लेकिन जब बात अपनी सेहत की आती है तो उसे वो सबसे आखिर में रख देती हैं। जबकि सच ये होता है कि यदि महिला स्वस्थ और फिट होगी तभी परिवार की भी खुशहाल और स्वस्थ रहेगा,
0: बिल्कुल।
1: ना?
0: और फिटनेस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम पतले दिखें। पतले दिखना ही फिटनेस नहीं होता है। फिटनेस का अर्थ होता है शरीर का स्वस्थ होना, मन का प्रसन्न होना और ऊर्जा से भरपूर जीवन जीना। और महिलाओं के लिए रोजाना 30 से लेकर 45 मिनट की जो शारीरिक गतिविधि होती है वो बहुत लाभदायक होती है
1: हाँ,
0: उसमें।
1: और बहुत सारी महिलाएं ये सोचती कि हम घर का काम करते हैं ना तो उससे तो हमारे शरीर की हलचल हो जाती है, तो अब हमें और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है। लेकिन जो एक्सरसाइज जो हम करते हैं उसके जो पोस्चर होते हैं
0: बिल्कुल।
1: वो हमारी सेहत के लिए, हमारे शरीर की बनावट के लिए वो काफी उपयोगी होते हैं। तो काम अपनी जगह बहुत अच्छी बात है कि
0: जी
1: करना चाहिए, लेकिन कम से कम 30 मिनट के लिए हम थोड़ा सा व्यायाम करें, थोड़े आसन करें, तो
0: बिल्कुल,
1: वो भी हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं।
0: क्योंकि इतने काम के बीच में अगर हम अपने लिए 30 मिनट ना निकालें ये तो अपने खुद के साथ नाइंसाफी हो
1: हाँ,
0: जाएगी।
1: लेकिन कई महिलाएं नहीं निकाल पाती,
0: जी
1: घर की व्यस्तता बहुत ज्यादा होती
0: जी
1: है, बड़ा परिवार होता है, दिन भर काम करते हैं, और उसके बाद में अगर वो अपने लिए समय निकालती है तो कई बार घर के लोग कहने भी लग जाते हैं कि अरे इतना काम पड़ा है कि तुम ये क्या करने लगी हो। तो कई महिलाओं के साथ इस तरह की परिस्थितियां भी होती हैं। खैर, लेकिन तेज कदमों से चलना, योग, प्राणायाम, साइकिल चलाना, नृत्य या हल्की एक्सरसाइज, इनमें से कोई भी गतिविधि नियमित रूप से अगर अपनाई जाए तो काफी अच्छा होता है, और संतुलित आहार भी फिटनेस की मजबूत नींव होता है।
0: बिल्कुल। और आप खाने में हरी सब्जियां ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, दालें हैं, दूध है, मोटे अनाज हैं, पर्याप्त पानी और प्रोटीन की जो भी चीजें हैं, जैसे कि बहुत से लोग जो नहीं खाते उस तरीके के तो वो अंडे नहीं खाते हैं, तो वो पनीर खाएं, ज्यादा से ज्यादा पनीर ले सकते हैं, दूध की बनी

0: चीज़ें ले सकते हैं, और ये जो जंक फूड होते हैं, वो जो बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें होती हैं, उनको अपना लें तो ज़्यादा बेहतर है।
1: हाँ, डिब्बा बंद जो भोजन आजकल बहुत प्रचलन में है,
0: जी
1: तो उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी ले लें और उसके बाद ही उनका उपयोग करें। और हमारा तो सुझाव यही है कि उसकी बजाय आप घर में कोई भी चीज़
0: बिल्कुल,
1: बना
0: क्योंकि
1: कर
0: हम
1: खाएं तो।
0: छोटी सी भी चीज़ जो जंक फूड वाला लेते हैं ना, उसके ऊपर आप देखिए कितनी कैलोरी लिखी होती है ना, तो
1: बिल्कुल।
0: उसमें हमें जितना चाहिए उसे कहीं कई गुना ज़्यादा हम थोड़े से खाने में ही ले लेते हैं, तो उसको आप ना लें तो ज़्यादा अच्छा है।
1: इसके अलावा मानसिक फिटनेस भी उतनी ही आवश्यक होती है। तनाव कम करने के लिए ध्यान, योग, अच्छी नींद लेना, संगीत सुनना, किताबें पढ़ना और परिवार के साथ समय बिताना, ये बहुत मददगार साबित होते हैं इसमें।
0: बिल्कुल, और जीवन के अलग अलग चरण है, जैसे किशोरावस्था हो, या जो गर्भावस्था है, प्रसव के बाद का समय है, या रोजनवृत्ति का समय है, ये महिलाओं की शारीरिक इसमें जरूरतें जो होती हैं वो बदलती रहती हैं, इसलिए समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच कराना और विशेषज्ञ की सलाह लेना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, ये जो रजोनिवृत्ति की तुमने बात की, तो उस समय भी महिलाओं को बहुत समस्याओं का
0: बिल्कुल
1: सामना करना पड़ता है उनको। जैसे हॉट फ्लशेस आना और बार बार मुंह सूखना, प्यास लगना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होती हैं उन्हें। तो घर के लोगों का भी तो ये कर्तव्य बनता है कि वो भी अगर ऐसी समस्या उनके साथ है तो थोड़ा उनका साथ दें और उनका ख्याल रखें। तो इस तरह से अब इन बातों का ख्याल रख के फिटनेस का ध्यान रखा जा सकता है। इसके
0: बिल्कुल
1: अलावा फिटनेस कोई विकल्प नहीं बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर महिला स्वस्थ है तो ही वो अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएगी और सशक्त समाज की वो पहचान भी होती है।
0: बिल्कुल
1: इसके लिए महिलाओं की फिटनेस पर बहुत अधिक ध्यान देना
0: बिल्कुल, अगर आप
1: जरूरी
0: जिम
1: है।
0: नहीं जा पा रही हैं या डंबल्स नहीं है आपके पास, तो आप एक एक लीटर की जो बॉटल्स होती हैं है ना, उसके जरिए भी आप कर सकती हैं, डंबल्स का काम उससे ले सकती हैं, तो आप
1: बिल्कुल।
0: घर में ही कुछ एक्सरसाइज हैं वो करेंगी ना, तो आपको फायदा दिखने लगेगा।
1: फिलहाल हम एक गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है और वो जो गीत हमने सुना शगुन फिल्म का, उसके पहले हम फिटनेस की बातें कर रहे थे। हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस बारे में अपने जो दिल के जो बातें थी या जो वो बताना चाहते थे हमें लिख भेजी है, तो हम एक एक करके हम अपनी सखियों को बताते हैं। एक साथी हमारी लिख रही है कि फिटनेस उम्र की मोहताज नहीं होती, चाहे किशोरी हो, गृहिणी, कामकाजी महिला या वरिष्ठ महिला, सभी के लिए सक्रिय और स्वस्थ रहना समान रूप से महत्वपूर्ण है। सैर, नियमित व्यायाम, योग, प्राणायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद महिलाओं को ऊर्जावान बनाए रखते हैं। इससे तनाव कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और अनेक बीमारियों से भी बचाव होता है।
1: बिल्कुल। एक और हमारी सखी हैं जो लिखते हैं कि 50 के बाद प्रोटीन के रूप में सोयाबीन, टोफू मिल्क और स्प्राउट, खासकर मूंग और मूंगफली, काले चने हर महिला के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं।
0: और एक हमारी जो साथी हैं वो ये भी लिख रही हैं कि व्यायाम से एंडोर्फिन यानी कि जो हैप्पी हॉर्मोन से वो निकलते हैं जो तनाव, चिंता और मूड स्विंग्स को कम करते हैं। हड्डियों की मजबूती उम्र के बढ़ने के साथ महिलाओं में हड्डियों के कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हड्डियां मजबूत होती है। ऊर्जा और आत्मविश्वास फिट रहने से शरीर का स्टेमिना बढ़ता है, जिससे महिलाएं अपने दैनिक कार्य अधिक ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ कर पाती हैं।
1: जी। और एक और श्रोताएं जो लिखती हैं कि मैं सुबह सैर को जाती हूँ, थोड़ा बहुत योग व्यायाम करती हूँ, बाहर का खाना उसका जो होता है उसको खाने से परहेज करती हूँ कभी कभार को छोड़कर, और मौसमी फल सब्जी खाती हूँ। संगीत बहुत तरोताजा रखता है इसलिए विविध भारती के प्रोग्राम सुनना नहीं छोड़ती हूँ। मनोरंजन के लिए सखी सहेलियों के साथ गेट टुगेदर भी करती हूँ।
0: क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है।
1: जी
0: और एक साथी हमारी ये भी लिख रहे हैं कि योग और प्राणायाम मानसिक शांति और लचीलेपन के लिए, योग सबसे उत्तम है। पिलेट्स, कोर स्ट्रेंथ और बॉडी पोस्चर सुधारने के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है। ब्रिस्क वॉकिंग या जॉगिंग हृदय स्वास्थ्य के लिए सप्ताह में कम से कम 150 मिनट यानी कि रोजाना 30 मिनट तेज चलना फायदेमंद होता है। और
1: बिल्कुल
0: इस तरह की फिटनेस से संबंधित बहुत सारी बातें हमारी सखियों ने हमें लिख करके भेजी, तो हम उन सभी को धन्यवाद कहते हैं। और अब हम बात करते हैं मणिपुरी साड़ी के बारे में।
1: जी।
0: तो मणिपुरी जो साड़ी है ये साड़ी आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से यानी कि राजा रानियों के समय से काफी लोकप्रिय है। पुराने समय में इस साड़ी को रानियां भी पहना करती थी। मणिपुर की साड़ी को कारीगर मशीन का इस्तेमाल करके नहीं बल्कि हाथ की बुनाई से बनाते हैं।
1: जी, यही इसकी खासियत भी है। इसे बनाने में कुल 15 से 20 दिनों का समय लगता था और मणिपुर की साड़ियों को आज भी महिलाएं खास मौकों पर पहनती हैं। इन साड़ियों को पहनकर वो अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। मणिपुरी साड़ी का इतिहास बहुत पुराना है। ये राजघरानाओं की जो राजघराने होते थे उनकी परंपरा और महिलाओं के सामाजिक सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है।
0: हाँ बिल्कुल, वैसे भी जब कोई भी महिला जब साड़ी पहनती है तो एक एलिगेंट लुक
1: बिल्कुल
0: मतलब यूं कह सकते हैं कि बहुत उस सुंदरता उसमें नजर आती है। और जब हमारे देश में विभिन्न तरह की साड़ियां बनती है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह की साड़ियां बनती है, और जब कोई त्योहार आता है तो उस प्रांत की वो खास जो साड़ी है वो पहनी जाती है, तो सब महिलाएं एक तरह की साड़ी पहनती है, उस खूबसूरती का तो कहना ही क्या,
1: बिल्कुल
0: है ना। और मणिपुरी साड़ी और कपड़ों में दिखने वाले प्रसिद्ध टेम्पल डिजाइन और मोइरांग फी कहा जाता है, जो डिजाइन होते हैं उनका
1: जी
0: नाम है ये। और इस डिजाइन का आविष्कार मोइरांग साम्राज्य की जो राजकुमारी थी थोड़बी, उन्होंने किया था। और मणिपुरी साड़ियों को प्रिंट या डाई करने के लिए पहले के समय में पेड़ों की छालों, पत्तियों और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता था।
1: बिल्कुल। पहले तो इसी प्राकृतिक तरीके से ही बनाते थे, कुछ भी अलग से रंग नहीं यूज इस्तेमाल करते थे। इन सभी चीजों से कपड़ों पर कलर किया जाता था। यही कारण है कि ये साड़ियां सालों साल अपनी चमक नहीं खोती हैं। मणिपुरी साड़ी जो होती है वो सिर्फ रानियों तक सीमित नहीं थी बल्कि आज भी ये अपने हल्के और आरामदायक फैब्रिक टेम्पल

0: बॉर्डर और खूबसूरती के लिए महिलाओं के बीच काफी चलन में है।
1: बिल्कुल। और ये साड़ियां मलबरी सिल्क, एरी सिल्क और कॉटन सिल्क ब्लेंड से तैयार की जाती है। ये सिल्क हल्का और सॉफ्ट होने के कारण बेहद आरामदायक होता है। इन साड़ियों पर बनी टेम्पल बॉर्डर साड़ी के लुक को और खास बना देती है। मणिपुरी संस्कृति में रंगों का विशेष महत्व है और प्रत्येक रंग का अपना प्रतीक और अर्थ होता है।
0: जी, जैसे कि लाल रंग प्रेम और जुनून का प्रतीक होता है, जबकि हरा रंग उर्वरता और समृद्धि को दर्शाता है। पीला रंग खुशी और शुभता से जुड़ता है, जबकि सफेद रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक है। ये साड़ियाँ हथकरघे पर बुनी जाती हैं, मुख्य रूप से इनमें सूती और रेशमी धागों का प्रयोग होता है।
1: हाँ, और ये जो रंग बिरंगी साड़ियां होती है ना, वाकई में ये अलग अलग जो रंग होते हैं, चटकदार जो रंग होते हैं, वो
0: जी,
1: देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं। और कई महिलाएं तो हर तरह के रंगों
0: जब वो
1: का
0: त्योहार
1: संग्रह
0: जब वो पहन के आती है ना, तो पता चलता है चाहे त्योहार है
1: बिल्कुल। और कुछ साड़ियां तो ऐसी होती है जिसमें मिले जुले रंग होते हैं, बहुत
0: जी
1: सारे रंगों की एक ही साड़ी बनी होती है,
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: वो भी बड़े एक इंद्रधनुष के रंगों की तरह बड़ी खूबसूरत लगती है। आजकल कुछ आधुनिक डिजाइनों में मिश्रित धागों का भी प्रयोग किया जाता है। महीन बुनाई और सादगी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और इसके मुख्य प्रकार हैं फानेक, मयेक, नाइबी, क्षैतिज, धारियां वाला सबसे लोकप्रिय पारंपरिक फानेक है। कनाप फानेक विशेष अवसरों पर पहना जाने वाला सिला हुआ ये एक रूप है। ये अलग अलग तरह के नाम हैं जो अलग
0: बिल्कुल
1: अलग डिजाइन को दिए गए हैं।
0: जी। और फिर है मोयरोंग फी। मोयरोंग फी जो होता है वो प्रसिद्ध पारंपरिक वस्त्र, जिसकी सीमा जो यानी बॉर्डर जो होता है उस पर विशेष आकृतियां बुनी जाती हैं, और इसे जीआई मान्यता भी प्राप्त है इस वाले इसको। और वांगखेई फी, ये बेहद महीन और पारदर्शी मलमल यानी कि मसलिन जैसी जो होती है साड़ी वो होती है, और शुरुआत में इसे शाही परिवार के लिए वांगखेई क्षेत्र में बुना जाता था।
1: हाँ,
0: और
1: और
0: जी
1: सामी लामी फी ये बुनाई और कढ़ाई का एक अद्भुत संयोजन है जिसमें जानवरों पारंपरिक प्रतीकों को उकेरा जाता है।
0: जी और कभी से मणिपुर में प्रतिष्ठा और योद्धाओं का प्रतीक माना जाता था। पारंपरिक रूप से इन साड़ियों को सूती, कॉटन और रेशम जो होती है, एरी और मलबरी धागों से हाथों द्वारा बुना जाता है। इन्हें रंगने के लिए प्राकृतिक जड़ी बूटियों और पेड़ों की छालों का उपयोग किया जाता था।
1: हाँ, तो इस बार अगर जब भी आप मणिपुर जाएं तो, या फिर आपके कोई दोस्त कोई रिश्तेदार अगर जाते हो, तो वहां से एक साड़ी जरूर मंगवाइएगा,
0: बिल्कुल
1: उनसे कहिएगा कि हमारे लिए एक मणिपुरी साड़ी लेकर आई है। चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं
0: हाँ
1: और उसके
0: बिल्कुल
1: बाद आगे बढ़ेंगे।

0: हमारा ये जो सेगमेंट है ना कि शब्द हमारा और विचार आपके, तो इसमें आज का जो शब्द है वो फिजूल खर्ची है, तो इस बारे में हमारे साथियों के, हमारे सखियों के क्या विचार हैं वो जान लेते हैं। हमारे एक साथी ये लिखते हैं कि फिजूल खर्ची मतलब समय या संसाधनों का बिना ठोस आवश्यकता खर्च में लापरवाही बरतना। ये एक ऐसी आदत है कि व्यक्ति अपनी आय के मुकाबले ज्यादा खर्च करके सिर्फ दिखावे के लिए पैसे लुटाता रहता है, अंत में कर्ज में डूब जाता है और तब उनकी आंखें खुलती है तब बड़ी देर हो चुकी होती है। खर्च करने के बारे में एक गुजराती मुहावरा है कि पछेड़ी प्रमाणे सोड़ ताड़वी। इसका मतलब ये होता है कि चादर के हिसाब से पैर फैलाना। खर्च
1: बिल्कुल
0: के साथ बचत की आदत भी डालें, वो आपके बुढ़ापे में एक लाठी जैसा सहारा बन सकती है।
1: जी। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि फिजूल खर्ची, भाई इस रोग से प्रायः सभी ग्रसित होते हैं, और ऐसा इसलिए है कि अपने वास्तविक आवश्यकताओं की जानकारी ही नहीं है, और एक पर एक फ्री का लोभ भी समाया हुआ है, फिर मानव की प्रवृत्ति भी संग्रह करने की है। इस दृष्टिकोण से फिजूल खर्ची होना स्वाभाविक ही है। अक्सर ऐसा होता है ना मंजू जी, जब हम कुछ लेने जाते हैं, जो हम लेने जाते हैं अगर उसके साथ में कुछ और एक्स्ट्रा मिल रहा होता है, कम दाम का मिल रहा होता है, या एक पर एक फ्री होता है, तो हम उसको जरूर उठा लेते हैं, चाहे हमें उसकी जरूरत हो चाहे ना हो।
0: हाँ बिल्कुल, ये समझ करके कि ये तो फ्री मिल रहा है हमें, लेकिन
1: हाँ
0: ऐसा होता नहीं है। उसका कुछ तो हमें भुगतान करना ही होता है जो कि हमें पता नहीं चलता है।
1: जी
0: हमारी एक साथी ये लिख रही है कि ऑनलाइन शॉपिंग और आकर्षक विज्ञापनों के प्रभाव में आकर अनावश्यक वस्तुओं को खरीदना, बजट न बनाने और बचत के महत्व को न समझने की आदत, गलत वित्तीय आदतें जैसे फिजूल खर्ची, बिना बजट के खर्च करना और बचत न करना जो कंगाली की शुरुआत कर सकती है। आय
1: जी
0: से अधिक खर्च करने पर व्यक्ति कर्ज के दुष्चक्र में फंस जाता है। मानसिक तनाव, वित्तीय असुरक्षा के कारण परिवार में कलह और मानसिक अशांति बढ़ती है।
1: जी और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि फिजूल खर्ची एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। आज की दिखावे की दुनिया में लोग अक्सर आवश्यकता से अधिक खर्च कर बैठते हैं। हमें अपनी आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिए और अनावश्यक वस्तुओं की खरीद से बचना चाहिए। सादगीपूर्ण जीवन और मित्रता हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं, इसलिए फिजूल खर्ची छोड़कर बचत और समझदारी की आदत अपनाना ही जीवन की सच्ची समृद्धि है।
0: और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि फिजूल खर्ची को रोकने का अर्थ कंजूसी करना नहीं बल्कि मितव्ययता, यानी कि सोच समझकर खर्च करना है, इस आदत को अपनाना है। इसके लिए व्यक्ति को किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि ये उसकी आवश्यकता है या केवल एक इच्छा। बजट बनाकर जीने और अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखने से ही आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है।
1: बिल्कुल
0: और एक साथी ने ये भी लिखा है कि फिजूल खर्ची एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। तो इन सब आदतों से, इन बातों से हमें बचना है और फिलहाल एक गीत
1: गीत
0: सुनना
1: सुनना
0: है।
1: है।

0: गीत एक चटपटा सा गाना हमने सुना, और अब ज्वार की कुछ चटपटी रेसिपीज हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि हमारे प्रांत में ज्वार नहीं होता है, महाराष्ट्र जाने पर वहाँ ये रोटी खाई जाती है, बहुत अच्छा लगता है, और वहीं के लोगों से बनाना भी हमने सीखी है। और अब तो वैसे पैकेट में सारी चीज़ें मिल रही है, आटा भी मिल जाता है। ज्वार की रोटी मुझे बहुत अच्छी लगती है और अब मैं थोड़े ढंग से उसे बना भी लेती हूँ,
1: अरे वाह,
0: क्योंकि उसे बनाने में थोड़ी सी मुश्किल आती है ना, वो टूट जाती है
1: टूटती
0: किनारों
1: है
0: से,
1: जी।
0: इसलिए तो उसको बनाना भी एक टेक्निक होती है, और हर किसी के हाथों में ये हुनर नहीं होता है, तो हमें भी सीखना चाहिए। लिखती है ये कि मैं रात के खाने में ज्यादा ज्वार की रोटी खाती हूँ, किसी भी तरह की तीखी चटनी और सब्जी के साथ खाई जाती है, पर मुझे ये ठेचा और गुड़ के साथ बहुत अच्छी लगती है। ठेचा एक तरह का महाराष्ट्र में बनाया जाने वाला एक तरह की चटनी होती है, मसाला भी कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारी लहसुन होती है, थोड़ा अदरक हरी मिर्ची होती है, और फिर उन सबको थोड़ा भून लिया जाता है, थोड़ा मूंगफली के दाने डाल करके, और फिर उसे पीस लिया जाता है नमक डाल करके,
1: अरे
0: और थोड़ा
1: वाह,
0: दरदरा सा इसे रखा जाता है, उसे ठेचा कहते हैं
1: बिल्कुल
0: महाराष्ट्र
1: एकदम मुंह में पानी आ जाए ऐसा रेसिपी बता दी
0: में।
1: आपने
0: बिल्कुल पारंपरिक जो
1: जी।
0: रेसिपी होती है, व्यंजन जो होते हैं ना, उन्हें बड़ी मेहनत से बनाया जाता है, हाथ से कूटना पीसना, और इस तरह के कुछ अच्छी तरह से उन्हें सेकना, चूल्हे के ऊपर पहले तो सेका जाता था, तो ये जो प्रोसेस होते थे इसमें उन चीजों का एक स्वाद जो है
1: बिल्कुल
0: वो निखर
1: बढ़
0: कर
1: जाता
0: आता
1: था,
0: था।
1: खाली मिक्सी में आप पीस दें तो वो स्वाद नहीं आता जो हाथ से पीस के आता है।
0: बिल्कुल, अब और भी
1: हाँ
0: व्यंजन
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल, एक हमारे जो श्रोता है उन्होंने लिखकर भेजा है, ज्वार आटे की राब।
0: अच्छा,
1: तो इसके लिए हमें चाहिए 4 चम्मच ज्वार का आटा, 4 चम्मच घी, आधा चम्मच अजवाइन, 3 चम्मच काजू बादाम की कतरन, 4 चम्मच गुड़, आधा चम्मच ड्राई जो अदरक का पाउडर होता है वो, और 2 कप गर्म पानी सजावट के लिए ड्राई फ्रूट्स की कतरन। अब सबसे पहले एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें अजवाइन डालकर 1 मिनट के लिए इसको भून लीजिए अच्छे से, और बाद में ज्वार का आटा डालकर धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लीजिए। बाद में अदरक का पाउडर, गुड़ और पानी डालकर अच्छे से मिक्स करके धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लीजिए। बाद में काजू बादाम की कतरने डालकर वापस से 2 मिनट के लिए पका लीजिए। तो अभी हमारी जो टेस्टी गर्मा गर्म जो ज्वार आटे की राब है वो बनकर तैयार है, इसको ड्राई फ्रूट से जा
0: बिल्कुल।
1: सकते हैं।
0: और एक साथी ने लिखा है कि ज्वार एक अत्यधिक पौष्टिक और ग्लूटेन मुक्त अनाज है, जो फाइबर, प्रोटीन और खनिजों से भरपूर होता है। इसके सेवन से वजन नियंत्रण और पाचन क्रिया

0: बेहतर बन रहती है। ज्वार के आटे और साबुत ज्वार से कई स्वादिष्ट व्यंजन बन सकते हैं। अब पहले ज्वार की रोटी या भाकरी के बारे में इन्होंने लिखा है कि ज्वार के आटे में गर्म पानी और थोड़ा सा नमक मिलाकर नरम आटा गूंथ ले और हाथ या बेलन की मदद से गोल बेलकर धीमी आंच पर इसे सेके, तो इस तरह से तो ये रोटी बन जाएगी। हालांकि इन्होंने जितनी आसानी से लिखा है उतनी आसानी से वो बनती नहीं है।
1: बनती नहीं।
0: ज्वार का चीला किस तरह, पुड़ला जिसको बोलते हैं, वो किस तरह से बनाए कि ज्वार के आटे में दही, पानी, कटी हुई सब्जियां जैसे कि प्याज, टमाटर, गाजर और इसके अलावा नमक और हरी मिर्च मिलाकर एक घोल बना ले इसका, वो
1: अच्छा।
0: तैयार कर ले और तवे पर तेल लगाकर वो घोल जो है वो फैलाते हैं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेके। अचार या दही के साथ इसको खा सकते हैं, चाय या कॉफी के साथ भी खाया जा सकता है। हाँ, ये थोड़ा आसानी से बनाया
1: बन
0: जा
1: सकता
0: सकता
1: है।
0: है। इसी के साथ इन्होंने ज्वार का उपमा किस तरह से बनाए वो भी लिखा है कि रात भर भीगी हुई साबुत ज्वार को कुकर में उबाल ले, पैन में राई, करी पत्ता, प्याज और अपनी मनपसंद सब्जियां भुने और इसमें उबली हुई ज्वार और मसाले डालकर अच्छी तरह मिलाएं और पकाएं। इस तरह से ज्वार का उपमा तैयार होता है।
1: वाह, बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। और साथ ही हम बात कर रहे थे ज्वार की, जो खस्ता कचौड़ी होती है उसके लिए 1 कप गेहूं का आटा चाहिए, बेसन अभी उसमें आप ले सकते हैं,
0: हाँ
1: लेकिन ये तो इन्होंने गेहूं का बताया हुआ है, हमें तो चाहिए ज्वार का।
0: हाँ
1: तो हम बात करते हैं ज्वार भाकरी की। तो 2 कप ज्वार का आटा, 2 टेबल स्पून इसमें चावल का आटा चाहिए, 2 टेबल स्पून तेल और 1 टीस्पून अजवाइन, आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा कप बारीक कटा हुआ धनिया और 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा लहसुन, स्वाद के अनुसार नमक और भाकरी सेकने के लिए घी। सभी सामग्री को अच्छी तरह से आप मिला लीजिए और पानी की सहायता से उसका सख्त आटा आप गूंद सकते हैं। तो मतलब पतला नहीं रखना है, पतला तो वो अलग हो जाएगा, फिर वो वैसा नहीं बनेगा। तो आटे को बराबर नींबू के आकार की छोटी छोटी सी लोइयों में आप बांट लीजिए, लोई को बेल कर भाकरी बना लीजिए, तवे को गर्म करके और धीमी आंच पर भाकरी को दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा सेक लीजिए, फिर घी डालकर लकड़ी के प्रेस से मतलब उस तरह से दबाते हुए अच्छी तरीके से उसको दोनों तरफ से धीमी आंच पर तब तक सेकिए जब तक वो कुरकुरी ना हो जाए, फिर अपनी पसंद की सब्जी या चटनी के साथ आप खा सकते हैं।
0: बिल्कुल। एक साथी हमारी लिख रही है कि ज्वार एक अत्यधिक पौष्टिक और ग्लूटेन मुक्त अनाज है जो फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है और इसके सेवन से ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल में रहता है। और ये लिखती है आगे कि मध्य प्रदेश और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां ज्वार की पारंपरिक रोटी, स्वादिष्ट ज्वार की राब, ज्वार का ढोकला या मुठिया और कुरकुरी ज्वार की पूरी आसानी से बना सकते हैं। और ज्वार के कुछ व्यंजनों के बारे में लिखा है इन्होंने, रोटी के बारे में लिखा है जो कि हम बता चुके हैं इसलिए, और चिले के बारे में भी लिखा है और उसके बारे में भी हम बता चुके हैं, तो ये तो हम नहीं बता रहे। इसके आगे इन्होंने ज्वार के स्टफ्ड बाटी के बारे में लिखा है तो वो हम बता देते हैं। इन्होंने लिखा है कि ज्वार के आटे में अजवाइन, तिल और कसूरी मेथी मिलाकर आटा गूंथ ले, इसके अंदर आलू और मटर का मसालेदार मिश्रण भरे और बाटी की तरह इसको सेक ले या कम तेल में कचौड़ी की तरह तल ले और ये स्वाद और सेहत का एक बेहतरीन संगम है। इसके बाद इन्होंने ज्वार का उपमा बनाने के बारे में लिखा है कि साबुत ज्वार को कुछ घंटे पानी में भिगोकर उबाल ले और अब राई, करी पत्ता और अपनी मनपसंद की सब्जियों से तड़का लगा, ये भी हम आपको बता चुके हैं। और राब के बारे में इन्होंने लिखा है जो भी, जिसकी रेसिपी भी हम बता चुके हैं।
1: बिल्कुल। एक छोटा सा ज्वार, ये ज्वार का डोसा है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप ज्वार का आटा, 3 बारीक कटा हुआ प्याज, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 मुट्ठी कटा हुआ ताजा धनिया, 3 कप पानी और स्वाद के अनुसार नमक, 2 चम्मच डोसा सेकने के लिए तेल चाहिए। अब 1 बाउल में ज्वार, जो ज्वार होता है उसका आटा लीजिए, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, धनिया, नमक और पानी डाल लीजिए, सभी चीजों को बहुत अच्छे से मिलाकर उसका पतला घोल तैयार करें, तवा गर्म करें और हल्का सा तेल लगा लीजिए उसको, फिर तवे पर घोल को डालकर गोल गोल घुमाते हुए फैलाएं जैसे कि आप डोसा बनाते हैं और धीमी आंच पर डोसे को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लीजिए, फिर इसमें आप कुछ भर भी सकते हैं आलू का मसाला या आप ऐसे भी खा सकते हैं।
0: बिल्कुल। जो लोग रसोई घर में काम करते हैं उन्हें पता होता है कि किस चीज से किस तरह की चीजें, और वो विभिन्न तरह के वो प्रयोग भी करते रहते हैं कि अरे इससे हो सकता है कि ये चीज अच्छी बन जाए, वो चीज अच्छी बन जाए, और इस तरह से बना के वो कुछ अलग अलग प्रयोग करके भी बना सकते हैं। हमारे एक साथी ने ज्वार के आटे का कप केक बनाने की रेसिपी भी हमें लिख के भेजी है, लेकिन अभी तो हम समय नहीं कि उसे पढ़ पाएंगे, तो अगर हमारे कोई साथी बनाना चाहते हैं तो इस फेसबुक पेज से आप पढ़ सकते हैं और बना सकते
1: बना
0: हैं।
1: के देखिए
0: एक गीत हम यहाँ सुन लेते हैं।

0: आरती देखो, जब हमारी पसंद की कोई रेसिपी बनती है ना, जो हमें बड़ी पसंद हो, स्वादिष्ट हो, तो हम भी तो अपने मन में कुछ सपने सजा करके बैठ जाते हैं कि आज
1: कि हम इसको किसके साथ खाएंगे।
0: बिल्कुल इस तरह के सपने
1: हाँ
0: सजाए जाते हैं। खैर, हम अपनी सभी सखियों सखाओं के लिए यही दुआ मांगते हैं हमेशा कि आप बहुत अच्छे सपने सजाएं और आपके सपने पूरे भी हों।
1: बिल्कुल,
0: इसी के
1: स्वस्थ
0: साथ,
1: रहें।
0: हाँ, स्वस्थ रहें। इसी के साथ कार्यक्रम अब समाप्त करने की बारी है, तो आज्ञा दीजिए आप सभी को मंजू द्विवेदी।
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज हम एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि मुकेश हम सबके दिलों की धड़कन हैं। हम खुश हों या उदास हों, जिंदगी का कोई भी पहलू चल रहा हो, मुकेश के गाने हमारी जिंदगी में एक साथ चलते हैं और न जाने कितनी पीढ़ियों ने मुकेश की आवाज के साथ अपनी जिंदगी का सफर तय किया है। आज हम मुकेश की याद को नमन करते हुए एक खास प्रोग्राम लेकर आए हैं और इस खास प्रोग्राम में दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं, तो उनका तारुफ कराने से पहले उनकी आवाज सुनिए।
1: हो तो

0: बहती है,
1: जिस देश में गंगा बहती है,
0: जिस
1: जिस देश
0: देश
1: में
0: में
1: गंगा
0: गंगा
1: बहती
0: बहती
1: है।
0: है।
1: क्या बात है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है और जिस देश में मुकेश की आवाज गूंजती है। तो स्वागत करते हैं जाने माने गायक मुख्तार शाह का।
2: नमस्कार यूनुस भाई, और सभी सुनने वालों को भी आदाब।
1: और मुख्तार भाई के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गोविंद मिश्र, जो मुकेश की आवाज हैं और बहुत प्यारे इंसान। बहुत स्वागत।
0: नमस्कार
1: थैंक यू
0: यूनुस भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।
1: मुख्तार और गोविंद जी, आप दोनों सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी जिंदगी में मुकेश कहाँ से शुरू होते हैं?
2: जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं जब म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ता था यूनुस भाई, तब वो हमेशा ऐसे गाने का शौक तो कुदरती तौर से था, तो गाना ऐसे ही गाया करते थे। टीचर कभी बोलते थे तो ऐसे कुछ भी रैंडम गाते थे, लेकिन वो मैं मुकेश जी के गाने समहाउ मुझे बहुत पसंद थे और वही मैं गाया करता था। और जब मैं हाई स्कूल में आया तब वो कभी कभी फिल्म के गाने बहुत मशहूर हुआ करते थे उन दिनों, मैं पल दो पल का शायर हूँ,
1: वाह वाह,
2: तो वो गाना मैं अक्सर गाया करता था जब भी ऐसा टाइम पास के तौर पे स्कूल के अंदर कोई वो पीरियड अगर फ्री है या कोई फंक्शन में गेस्ट नहीं आए हैं तो उनको टाइम पास करने के लिए किसी को बुलाना है तो मुझे बुलाकर वो गाना गाने बोलते थे, तो मैं यही गाता था। तो मेरे जो दोस्त थे तो मुझे मुकेश मुख्तार की जगह मुकेश मुकेश बुलाने लगे,
1: वाह
2: तो
1: वाह
2: इस
1: वाह
2: तरह से
1: वाह।
2: मेरा जहन भी मुकेश जी की आवाज़ की तरफ ज़्यादा,
1: ये किस शहर की बात है?
2: अहमदाबाद की, जहाँ मैं रहता हूँ, मेरी
1: जी
2: तो
1: बिल्कुल।
2: पैदाइश वहीं की है।
1: तो अहमदाबाद में स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हुए आपका
2: जी
1: जो झुकाव है वो मुकेश के गानों की तरफ हुआ।
2: जी
1: अब गोविंद की तरफ बढ़ते हैं। गोविंद, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ?
0: जी मैं तो हमेशा दूसरे सिंगर्स के ही गाने गाता था, लेकिन क्या है कि कुछ जो जानकार लोग थे संगीत के, और जहाँ पे मैं सीखता था बेसिकली इलाहाबाद, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, अब वो प्रयागराज हो गया है, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप मुकेश को ट्राई कीजिए, आपकी वॉइस जो है थोड़ा सा ऐसा सिमिलर आता है। तो मैंने धीरे धीरे धीरे धीरे सुनना शुरू किया, और मुझे याद है एक बार कॉम्पिटिशन में मुझे गाने का मौका मिला, तो तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात
1: हाँ,
0: नहीं, वो गाने का मौका मिला,
1: क्या बात है।
0: और वो गाने के साथ वो फर्स्ट प्राइज जब मुझे मिला तब थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे बढ़ा, और उसके बाद धीरे धीरे मैं सीरियस होता गया
1: क्या बात है,
0: इसमें।
1: तो वही गाना सुनाइए फिर।
0: तुम अगर मुझ

0: यार को चाहोगी तो मुश्किल
1: क्या
0: होगी।
1: बात है, क्या बात है। एक और बात, गोविंद के इलाहाबाद शहर में पढ़ रहे थे और कंपटीशन वगैरह की तो बातें हुई, पढ़ क्या रहे थे या नहीं
0: जी
1: पढ़ रहे थे?
0: बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ,
1: हो, ये इंजीनियरिंग और गायकी।
0: दोनों अलग अलग हैं। अभी म्यूजिक का शौक था और 4 साल क्लासिकल ट्रेनिंग मिली मैंने प्रयागराज संघ समिति से, और फैमिली में ऐसा कोई म्यूजिक में था नहीं, बट मेरा झुकाव थोड़ा

0: उधर था तो
1: बगावत
0: ईश्वर है
1: करनी
0: चलो मैंने
1: पड़ी कि अब इंजीनियरिंग नहीं
0: चुना।
1: करेंगे।
0: कुछ सालों तक तो मुंबई में आने के बाद तो घर वालों को पता ही नहीं था कि मैं शोज करता हूँ। मैंने हमेशा झूठी बोला कि मैं जॉब करता हूँ,
1: अच्छा ये भी
0: क्योंकि
1: हुआ है।
0: हाँ गांव में जनरली से मम्मी पापा को पैसे की जरूरत पड़ती थी तो हमेशा मंथली जो भेजना भेज दिया। उसके बाद उन्होंने कभी पूछा नहीं कि तुम क्या करते हो इतनी सैलरी है, कहाँ का जॉब है। तो बस वो चलता रहा चलता रहा। धीरे धीरे जब ये फेसबुक और इंस्टा में और सारे सोशल मीडिया यूट्यूब में वीडियोज आने लगे, तब थोड़ा हाईलाइट में हुआ, तब मैंने बताया कि भाई मैं शोज करता हूँ।
1: मतलब इंजीनियर नहीं है,
0: हाँ
1: सिंगर
0: नहीं जी।
1: है। मुख्तार भाई आपने क्या पढ़ाई की है भाई?
2: मैंने कॉमर्स ग्रेजुएशन के बाद फिर LLB किया।
1: अरे
2: क्या बात है।
1: बाप रे बाप,
2: हाँ
1: ये क्या मामला
2: और
1: है।
2: मैं मतलब मैं ऑफिशियली ऐसे मेरा तो एनरोलमेंट है एज ए लॉयर। मैं जब
1: हाँ
2: पढ़ाई करता तभी मेरा दिल था बहुत यूनुस भाई के LLB करूंगा और वकील बनूंगा।
1: जी
2: तो वो मैंने पढ़ाई कंटिन्यू रखी। थोड़ा सा गाने का सफर शुरू हो गया था कॉलेज के टाइम में,
1: हाँ
2: और फिर मैं जब एडवोकेट हुआ तब मैंने 2 साल म्यूजिक छोड़ के वकालत भी की फुल टाइम।
1: ये इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है
0: सच में सच
1: कि
0: में।
1: कोर्टरूम में आप जो है वो जिरह कर रहे हैं, तो जिरह की बजाय गाना ज्यादा अच्छा लगता है।
2: लेकिन शायद ऐसा था, डेस्टिनी बोलते ना
1: जी
2: के।
1: जी
2: तो मैंने शुरुआत की क्राइम साइड, मेरा लीगल प्रैक्टिस है
1: हाँ
2: आज भी,
1: हाँ
2: मतलब मेरा एनरोलमेंट है।
1: जी
2: और तो लेकिन वो जहन से कलाकार था तो क्राइम की प्रैक्टिस के अंदर बहुत ज्यादा मन बहुत सेट हुआ नहीं, तो मैं धीरे धीरे थोड़ा उससे दूर होता गया। और कुछ हालात भी ऐसे हुए कि मुझे ऐसा चूज करना पड़ा कि या ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी या ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी।
1: हाँ
2: तो ऑफ
1: हाँ
2: कोर्स म्यूजिक मेरा पैशन था तो वही फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा।
1: क्या बात है। अच्छा तमाम शहरों में बल्कि दुनिया भर में आप मुकेश को गाते हैं। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो आपको कई बार गाने पड़ते हैं क्योंकि
2: हाँ
1: वो पॉपुलर गाने हैं,
2: जी जी
1: पर मैं यहां चाहता हूं कि अपने मन का कुछ सुनाइए जो आपको कम गाने का मौका मिले।
2: अमूमन शोज में नहीं रखे जाते ऐसे बहुत सारे गाने जो बहुत खूबसूरत गाने, जैसे अगर मैं बताऊं तो सारंगा तेरी याद
1: क्या
2: में,
1: बात है, क्या
2: ये
1: बात है, सरदार
2: मतलब
1: मलिक साहब का संगीत है
2: जी
1: ये।
2: जी तो ये गाने अमूमन से कम होते हैं, जिक्र होता है जब कयामत का तेरे जलवों की बात होती है।
1: वाह वाह
2: तो
1: वाह।
2: ऐसे कुछ गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन अमूमन कम गाने का मौका आता
1: एक
2: है।
1: गाना मुझे याद आ रहा है, पुकारो मुझे नाम लेकर
2: वाह
1: पुकारो,
2: हाँ क्या बात है, वो भी डांसिंग का ही म्यूजिक है
1: ये
2: ना।
1: डांसिंग का म्यूजिक
2: तो दो लाइनें हो
1: जरूर।

0: अब आप लोगों से एक बहुत ही जज्बाती सवाल मैं करने जा रहा हूँ कि अगर कभी आपकी मुकेश से मुलाकात होती तो क्या कहते आप?
1: ये इमेजिन करना ही एक अपने आप में थ्रिल है कि कभी मौका नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली के अपने जिंदगी के, हम तो बहुत छोटे थे जब उनका इंतकाल हो गया।
0: जी जी,
1: लेकिन यस, कभी अगर मौका मिलता तो शायद उस वक्त हम स्पीचलेस हो जाते।
0: बिल्कुल,
1: क्या कहें कि आप बहुत अच्छा गाते हो या बहुत अच्छे सिंगर हो, क्या कहें। तो मतलब वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: तो ऐसे ही मुकेश जी की आवाज और उनकी पर्सनालिटी एक हमारे लिए आइडियोलॉजी की तरह है।
0: बिल्कुल। गोविंद आप बताइए।
2: मैं तो मुख्तार भाई बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या बोलता उस टाइम पे अगर वो मिलते थे, क्योंकि जब भी हम गाते हैं उनको या सुनते हैं तो ये सीरियस बात है कि मार्क बंद करके जब भी उनको सुनते हैं तो मैं खाली एक ही चीज़ इमेजिन

0: जाता हूँ कि कैसे गाया होगा। इतने सरल स्वभाव के आदमी,
1: बिल्कुल
0: एकदम एकदम सीधा सीधा गाना, और एकदम ना कोई ये वो ऐसा कुछ भी नहीं, सब सीधा स्ट्रेट गा के एकदम दिल पे उतर जाना। हाँ,
1: एकदम
0: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता, उड़ता
1: क्या
0: नहीं
1: बात है, क्या बात है। अच्छा,
0: उनको।
1: मुकेश ने बहुत सारे भजन भी गाए हैं और कुछ तो गैर फिल्मी है, तो कुछ आप सुनाना चाहेंगे?

0: क्या प्यारा भजन, क्या बात है। और यहाँ ये जिक्र करना बहुत जरूरी है कि मुकेश जी को रामचरितमानस जो है हाँ, उससे बहुत लगाव था और उन्होंने पूरी रामचरित अपनी आवाज में रिकॉर्ड की थी। और जो फिल्म म्यूजिक के कदरदान हैं और जो मुकेश के भक्त हैं उनके लिए वो एक बहुत बड़े तोहफे की तरह है, एक बहुत जरूरी एक चीज है जो संग्रह में रखा जाना चाहिए। मुकेश जी को जब हम सुनते हैं तो कई बार ये एक चीज उभर के आती है कि वो सैड सॉन्ग्स के बादशाह हैं। आप लोग क्या मानते हैं कि क्या ये बात उनको सिर्फ सैड सॉन्ग्स तक महदूद करना या सैड सॉन्ग्स के बादशाह कहना सही है? मुख्तार भाई,
1: मैंने जैसा उनका इंटरव्यू में उनके जबान से ये सुना है कि उन्होंने कहा कि भाई अगर मुझे 10 ऐसे लाइट सॉन्ग दिए जाएं और एक अगर मुझे इमोशनल या सैड सॉन्ग दिया जाए तो मैं सैड सॉन्ग गाना ज़्यादा पसंद करूंगा। कलाकार जो होता है, मेरा अमूमन मानना है कि हमेशा वो दिल से जुड़ा होता है।
0: बिल्कुल।
1: और जो इंसान दिल से जुड़ा होता है उसको हमेशा इमोशंस और फीलिंग्स उनसे बहुत लगाव होता है। और इसीलिए सारे कलाकारों का मैंने देखा है ज़्यादातर वो लोगों को सेंटिमेंटल या इमोशनल और सैड सॉन्ग्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
0: क्या बात है, ये बहुत प्यारी बात कही है कि जज्बाती होते हैं कलाकार, इसलिए जो सैड सॉन्ग्स है उनसे लगाव होता है। मुकेश जी को खास तौर पर सैड सॉन्ग से जोड़कर देखा जाता है। गोविंद, आप ये मानते
2: हैं? यही इंटरव्यू, बिल्कुल यही इंटरव्यू मैंने भी सुना था मुकेश जी का। यही था कि 10 अगर रोमांटिक सॉन्ग मुझे दिया जाए और एक सैड नंबर दिया जाए तो मैं सैड को ही प्रेफर करूंगा।
1: लेकिन अच्छा। लेकिन उसके बावजूद मुकेश जी ने काफी सारे रोमांटिक गाने गाए हैं। और मैं तो इनफैक्ट बहुत मर्तबा जब ऐसा सुनता हूँ कि जो ऑडियंस होता है कभी बोलता है कि अरे यार मुकेश जी का प्रोग्राम है तो फिर रोने वाले गाने होंगे, तो ये बातें सुन सुनकर मैंने एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया कि जिसका टाइटल रोमांटिक मुकेश।
0: क्या
1: तो मतलब 3 घंटे सारे गाने रोमांटिक और मुकेश जी के गाए हुए, तो लोगों को ऐसा होता है कि अच्छा इनके तो इतने सारे गाने रोमांटिक भी हैं।
0: ये बहुत जरूरी बात है। तो एक रोमांटिक गाना आप लोग दोनों मिलकर
2: चार

0: था।
1: वैसे मुझे तो गाना वैसे वापस मुझे भी मनोज कुमार जी वाला ही याद आया था, तौबे मतवाली चाल, लेकिन मैं सोचा मनोज कुमार जी का ज्यादा वो हो जाएगा तो राज कपूर जी का गाना
0: क्या बात है।
1: है।

0: रोमांटिक गानों की बात हो रही है और अभी मुख्तार भाई आपने कहा कि मनोज कुमार के ऊपर और राज कपूर के ऊपर मुकेश की आवाज तो इस गाने को चुना जाए, किन हीरोज के ऊपर राज कपूर को छोड़कर, क्योंकि वो तो मुकेश राज कपूर की आवाज तो थे ही, सबसे ज्यादा अच्छी लगती है मुकेश की आवाज? ये सवाल गोविंद आपके पास भी आने वाला है।
1: अब मेरा मानना है कि अगर राज कपूर मनोज कुमार जी के बाद, मुझे पर्सनली फिरोज खान के ऊपर उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। वाह,
0: मुझे एक बड़ा प्यारा गाना याद आ गया है।
1: अच्छा,
0: लेकिन देखते हैं कि आप उसको गाते हैं कि नहीं।
1: और वैसे तो सुनील दत्त जी पर भी हैं उनके गाने, शशि कपूर जी पर काफी सारे गाने, जितेंद्र पर बहुत सारे गाने, तो लेकिन मुझे पर्सनली मेरा मानना फिरोज खान में मुझे ज्यादा उनकी आवाज अच्छी।
0: तो कौन सा गाना चुन रहे हो आप?
1: जो

0: क्या बात है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, इंदीवर का लिखा हुआ ये गाना, सफर फिल्म से, और विविध भारती पर हम यही बात कहते हैं कि जो तुमको हो पसंद वही
1: वही
0: बात
1: बात
0: करेंगे। हम अपने लिसनर्स की पसंद का बहुत खास ख्याल रखते हैं, और इसीलिए आज मुकेश जी को नमन करते हुए हमने आप दोनों को बुलाया। तो गोविंद, अब वही सवाल आपके पास आ रहा है।
1: शशि कपूर जी के ऊपर बहुत सारे फिल्म आए गए, उनके गाने,
0: वाह वाह
1: जैसे
0: वाह।
1: फिल्म कभी कभी का,
0: हाँ
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,

0: अच्छा लग रहा है कि गानों की बारिश हो रही है और हम बहुत शिद्दत से मुकेश को याद कर रहे हैं। मुख्तार भाई, पूरी दुनिया में जाकर आप शोज करते हैं, मैं विदेशों में आपके शोज की बात करने जा रहा हूं, जहां कोई यादगार घटना बताइए।
1: यानी अमूमन तो जैसे हम अब्रॉड जो शोज करने जाते हैं तो ज़्यादातर तो हमारा क्राउड जो होता है अपना एशियन, उसमें भी अपना इंडियन क्राउड और अड़ोस पड़ोस के देशों के भी लोग जो होते हैं हमारा हिंदी सिनेमा को बहुत पसंद करते हैं, वो लोग ही प्रोग्राम देखने आते हैं। और यादगार में अगर मैं कहूँ तो मुझे हॉलैंड, नेदरलैंड एक ऐसी जगह लगती है कि जहाँ पर मैंने थ्रू आउट द वर्ल्ड देखा है कि रफ़ी साहब की पॉपुलैरिटी सारे प्लेबैक सिंगर्स में सबसे ज़्यादा है, एक्सेप्टेबिलिटी भी उनकी सबसे ज़्यादा है, लेकिन नेदरलैंड और सूरीनाम, क्योंकि ज़्यादातर नेदरलैंड से लोग जो हैं सूरीनाम से माइग्रेट होकर आए हैं, ये एक जगह मैंने ऐसी देखी जहाँ रफ़ी साहब से कुछ ज़्यादा मुकेश जी को लोग पसंद करते।
0: क्या बात है,
1: ये एक ही देश, इसलिए मुझे

0: एबिलिटी भी उनकी सबसे ज्यादा है, लेकिन नेदरलैंड और सूरीनाम, क्योंकि
1: हम्म,
0: ज्यादातर नेदरलैंड से लोग जो है सूरीनाम से माइग्रेट होकर आए हैं। ये एक जगह मैंने ऐसी देखी जहां रफी साहब से कुछ ज्यादा मुकेश जी को लोग पसंद करते
1: क्या बात है,
0: हैं। ये एक ही देश,
1: क्या
0: इसलिए मुझे वो देश बहुत अच्छा लगता है।
1: वाह। गोविंद, जब आप गाते हैं तो फरमाइशें किस तरह के गानों की ज्यादा आती हैं,
2: सैड नंबर की ज्यादा आती है।
1: और उसमें भी कोई खास गाना जिसको आपको तकरीबन हर शो में गाना पड़ता है?
2: जाऊं कहां बताए दिल, इसकी
1: अच्छा,
2: बहुत रिक्वेस्ट आती है।
1: बहुत
2: हाँ
1: ही जज्बाती गाना है।
2: हाँ सारंगा तेरी याद में, सजनवा बैरी हो गए हमारे, ये सब बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं।
1: सजनवा बैरी हो गए हमारे, ये गाना सुनते हैं।
2: सजन

0: कौन होगा जिसको इस फिल्म से प्यार ना होगा।
1: हाँ,
0: है ना? तीसरी कसम फिल्म का कौन सा गाना है जो आपके दिल के करीब है?
1: वो गाने तो उस फिल्म के सारे ही अच्छे थे
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जो दूसरे दो गाने जो बहुत पॉपुलर हैं, सज्जन रे झूठ मत बोलो और दुनिया बनाने वाले, वो गाने भी इक्वली इतने अच्छे और मुझे पसंद है।
0: अच्छा, तो दुनिया बनाने वाले सुनते हैं आपसे।

0: आप लोग गाते हैं तो बिल्कुल यूं लगता है जैसे मुकेश जी हमारे सामने मौजूद हैं और गा रहे हैं। अपने गले का किस तरह से ख्याल रखते हैं आप लोग, बारी बारी से बताइए। पहले मुख्तार।
1: बिल्कुल, आप ये सवाल मुझसे करते तो मैं कहता पहले इनसे पूछिए।
2: अब पर्टिकुलरली यूनुस भाई, थोड़ा सा गले का ख्याल रखने में एक तो बात यही होती है कि थोड़ा सा अपने वॉइस के लिए जो भी मैं तो बाकायदा म्यूजिक सीखा नहीं हूं, लेकिन मुझे जो थोड़ा सा उठपटांग आता है वैसे थोड़ा सा रियाज करना सुबह में, वो थोड़ा सा करते हैं। गले के लिए खास सबसे पहला वही जरूरी होता है, और दूसरा ये होता है कि शो से 3-4 घंटा पहले तक कोशिश करते हैं और ख्याल रखते हैं कि कुछ फ्राइड कुछ नहीं खा लें या खट्टा कुछ ऐसा नहीं खा लें, और ठंडे का परहेज तो हमेशा रहता है थोड़ा।
0: गोविंद, आप
1: आइसक्रीम वगैरह तब चलता है जब 3-4 दिन का गैप हो, तो ऐसा लगता है कि भाई अभी गैप है खा लो। हाँ। थोड़ा सा कर सकते, थोड़ा फ्राइड चीज कुछ हुआ। हाँ। क्योंकि समोसा वोसा मुझे बहुत पसंद है।
0: अच्छा।
1: तो मैं देखता हूँ कि 3-4 दिन का गैप है तो मैं खा लेता हूँ, अदरवाइज नहीं खाता। और कोशिश करता हूँ कि नींद प्रॉपर लूँ जितना हो सके, 7-8 घंटे की नींद लेता हूँ। और सुबह उठना जैसा मुख्तार भाई ने बोला कि थोड़ा सरगम पे तो लगता ही हूँ, मतलब नोट्स पकड़ के एक एक नोट सा नींद आ पाए सरगम, वो एक एक एक नोट पे रहता हूँ मैं।
0: बिल्कुल, इलाहाबादी व्यक्ति को दुनिया में बाकी जगहों के समोसे पसंद आते हैं?
1: नहीं आते, लेकिन अब वो टेस्ट ऐसा करता हूँ चला इलाहाबाद में ही खा रहा हूँ।
0: अच्छा। खान पान का बाकायदा परहेज होता है
2: थोड़ा सा? हाँ, थोड़ा सा ख्याल तो रखना ही रहता है।

0: अच्छा ये बताइए कि मुकेश की बहुत सारी गजलें हैं और उनमें से कुछ गजलें आपके दिल के बहुत करीब हैं, ये मुझे पता है, तो किन गजलों का
1: इतनी
0: जिक्र?
1: खूबसूरत उन्होंने जो गैर फिल्मी ये गजल वगैरह उन्होंने गाई है।
0: जी
1: लेकिन मेरा जो पर्टिकुलर मुझे जो बहुत पसंद है वो है

0: क्या बात है, ये बहुत ही शानदार एल्बम रहा है जिसमें बहुत कमाल की गजलें हैं, हमसे भागा ना करो गजालों की तरह, मेरे महबूब नहीं ये नहीं। मुकेश जी ने गैर फिल्मी एल्बम बहुत सारे किए और वो दौर ऐसा था जब प्लेबैक सिंगर्स अपनी पसंद के गानों के लिए गैर फिल्मी एल्बम्स करते थे। लता जी ने किए, आशा जी ने किए, मन्ना डे ने बहुत सारे किए, रफी साहब की गजलें मौजूद हैं। तो अच्छा, गोविंद मुकेश के ही गाने आप सिर्फ सुनते हैं या जब सुनने की बारी आती है तो?
1: मैं सच बोलूं तो ऑन एयर आज एक्सेप्ट कर रहा हूं कि जब मेरा शो होता है, जब रिहर्सल होता है, रिहर्सल के एक दिन पहले ही मैं मुकेश जी को एकदम सीरियस होकर सुनता हूं।
0: अच्छा,
1: नहीं तो मेरे फेवरेट हमेशा रफी साहब रहे हैं।
0: क्या बात है,
1: रफी साहब को मैं बहुत सुनता हूँ।
0: तो फिर अब मैं ये चाहता हूँ कि रफी साहब का एक गाना आप सुनें। ये तो अलग ही हो जाएगा मामला, है ना?

यार ये जो है ना ये अच्छा एक्सपेरिमेंट हो गया, अब मुझे आइडिया आ गया। अब मुख्तार भाई आपको भी रफी का गाना गाना पड़ेगा। ऐसा किसी ने किया नहीं होगा लेकिन यहाँ तो होगा ये।

0: बात है, पहली बार आपसे हमने रफी साहब को सुना।
1: मैंने भी, अच्छा मैंने भी
0: ये देखिए, ये ऐसा सिर्फ आरती में ही पॉसिबल है, ऐसा शोज में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब अगर लोगों ने सुन लिया तो
2: हो सकता है कभी ऐसा कुछ फरमाइश आ जाए।
0: अच्छा, जब आप फुर्सत में होते हैं तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुकेश के गाने सुन रहे हों, तो किन किन कलाकारों के गाने सुन रहे होते हैं?
2: मैं रफ़ी साहब सभी के फेवरेट रहे, उनके गाने बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, और ऑफ कोर्स मैं कभी किशोर कुमार जी के भी गाने कुछ मुझे पसंद हैं तो वो मैं सुनता हूँ अगर वक्त मिला तो।
0: गोविंद?
1: मैं गुलाम अली साहब को बहुत सुनता हूँ, खाली टाइम पे मैं गुलाम अली साहब को ही सिर्फ सुनता हूँ, बहुत मज़ा आता है उनकी हरकतों को, उनको सब एकदम ऐसा ऐसा डूब जाता हूँ पूरी तरह से।
0: वहां हमने गजलों की बातें की तो यहाँ पर भी जो है, लेकिन अब ये कह के फंस गए गुरु
2: मैं सोच ही रहा था,
1: सोच के जो है
0: चुपके चुपके रात दिन
1: चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है चुपके।

0: आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन।
1: एक पूरा दौर रहा है
0: ओ यस
1: गजलों का, जब
0: यस
1: गुलाम अली के कैसेट्स कौन होगा जिसके कलेक्शन में नहीं हुआ करते
0: हाँ
1: होंगे।
0: एग्जैक्टली
1: आप लोग बहुत शोज करते हैं और ट्रैवल भी करते हैं अपने शोज के लिए। मुकेश की आवाज में अलग अलग गानों की अदायगी लाइव ऑडियंस के सामने, कितने दबाव और तनाव की बात होती है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और हर दिन एक जैसा तो नहीं होता है।
0: तनाव तो रहता है जब ये, क्योंकि कमर्शियल प्रोग्राम्स करने रहते हैं जहां लोग एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं आपके साथ के गानों के, एक तो वॉइस के अंदर रिजेम्बलेंस और उसके बाद उनके उनको गाना, तो उसका टेंशन तो हमेशा रहता है। इतने सारे, मतलब इतने सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं, इतने सारे प्रोग्राम कर चुके हैं थाउजेंड्स में, लेकिन अभी भी गाने का, और स्पेशल जब पहला गाना गाने स्टेज पर जा रहे होते हैं तो दिल ऐसा अंदर से धड़क तो रहा ही होता
1: क्या
0: कि
1: बात
0: भाई
1: है।
0: लोग एक्सेप्ट कर लें, आवाज़ ठीक से निकल जाए, आवाज़ चल जाए,
1: हाँ
0: क्योंकि वो हमारा क्रिएशन तो है नहीं, हम किसी और का गाया हुआ गाना है और मुकेश जी की आवाज को उसको कॉपी करना है, तो वो
1: हाँ
0: थोड़ा सा, अगर ऐसा सोचते अगर 5-10% भी अगर उसको जस्टिफाई कर सके तो, और मेरे ख्याल से उतना ही करते हैं जिसके बदौलत लोग इतना प्यार देते हैं।
1: आप 5-10% नहीं करते हैं, आप

0: इसका उल्टा करते हैं, मतलब 99% 100% करते हैं। गोविंद कितना टेंशन होता है शो से पहले?
1: टेंशन तो बहुत रहता है, और जैसा मुख्तार भाई ने बोला पहले गाने के लिए सच में बहुत टेंशन रहता है, जैसे धक धक धक धक करता रहता है। और मैं तो ग्रीन रूम में हुआ, मेरा जब नंबर आने लगा, जैसे पहला गाना मेरा ही है, तो मुझे टेंशन पहले स्टार्ट हो जाता है।
0: अच्छा।
1: और मैं कर्टन के सामने खड़ा भगवान को बोलता रहता हूँ, आप संभाल लेना, आप स्टेज संभाल लेना, बस और कुछ नहीं।
0: अच्छा, इस टेंशन को ईज करने के लिए क्या तरीका है आप लोगों का? गहरी गहरी सांस लेना, क्या करते हैं? जैसे इन्होंने कहा भगवान से कहते हैं भाई संभाल लेना।
2: ये तो सबसे बड़ी बात ही है, टेंशन को ईज करने के लिए
0: ऊपर वाले को
2: हाँ, उसको तो रिक्वेस्ट करना ही रहता है कि भाई संभालना।
0: बिल्कुल। एक चीज, हाँ, ये सवाल पहले आएगा कि मैंने आपको कई जगह गाते हुए देखा है कि आप लिरिक्स के साथ नहीं गाते, अमूमन आपको सब गाने याद हैं
2: जी,
0: ये कितनी चैलेंजिंग बात होती है? ऐसा नहीं लगता है कि कभी कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया?
2: नहीं, क्या है कि बचपन से एक गाने का जो शौक रहा, तो पुराने दौर में जब हम छोटे थे तो हम लोगों को पता है, हम फिल्में जब जैसे देखने जाते तो स्टोरी भी पूरी याद होती थी।
0: बिल्कुल।
2: वो अपने दोस्तों में कभी डिस्कस करते थे कि ऐसा होता तो वैसा होता, तो वो गाने भी उसी वक्त से मुझे सारे गाने, इनसे इतना लगाव था, इतने दिल से जुड़े रहे इन गीतों के साथ, वो तब से याद हैं। तो वो आज तक ऐसे एक सिस्टम कुदरत ने अंदर इतनी मेहरबानी की है कि वो एक सेट रखा है कि मैं स्टेज पे जाता हूँ, मैं कभी ऐसा सोच कर भी नहीं जाता हूँ कि अच्छा इसका पहला अंतरा क्या है, सेकंड क्या है, वो स्टेज पे याद आते जाता है, वो
0: चलता चला जाता है।
2: हाँ,
0: तो कभी मैंने आपको लिरिक्स के साथ गाते हुए नहीं देखा, इसलिए मैंने कहा कि ये बात जो है ये तो पूछनी जरूरी है कि कितने गानों का खजाना दिमाग में जमा कर रखा है।
2: और वो मैंने क्या है कि कभी रखा भी नहीं रेफरेंस के लिए, मैं कागज इसीलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि जिस दिन साइकोलॉजी एक बैक ऑफ द माइंड मैंने मैसेज दे दिया कि अब भाई एक रेफरेंस के लिए है, तो वो नजर वहां जाएगी। कहते ना कि अब जैसे बैंडेज खरीदते तो आपको चोट लगती है।
0: अरे
2: खरीदना ही नहीं चाहिए बैंडेज।
0: गोविंद कितने गाने याद रहते हैं और डायरी की जरूरत पड़ती है?
1: हाँ, कभी कभी पड़ती है, जैसे मुख्तार भाई ने बोला अभी कि थोड़ा रेफरेंस के लिए ना, वो दिमाग में मेरे बैठ गया है वो चीज, कुछ लाइनों को देखना पड़ता है, मतलब बहुत बार गाया है लेकिन फिर भी वो देखना ही पड़ता है, होता है। लेकिन कुछ गाने बहुत याद है, कुछ गाने एकदम पूरे याद है, लेकिन कुछ गानों को जिनको मतलब अमूमन कभी नहीं गाया है या पहली दो बार गा रहा हूँ, दो तीन बार गाने के बाद तो वो याद ही हो जाता है।
0: अच्छा, फिर सालों से आप लोग शोज कर रहे हैं और एक तरह से शो जो है वो जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं, तब भी रिहर्सल कितनी मायने रखती है? हर शो के पहले एक रिहर्सल होती है।
2: मैं अब इन दिनों अभी काफी सारे मतलब रिहर्सल मैं स्किप करने लगा हूँ, बहुत नहीं जाता हूँ रिहर्सल में। लेकिन ये हाँ, कभी जैसे प्यारे भाई का अगर कोई प्रोग्राम है या आनंद जी भाई के साथ कर रहे हैं, विजू भाई के साथ कर रहे हैं, तो वो रिहर्सल पर्टिकुलरली अटेंड करने जाता हूँ क्योंकि एक थोड़ा सा लर्निंग लेसन्स रहते हैं वहाँ पे। और बाकी अब म्यूजिशियंस और वो सब सारे इतने नोन हैं इतने सालों से, तो अब वो एक सबको एक लिस्ट दे दो और थोड़ा सा स्केल फोन पे डिस्कस कर लो तो काम वैसे चल जाता है।
0: बिल्कुल।
2: अनलेस के कोई ऐसा रेयर गाना गा रहे हो तो थोड़ा सा बिगर देखना पड़ा।
0: गोविंद आप बताइए।
1: नहीं, रिहर्सल तो ठीक है, जो अगर हम रेगुलर गाने गा रहे हैं तो उसकी जरूरत तो नहीं पड़ती है क्योंकि सारे म्यूजिशियन भी वैसे ही हैं, और आज के टाइम पे चाहे सिंगर हो म्यूजिशियन हो, सब इतना मेहनती है, सब मेहनत करते हैं, सब अपना 100% स्टेज पर देते हैं, चाहे वो सिंगर हो चाहे म्यूजिशियन हो साउंड हो कोई भी हो। लेकिन हाँ, कुछ पर्टिकुलर कुछ अलग गाने मिल गए, कुछ कोरस वाले गाने मिल गए तो रिहर्सल की जरूरत पड़ती है।
0: बिल्कुल। मुख्तार भाई, बहुत सारे लेजेंड्स के साथ मैंने आपको शो करते हुए देखा है
2: जी,
0: तो जैसे प्यारे भाई ही हैं
2: जी,
0: या आनंद जी भाई हैं या और तमाम लोग हैं, मतलब सिंगर्स भी बहुत सारे तमाम लोगों के साथ, उनकी कुछ यादें, उनके साथ शो की यादें हमारे साथ बांटिए।
2: मैं मतलब मैंने कभी अपनी जिंदगी में जब छोटा था, गाना मैंने शुरू किया अहमदाबाद में था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कुदरत ऐसा मौका भी देगी कि ये लोगों के साथ मिलना होगा या इन लोगों के साथ कोई स्टेज पे खड़े रहने का मौका भी मिलेगा। तो मैं ऊपर वाले का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये मौका दिया। जैसा कि हम सुनते थे कि भाई ये जो लेजेंड्स होते हैं, तो जब इनके साथ काम करो तो इनके काम करने का तरीका, इनकी डिटेलिंग, इनका ऑब्जर्वेशन, वो देखकर ही पता चलता है कि इसीलिए ये लोग महान हैं। तो जैसे कि मैं बताऊँ कि अगर प्यारे लाल जी के साथ एक प्रोग्राम कर रहा था तो सारे म्यूजिशियंस बजा रहे हैं, और जैसा मैं सुनता था तो वो मेरे साथ बात भी कर रहे थे, और वो जब जुम्मा चुम्मा दे दे वाला म्यूजिक आगे का चल रहा था, तो वो जैसे स्टॉप हुआ तो उन्होंने पर्टिकुलरली चार कीबोर्ड वाले, तो उसमें से एक ही कीबोर्ड वाले को उन्होंने बोला कि आप वो बजाइए, आप क्या बजा रहे थे, और

0: वही इंसान गलती कर रहा था वो जगह पर। तो
1: इतनी
0: ये जो
1: बारीकी से
0: इतनी
1: वो
0: बारीकी से जो सुनना,
1: जी। और
0: ये
1: प्यारे भाई के बारे में ये बहुत मशहूर है कि वो 20 वायलिन में से भी एक को पहचान लेंगे कि तुम
0: हाँ
1: गलत बजा रहे थे।
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली
1: तो ये तो कमाल की बात है। उनके साथ बहुत रिहर्सल्स, बहुत शोज किए हैं आपने, तो कोई एक गुरु मंत्र जो उन्होंने आपको दिया हो?
0: मुझे वो ऐसा कहते थे कि आपके थोड़े से जो लैंडिंग जहाँ नोट्स आपको करते हैं वो थोड़ा सस्टेन करना या उसको थोड़ा सा करेक्ट करना, जो उन्होंने मुझे बताया था। तो वो एक उन्होंने मुझे बताया और वो मैं कोशिश करता हूँ कि जैसा उन्होंने मुझे बताया है तो लैंडिंग नोट्स को, जो गाना जहाँ से जो लाइन जहाँ ख़त्म होती है तो उसको जो सस्टेन करना, तो कोशिश करता हूँ वैसे ही करने की।
1: मुझे लगता है कि वो गाना जो आप कई बार प्यारे भाई के साथ स्टेज पर गा चुके हैं, वो जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली,
0: तार में सच के
1: वो
0: तार।
1: गाना सुनते हैं आपसे।

0: क्या बात है, इस गाने के बारे में जो एक ट्रिविया है वो भी बता दीजिए, द गुड द बैड द अगली।
1: वो जो म्यूजिक उन्होंने किया तो मैं, वो मुझे प्यारे भाई ने बताया कि हमने उसका बाकायदा पेड करके वो लिया हुआ है म्यूजिक, किराया हुआ नहीं है
0: बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कमाल है कि
1: यस
0: इतनी बड़ी हॉलीवुड की फिल्म और
1: यस
0: उसका जो म्यूजिक है, वो जो थीम है, वहां से उन्होंने
1: जी
0: क्या शानदार तरीके से उसको गाने में बदला है, ये बहुत बड़ी बात है, कमाल की बात है।
1: एग्जैक्टली यस
0: तो ये गाना पूरा सुनते हैं रिकॉर्ड से।

0: गोविंद अब आपकी तरफ आते हैं, तमाम तरह के शोज किए हैं, तो को सिंगर्स के साथ कुछ दिलचस्प अनुभव? कभी ऐसा होता है कि लाइंस भूल जाते हैं लोग या ऐसा कुछ?
1: हाँ, एडजस्ट करना पड़ता है, कभी कभी तो होता है। और काफी सारी फीमेल सिंगर के साथ जब मैंने गाए तो कई लोग, कई फीमेल सिंगर ऐसी थी जिन्होंने कोई कोई गाने में लाइन भूल जाती थी, तो वो याद मुझे रहता था, तो मैं खाली उस इशारा करके मैं संभाल लूंगा, मैं गा लूंगा, मैं दो लाइन तीन लाइन आगे गा के फिर उनको सपोर्ट करता कि अभी तुम गाओ।
0: क्या बात है, क्या बात है, ये भी करना पड़ता है। सर आप भी ऐसा करते हैं?
2: नहीं, आमतौर से ऐसा कभी, यस ऑफ कोर्स, अगर को सिंगर अगर है, कहीं हमारी गलती हो गई तो शायद उसने संभाल लिया, उसकी गलती हुई तो हमने संभाल लिया, पब्लिक को नहीं पता चले एज लॉन्ग एज, तो वो तो कोशिश तो करनी पड़ती है।
1: हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई नया गाना हो जिसका रिहर्सल नहीं हुआ हो टाइम कम की वजह से, तो हमें फीमेल सिंगर को बोलना पड़ता है कि काउंटिंग करके मुझे बताना मेरा स्टार्ट कहाँ से होने वाला है।
0: वाह वाह,
1: तो बता के वो पहले खाली ऐसे टच कर देंगे तो हम शुरू हो जाते हैं।
0: पब्लिक को समझ नहीं आता,
1: पब्लिक को समझ नहीं आता था।
0: बस एक चीज और बहुत ही जरूरी बात जो मुझे लगता है कि जो एस्पायरिंग सिंगर्स हैं उनके लिए बहुत काम की होगी, और वो ये है कि आप दोनों लोग स्टेज पर जब परफॉर्म करते हैं तो बहुत अदाबाजी के साथ नहीं करते हैं कि उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नीचे झुक गए, तिरछे हो गए, टेढ़ा मुंह कर लिया, आप लोग बहुत सलीके से और बहुत नफासत के साथ गाते हैं।
2: तो ये मेरे ख्याल से हम जिनके गाने गाते हैं, मुकेश साहब के, तो उनके गानों की डिमांड भी वही है कि अगर उनको उसी तरीके से गाना चाहिए जैसा हम गा रहे हैं। शायद अगर हो सकता किशोर कुमार जी के गाने गा रहे होते तो उसकी डिमांड वो होती कि उसके अंदर थोड़ी चंचल, थोड़ा सा उछल कूद, थोड़ा सा ऑडियंस में चले जाना, या वो वहां होता।
0: बिल्कुल गोविंद,
1: मैं तो मुकेश जी के वीडियोस जितने देखे हैं उसमें उन्होंने सब सीरियस होके गाया है,
0: वो तो हारमोनियम
1: लेके होता है, लेकिन वो एंट्री कैसे करना है, कैसे खड़े होना है, वो चीज मैंने मुख्तार भाई से सीखा है।
0: मैंने क्या बात है?
1: काफी शोज इनके साथ किए, तो मैंने इनको सिर्फ नोटिस किया है कि ये कैसे एंट्री कर रहे हैं, कैसे खड़े हैं, कैसे गा रहे हैं, कितनी सादगी से गा रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो इसीलिए मैंने ये बात पूछी,
2: इसीलिए आज मॉडेस्टी
1: नहीं, मैं बस वो चीज इनसे ही मैंने सीखा है। और

0: सिंगिंग में भी बोलूँ तो मुकेश जी को मैं सुनता हूँ, लेकिन मुकेश जी को सुनने के बाद एक बार इनको जरूर सुन लेता हूँ
1: क्या बात है।
0: इन्होंने कैसे गाया और चलो
1: अब मैं चाहता हूं कि आप दोनों लोग मिलकर कोई गाना गाएं, तय कर लीजिए कि वो कौन सा गाना होगा। मुखड़ा अंतरा, दूसरा अंतरा भी हम सुनना चाहेंगे, जितना आप गा
0: अच्छा
1: सकते हैं। तो बताइए कि आप लोग कौन सा गाना चुन रहे हैं, जिसमें एक शुरू करेगा, दूसरा उस गाने को आगे बढ़ाएगा, फिर अंतरे आएंगे।
0: यस, एक बहुत ही सच्चाई के पर लिखा हुआ जो गाना है, सज्जन रे झूठ मत बोलो
1: क्या बात
0: खुदा
1: है,
0: के
1: शैलेंद्र
0: पास
1: जी का
0: जाना है,
1: गाना, फिल्म का
0: शैलेंद्र जी
1: नाम
0: का।
1: तीसरी कसम, शंकर जयकिशन।
0: सज्जन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सज्जन रे झूठ मत बोलो।

क्या बात है, कितना शानदार माहौल आप लोगों ने बनाया, कितना अच्छा लगा। ये गाना भी ऐसा है जो एक जिंदगी का जरूरी सबक सिखाता है जी।

0: पार्श्वगायक मुकेश की याद में आज हमने एक विशेष पेशकश आपके सामने रखी। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थे गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र। इनसे बात की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज आपने सुना इस बातचीत का पहला भाग। मुकेश जी से जुड़ी बातें और यादें इतनी सारी हैं कि इस कार्यक्रम का अगला भाग भी हम लेकर आ रहे हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन शाम 4 बजे। आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को पेश किया जुबैर खान ने। तो अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज पिटारा लाया था
0: आज के मेहमान।
1: आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त है सीएफ वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का।

0: साथी बने गजराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 9 है। ये सरहरी, केवरा, करंजवार, पार्वतीपुर, बंसीपुर, बगड़ा, सिंघरा, भरदा, दलदली, गणेशपुर, मदन नगर, चिटका बहरा, घाट पिंडारी, देवरी, पकनी, धुमा डा

0: बाढ़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज, धमनी और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये चिनिया, महावीरगंज, कनकपुर, टकिया, शिवपुर, इंद्रावतीपुर, कामेश्वर नगर, सिलाजू, आनंदपुर, गोपालपुर, मुरका, अतौरी, ठरकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के लुंड्रा, लखनपुर, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये अस्कला, दोरना, जरहाडी, अरगोती, तिरकेला, तप्ताझरिया, लोटाढोड़ी, लक्ष्मणगढ़, सुखरी भंडार, महेशपुर, मानपुर, जगन्नाथपुर, झिरमिटी, शिवनाथपुर, सरगा, पेटला, ढोढ़ा गांव, चोरकी पानी, बैडाण, बरवाली, कंडराजा, रानीपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, दुलदुला और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये खारी झरिया, ठेठे टांगर, कुंजारा, पंडरी पानी, साजा पानी, गट्टी बुड़ा, करडेगा, हल्दी मुंडा, खड़ा माचा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 107 है। ये सिंघी छाप, बोजिया, इंचपारा, बायसी, गेरसा, नागदरहा, पोटिया, आमगांव, आमापाली, सस्कोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के पसर खेत में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये मदनपुर, केरा कछार, पसर खेत के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वनमंडल के एतमानगर, जडगा और पसान में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बंजारी, मड़ई, कोदवारी, लोधीबहरा, मतीन, धनरास, आमाटिकरा, नवापारा, झुनकीडी, जुनवानी, उकरी कादर, चोटिया, लालपुर, कोयलार गडरा, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और तमनार में हाथियों की कुल संख्या 39 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, भैंसगढ़ी, कंटाझरिया, नागदरहा, पंडरी पानी, बटुरा कछार, अमलीडी, सराई पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सराई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 27 है। ये ताल दादर, फुरफुंदी, झाल पानी, अचानकपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट और धवलपुर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कुकरार, ताराझर, कुरवा पानी, खोला पारा, छिंदौला, लूठा पारा, फरसरा, बोडापाला, जारन डी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: सीएफ वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट अभी हम सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम चित्रपट संगीत का पहला गीत हमने लिया है फिल्म दुश्मन से। आवाजें उदित नारायण और लता मंगेशकर की हैं। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार हैं उत्तम सिंह।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अभी हमने सुना लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में दुश्मन फिल्म का गीत। कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं समीर का लिखा हुआ गीत। संगीत जतिन ललित का है, आवाजें अलका याग्निक और कुमार सानू की। फिल्म का नाम गुलाम।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत का अगला गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और एमजी श्रीकुमार की आवाजों में। इस गीत को लिखा है गुलजार ने, फिल्म का नाम है दिल से और संगीतकार हैं एआर रहमान।

श्रोताओं, आईटीआई में रिक्त सीटों में प्रवेश हेतु पुनः पंजीयन हेतु एक सूचना सुनिए। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नेवरा बिलासपुर में एक वर्षीय व्यवसाय कोपा तथा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोटा में एक वर्षीय व्यवसाय कोपा एवं स्टेनोग्राफर हिंदी तथा द्विवर्षीय व्यवसाय फिटर एवं इलेक्ट्रीशियन की रिक्त सीटों पर प्रवेश पुनः आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 17 जुलाई से 24 जुलाई तक आधिकारिक वेबसाइट cgiti.admissions.nic.in पर पंजीयन कर आवेदन कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी पूर्व से पंजीकृत है और अगले चरण में भाग लेना चाहते हैं, वे अपनी लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन कर कंसेंट प्रदान करते हुए निर्धारित शुल्क जमा करें तथा आवश्यकता होने पर चॉइस फिलिंग में संशोधन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी संबंधित संस्था से अथवा उक्त वेबसाइट पर प्रदर्शित हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, वेबसाइट एक बार फिर cgiti.admissions.nic.in। सूचना समाप्त हुई। कार्यक्रम चित्रपट संगीत अभी हम सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए पेश है आनंद बख्शी का लिखा हुआ। आवाजें अलख याग्निक और कविता कुमार की हैं। फिल्म का नाम है गुप्त और संगीतकार हैं विजू शाह।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत का अगला और अंतिम गीत है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में। देव कोहली ने इस गीत को लिखा है, संगीतकार है आनंद राज आनंद और फिल्म का नाम है मेजर साहब।

अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण के गाए मेजर साहब फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:35 हो रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवा जगत।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त महक। स्वागत है आपका हमारे आज के युवा जगत कार्यक्रम में। उम्मीद करती हूं कि आप अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रख रहे हैं। इन दिनों बारिश का मौसम भी पूरे शबाब पर है। रिमझिम फुहारे और ठंडी हवाएं मन को सुकून तो देती हैं, लेकिन कई जगहों पर लगातार बारिश और बाढ़ जैसे हालात भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे समय में अपनी सेहत का ध्यान रखना पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बस इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे अपनी सेहत की देखभाल और युवा स्वास्थ्य की। दोस्तों, अच्छी सेहत का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से फिट रहना ही नहीं है, उतना ही ज़रूरी है हमारी मेंटल हेल्थ। क्योंकि जब हम अच्छा महसूस करते हैं, तभी हम किसी भी काम के लिए अपना 100% योगदान दे सकते हैं। और आज के इस भागते दौड़ते समय में, जहाँ हर कोई बहुत कुछ कम समय में हासिल करना चाहता है, ऐसे में हम तो आगे बढ़ जाते हैं, पर पीछे रह जाती है हमारी सेहत। और यही बदलती लाइफस्टाइल हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रही है। आज बढ़ा हुआ स्क्रीन टाइम हमारा शौक नहीं है, हमारी ज़रूरत बन गई है। क्योंकि आज कोई भी ऑफिस

का काम या पढ़ाई बिना स्क्रीन के बहुत ही मुश्किल है। अब ऐसे में ना हम अपनी डाइट का ख्याल रख पाते हैं ना ही एक्सरसाइज का। इतनी देर ऑफिस की या कोचिंग क्लासेस की कुर्सियों पर बिताने के बाद हम हेल्दी खाना या घर पर कुछ हेल्दी बनाने की तकलीफ से बचने के लिए फास्ट फूड का सहारा ले लेते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन आदतों को बदलने के लिए किसी बड़े बदलाव की नहीं बल्कि रोज़मर्रा की कुछ छोटी छोटी कोशिशों की ज़रूरत होती है। दोस्तों, इन आदतों और छोटी छोटी कोशिशों की बातें हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं इस गीत के लिए। गीत हमने लिया है फिल्म घर से। आवाज़ है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, धुन तैयार की है आरडी बर्मन ने और इसे लिखा है गुलजार ने।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में ये खूबसूरत गीत। दोस्तों, संगीत की यही खासियत होती है कि कुछ पल के लिए मन को सुकून दे जाता है।

0: और जब बात सेहत की हो तो मन की सेहत का जिक्र भी उतना ही जरूरी है। आज का युवा जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत कर रहा है, पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाएं, करियर, नौकरी की जिम्मेदारियां और बेहतर भविष्य की उम्मीद, इन सब के बीच कई बार तनाव भी बढ़ने लगता है। वहीं सोशल मीडिया पर दूसरों की उपलब्धियां देखकर अपनी तुलना करना भी अपने आप पर ही प्रेशर डालने जैसा है। ऐसे में ये याद रखना जरूरी है कि हर व्यक्ति की अपनी मंजिल है, अपना सफर है और अपनी चुनौतियां। इसीलिए अपनी तुलना कभी भी किसी से करने की बजाय अपने प्रयास और अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान दें। अगर फिर भी आपके मन में कमतरी का एहसास हो तो उसे अपने अंदर ना रखें, अपने परिवार, दोस्तों या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से खुलकर बात करें और अपने लिए आसान सफर चुनें जहां आप अपने आप से ही अपनी तुलना करें। दोस्तों, बातें आगे भी जारी रहेंगी, पर आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों, क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
0: दोस्तों, सही दिशा और सही जानकारी भी कई बार मन का बोझ हल्का कर देती है। इसी सोच के साथ आइए अब रुक करते हैं क्रम करियर गाइडेंस की ओर। विषय है कृषि वानिकी में करियर की संभावनाएं। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं अंकित पांडे, सहायक आचार्य वानिकी विभाग, गुरुघासी दास विश्वविद्यालय बिलासपुर, और उनसे बातचीत की है शुभम पाठक ने। आइए सुनते हैं उनकी ये बातचीत।
2: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं डॉक्टर अंकित पांडे। साथियों, वर्षा ऋतु का समय है और पिछले कई दिनों से बिलासपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में अच्छी वर्षा देखने को मिल रही है। साथियों, यह उचित समय है वृक्षारोपण का। आप एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान के तहत वृक्षारोपण जरूर करें।

0: आकाशवाणी के प्यारे श्रोताओं को शुभम पाठक का नमस्कार। साथियों, आज हम एक बेहद ही जरूरी विषय आप सबके समक्ष लेकर के आए हैं और वो विषय है कृषि वानिकी में करियर की संभावनाएं। साथियों, आपने कृषि शब्द कई बार सुना होगा, वानिकी भी कई बार सुना होगा। कृषि जिसमें अपने देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है और अपने छत्तीसगढ़ में तो खेती किसानी सब जाना पहचाना हुआ है। साथियों, अपने छत्तीसगढ़ को खेती किसानी के कारण और धान के कारण इसको धान का कटोरा भी कहते हैं। और वानिकी अर्थात फॉरेस्ट्री, जिसमें हम जंगलों का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, वहां के बायोडायवर्सिटी का अध्ययन करते हैं। लेकिन साथियों, एक नया शब्द है, वो है कृषि वानिकी, जिसे इंग्लिश में एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। तो साथियों, आज का हमारा विषय है कृषि वानिकी में करियर की संभावनाएं। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के वानिकी विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर अंकित पांडे जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। साथ ही आकाशवाणी के हमारे सभी युवा साथियों का, आकाशवाणी बिलासपुर के सभी श्रोताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: जी जी सर। तो सर, सबसे पहले आप आकाशवाणी के श्रोताओं को अपने बारे में कुछ बताएं।
1: शुभम जी, मेरा नाम डॉक्टर अंकित पांडे है। मैं मूलतः सतना जिला मध्य प्रदेश का निवासी हूं और अभी वर्तमान में मैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के वानिकी वन्यजीव पर्यावरण विज्ञान

0: विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। साथ ही मेरा पठन पाठन का आप देखेंगे तो मैंने जो है बीएससी फॉरेस्ट्री किया है, जो कि आपके जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से है। साथ ही मैंने मास्टर्स या जिसको हम स्नातकोत्तर कहते हैं वो मैंने किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कृषि वानिकी में। साथ ही मैंने अपना विद्या वाचस्पति या जिसको हम पीएचडी कहते हैं उसकी उपाधि मैंने आपके गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से अर्जित करी है।
1: तो आपने बहुत अच्छे से अपने पूरी पढ़ाई के दौर को बताया। अंकित सर, आज हम बात कर रहे हैं कृषि वानिकी में करियर की संभावनाएं, और चूंकि आपने यही पढ़ाई की है तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपके अंदर ये कैसे आया कि आपको इस विषय की पढ़ाई करनी है, ये ललक आपके अंदर कहाँ से जगी?
0: देखिए, एक अगर हम इस तरीके से बात करें कि शिक्षा में किस तरीके से रुचि गई है, तो हम पहले देखेंगे कि पहले दशक में इंजीनियरिंग एवं डॉक्टरी का बहुत क्रेज हुआ, फिर अभी हमारा कृषि में बहुत अच्छा काम हो रहा है और हमारे सभी जो है युवा साथी जो 12वीं उत्तीर्ण करते हैं वो कृषि की ओर जाते हैं। तो अब बदलते परिवेश के हिसाब से आप देखेंगे कि कृषि वानिकी एक उभरती हुई एक कृषि की शाखा है। तो जब हम इसमें अध्ययन करते हैं कि पेड़ों का अध्ययन करना है, साथ ही हमें फसलों का अध्ययन करना है, पशुपालन का भी अध्ययन करना है, तो मेरी रुचि बचपन से इसी क्षेत्र में थी, क्योंकि हम खुद भी किसान परिवार से आते हैं। तो हमारा इसी में रुचि था कि हम किसान परिवार से हैं तो हम ऐसी शिक्षा ग्रहण करें जो हमारे लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूप से लाभकारी हो।
1: जी, बहुत अच्छे से आपने अंकित जी पूरे विषय को रखा। अब यदि सरल शब्दों में बात करें तो मैंने तो बताया कि कृषि वानिकी कृषि और वानिकी शब्द से मिलकर बना हुआ है। आप यदि सरल शब्दों में बताएंगे हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को, अपने किसान भाइयों को, तो कृषि वानिकी क्या है?
0: जी जी बिल्कुल, मैं अपने किसान भाइयों को यह बताना चाहता हूँ कि जैसे आप इसमें देखेंगे कृषि वानिकी यह हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है कृषि, अर्थात हमारा जो फसल उत्पादन है, जो पशुपालन है, ये सब। फिर उसके बाद है उसमें जुड़ता है वानिकी। वानिकी का अर्थ है वृक्षारोपण या वृक्षों के साथ हमको खेती करना। तो अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो वृक्षों के साथ फसल उत्पादन या पशुपालन की क्रिया ही हमारा क्या है, कृषि वानिकी है। एक हमारे जो भारत के महत्वपूर्ण साइंटिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर PKR नायर, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो कृषि वानिकी एक ऐसा समेकित कृषि प्रबंधन प्रणाली है जिसमें कि हम फसल उत्पादन, वृक्षों का लगाव एवं उनका उत्पादन, साथ ही इसके साथ हम पशुपालन इस तरीके से एक ही खेत पे करते हैं कि वो हमारे लिए लाभकारी हो, प्राकृतिक रूप से वो सुरक्षात्मक हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण हो, ताकि समाज के द्वारा एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। हम ऐसे वृक्षों का चुनाव नहीं करते हैं कृषि वानिकी में जो हम समाज में पूजनीय हैं या जिनको हम सैक्रेड बोलते हैं, सैक्रेड ट्रीज का हम नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें समाज की भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो ये हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने आपका परिभाषा बनाया हुआ है, इसी को हम कृषि वानिकी कहते हैं।
1: तो सर, आपने बताया कि कृषि वानिकी जो है जिसमें खेती किसानी में हम साथ साथ वृक्षारोपण के भी कार्य करते हैं। अब एक चीज यदि मैं बात करूं तो इसमें आज के समय यदि कोई धान की खेती कर रहा है तो किस प्रकार का साथ में वृक्षारोपण करे कि उससे आर्थिक विकास उनका हो, मेरा ये प्रश्न है।
0: जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हम कृषि वानिकी करते हैं तो कृषि वानिकी का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है वृक्षों का चुनाव करना, फसलों के साथ हमें वृक्षों का चुनाव करना। तो हमारे वैज्ञानिक हमको कहते हैं कि वृक्षों का चुनाव करते समय हमें ये सावधानी रखनी चाहिए कि पहला हम ऐसे वृक्ष प्रजातियों का चयन करें जो कि उस लोकल जलवायु के अनुकूल होने चाहिए। हम ऐसे वृक्षों का चयन ना करें जो उस जलवायु में नहीं सर्वाइव कर सकते हैं या उस जलवायु में नहीं रह सकते हैं। फिर दूसरा होता है हम जल्दी बढ़ने वाले वृक्षों का चयन करें। हम ऐसे वृक्षों का चयन बिल्कुल भी ना करें जो कि हमें बहुत लंबे अंतराल में उनसे हमें लाभ प्राप्त होगा। तीसरा है कि हम ऐसे वृक्षों का चुनाव करें जो कि आपस में सहचर्य की भावना रखें, एक दूसरे को बढ़ने में, फलन में, उत्पादन में मदद करें। ऐसे वृक्षों का हम चुनाव नहीं करते हैं जो कि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धी हो, जिससे क्या होगा, अगर फसल हमारी प्रतिस्पर्धी होगी तो हमें लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ हमारे किसान भाइयों को कि देखिए कृषि वानिकी क्या है कि हमारा दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है फसलें, चाहे आप दलहनी तिलहनी या फिर आप बात करें कि अगर हम कुछ ऐसे फसल लगा लेते हैं जो डायरेक्ट हम बाजार में बेच सकते हैं, फिर दूसरा हम उसमें लगाते हैं पेड़। तो कृषि वानिकी हमारा देखेंगे कि दो चीजें जुड़ गया है उसमें, तो ये हमारा क्या करता है कि हमेशा एक से ज्यादा आउटपुट देता है हमको, एक से ज्यादा हमें वस्तुएं देता है। तो एक फसल अगर हमारी नुकसान हो भी गई तो दूसरी फसल उसको बचाए रखने में मदद
1: करती है, एक बैकअप है, एक बैकअप भाइयों के लिए एक बैकअप है। जैसे आज कोई खेती कर रहा है तो मौसम की मार से यदि उनका फसल

0: को कुछ नुकसान होता है तो उनके पास एक बैकअप है।
1: जी जी
0: मेरा मेन प्रश्न अब ये है अंकित सर कि आज के समय में यदि जो छत्तीसगढ़ के किसान है वो धान की खेती कर रहे हैं, धान की खेती यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे होती है,
1: जी जी,
0: तो धान की खेती के साथ वो किस प्रकार का मतलब, या मैं ये पूछूं तो कौन सा वृक्ष लगाएं जिससे उनको फायदा हो, और यहाँ की मिट्टी, चूंकि आपने इसकी पढ़ाई की है तो आपको पता है यहाँ की मिट्टी किस प्रकार की है, जलवायु किस प्रकार का है, तो सीधा साफ उदाहरण हमारे किसान भाइयों को और आकाशवाणी के श्रोताओं को दे।
1: जी जी, तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हमारा छत्तीसगढ़ का जो आपका, जैसे आपने बताया कि जलवायु है, तो आपके छत्तीसगढ़ में को अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो जैसे आप देखेंगे कि कुछ क्षेत्र है, जैसे अपना बिलासपुर क्षेत्र है, यहाँ पे जो हमारा कृषि वानिकी प्रणाली प्रचलित है वो सबसे ज्यादा प्रचलित है धान एवं बबूल बेस्ड कृषि वानिकी पद्धति। वहीं आप अगर बस्तर में जाएंगे तो वहाँ पे उनका एग्री सिल्वी हॉर्टिकल्चर, मतलब कि हमारा एग्रीकल्चर क्रॉप है, साथ में उसके फसल वाले वृक्ष लगाते हैं, साथ ही उसके और इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले भी वृक्ष लगाते हैं। तो इस तरीके से जलवायु क्षेत्र के हिसाब से हमारे पास अलग अलग तरीके के कृषि पद्धति, कृषि वानिकी प्रणालियां हैं।
0: जी, तो बहुत अच्छे से सर आपने बताया। अब सर हम अपने विषय की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं।
1: जी जी,
0: हमारा मेन विषय है कि कृषि वानिकी में करियर की संभावनाएं।
1: जी,
0: आपने अब तक कृषि वानिकी क्या होता है, कृषि वानिकी के लाभ क्या हैं और किस किस प्रकार के कृषि वानिकी में जो जो चीजें सहायक होती हैं,
1: जी,
0: बहुत अच्छे से आपने रखा। अब प्रश्न ये है सर हमारा कि आज यदि कोई विद्यार्थी कृषि वानिकी में अपना भविष्य बनाना चाहता है,
1: जी जी,
0: आज वह किसी स्कूल में पढ़ रहा है, ट्वेल्थ में या ट्वेल्थ पास कर चुका है
1: जी,
0: या इलेवेंथ में है, तो आने वाले समय में वो कृषि वानिकी में अपना भविष्य किस प्रकार बना सकता है, उसके लिए क्या क्या रास्ते खुले हुए?
1: का बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है। तो मैं श्रोताओं को अपने ये बताना चाहूंगा कि जैसे ही विद्यार्थी 12वीं कक्षा पास करते हैं तो फिर जो हमारे सरकारी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, परीक्षा होती है, जैसे CUET UG हो गया, तो जो विद्यार्थी हमारे 12वीं कक्षा में विज्ञान विषय से हैं, जैसे कि आपका बायोलॉजी हो गया, मैथ्स हो गया, साथ ही कृषि विषय जिन्होंने ले रखा है अपने 12वीं में, तो इन विषयों से जो उत्तीर्ण करते हैं वो CUET UG देते हैं। उसके बाद अलग अलग विश्वविद्यालयों में वो प्रवेश लेते हैं। जो प्रवेश लेते हैं आपके दो तरीके के कोर्स बन जाते हैं, BSc, या तो BSc कृषि करेंगे या तो BSc फॉरेस्ट्री करेंगे या वानिकी करेंगे। फिर उसके बाद 4 साल का आपका BSc का कोर्स होता है, जो कि आपके अन्य अन्य विश्वविद्यालय में, जैसे आपके गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय हो गया, साथ ही आपका एक महात्मा गांधी वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय है दुर्ग में, आपके शंकरापाटन में, तो यहाँ पे BSc फॉरेस्ट्री में एडमिशन लेंगे। फिर उसके बाद 4 साल का कोर्स है जो कि आपका बहुत ही अच्छा है और इसकी फीस वगैरह भी बहुत ज्यादा नहीं लगती है।
0: विश्वविद्यालय तो सर अंकित सर आपको एक चीज टोक रहा हूँ यहाँ पे।
1: जी जी,
0: कि आपने कहा कि फीस ज्यादा नहीं, क्या फीस यहाँ है विद्यार्थियों के लिए बैचलर कर रहे हैं, तो वो भी आप थोड़ा इंक्लूड करते चलेंगे।
1: जी जी, तो जो फीस स्ट्रक्चर होता है अलग अलग विश्वविद्यालयों का, तो उस हिसाब से फीस अलग लगती है। हमारे गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक की पढ़ाई के लिए आपका लगभग 50,000 रुपए में पूरी पढ़ाई हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि 8 सेमेस्टर का कोर्स है तो हम देखें तो 6 से 7 हजार रुपए पर सेमेस्टर हमको फीस देनी पड़ती है अलग अलग उसमें। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जाएं तो वहां भी आपके 10 से लेकर 15 हजार रुपए तक का पर सेमेस्टर फीस लगता है। यही प्रणाली आपका महात्मा गांधी वानिकी उद्यान के विश्वविद्यालय में भी है। तो इस हिसाब से हम देखें तो हमारा 4 साल का कोर्स आराम से 50 से लेकर 70 हजार या मैक्सिमम जाएगा तो 1 लाख रुपए तक जाएगा विश्वविद्यालय की अपनी फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से। जी जी, फिर उसके बाद हम जाते हैं आपका CUET PG देते हैं, या कई विश्वविद्यालय अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं पर्सनल, तो उसको भी हम
0: पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए,
1: जहाँ पे आप करते हैं कोर्स जिस हम बोलते हैं कृषि वानिकी, MSc फॉरेस्ट्री या MSc एग्रीकल्चर इन कृषि वानिकी, ऐसा करके, तो फिर वहाँ पे भी ये 2 साल का कोर्स होता है और वहाँ भी आपका फीस स्ट्रक्चर बहुत ही नॉर्मल रहता है, जिससे आम किसान परिवार से आने वाले बच्चे भी उसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में देखा जाए तो 13 हजार रुपए पर सेमेस्टर के हिसाब से हमको फीस देना पड़ता है। यही फीस स्ट्रक्चर आपके इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में है, जो 13 से 15 या 20 हजार तक जाता है वो सीटों की उपलब्धता के हिसाब से, और ऐसे ही महात्मा गांधी वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय में भी ऐसे ही प्रवेश होता है। फिर आप जब मास्टर्स या स्नातकोत्तर में जब जाएंगे तो वहाँ पे आप कृषि वानिकी की पढ़ाई करेंगे। फिर उसके बाद कृषि वानिकी के बाद आप और जैसे कि आगे जाने का सोचते हैं, अगर आप जॉब वगैरह करने का सोचते हैं, तो इसमें भी हम 2 सेक्टर में चले जाएंगे। पहला तो हमारा है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में जैसे आप कोई पेपर मिल है या कोई सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, इनमें बतौर प्लांटेशन मैनेजर या एनवायरमेंटलिस्ट की पोस्ट पे हमारे जो विद्यार्थी कृषि वानिकी की पढ़ाई करते हैं तो वो हमारे यहाँ पे जाते हैं,
0: वो जा सकते हैं।
1: फिर हम दूसरा जाते हैं।

0: गवर्नमेंट सेक्टर में, ये हम बात कर रहे हैं स्नातक या स्नातकोत्तर की पढ़ाई के बाद हम जॉब की बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे तो उसमें जैसे आपका नाबार्ड बैंक है, उसमें आप सहायक प्रबंधक के पद के लिए जा सकते हैं, साथ ही आपका जो बैंकिंग शाखा है IBPS कहते हैं उसको, तो वो एक कंबाइंड एग्जाम लेते हैं जो कि आपके जो बैंकों में एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफिसर रहते हैं उसकी पोस्ट के लिए जाते हैं। या तो फिर आप तीसरा रास्ता चुन सकते हैं उच्च शिक्षा के लिए, जिसमें आप PhD करने जा सकते हैं, वहां पे जाते हैं। फिर उसके बाद आप इसमें भी दो जगह जा सकते हैं, या तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, जो कि अपने देश में बहुत सारे प्रतिष्ठित संस्थान हैं, जहां पे आप जाके वहां पे कृषि वानिकी से संबंधित विषय पे शोध या आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं। जो ICAR का एक एग्जाम होता है जिसको ASRB कहते हैं, उसके थ्रू आप जो है तो वहाँ पे साइंटिस्ट के पद के लिए जा सकते हैं, और या तो फिर आप विश्वविद्यालय में टीचिंग पद के लिए जा सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या आप आगे भी। तो कृषि वानिकी शिक्षा में रोजगार के इस तरीके के अवसर हैं।
1: जी, तो सर आपकी बातें सुनकर तो मन बहुत प्रफुल्लित है, और स्वाभाविक सी बात है कि इतनी अच्छी बातें सुनने के बाद आकाशवाणी के श्रोता भी मन बना रहे होंगे कि हमारे घर से भी कोई कृषि वानिकी करे। संभावनाएं अपार है, बस प्रयास और सही दिशा में मेहनत करने की आवश्यकता है। अब सर हम लोग बातचीत कर रहे हैं कृषि वानिकी के बारे में, तो कृषि वानिकी के बारे में और कुछ हमारे युवा साथियों को आप बताना चाहें, आकाशवाणी के श्रोताओं को, तो क्या बताना चाहेंगे?
0: कृषि वानिकी के जो हमारे विद्यार्थी हैं जो कृषि वानिकी में जाना चाहते हैं, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि इसमें बहुत अच्छा ही करियर है, इसमें अपार संभावनाएं हैं। अगर आप उद्यमिता की ओर जाना चाहें तो उद्यमिता में भी जा सकते हैं, जैसे नर्सरी लगा सकते हैं आप अपना, या आप किसी टिम्बर इंडस्ट्रीज को लगा सकते हैं आप, या आप कहीं युवा सलाहकार के पद के लिए भी जा सकते हैं। तो करियर की अपार संभावनाएं हैं कृषि वानिकी में, और मैं अपने सभी युवा साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, साथ ही उनको यह सलाह देना चाहूंगा कि आप अपना कृषि वानिकी में आए, ताकि कृषि वानिकी एक ऐसा विषय है जो कि भविष्य को देखते हुए इसकी बहुत ही मांग होने वाली है।
1: तो साथियों, अंकित सर ने बहुत अच्छे से कृषि वानिकी के विषय पर अपने विषय को रखा। अब आपसे हमारे आकाशवाणी के श्रोता को कुछ बातचीत करना हो, उनके मन में कुछ डाउट आ रहा हो, कुछ शंका आ रहा हो, उसका समाधान चाहिए, किसी युवा श्रोताओं को यदि इसका समाधान चाहिए या कृषि वानिकी के बारे में और कुछ उनको जानना है, तो किस प्रकार आपसे संपर्क कर सकते हैं?
0: जी, अभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है हमारे पास संपर्क का,
1: बिल्कुल,
0: तो वो मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है ANKITFORESTRY21@gmail.com।
1: तो सर ने ईमेल आईडी अपना बताया, अंकित सर मैं आपसे एक बार और आग्रह करूंगा कि अपना ईमेल आईडी हमारे युवा साथियों को, आकाशवाणी के श्रोताओं को फिर से बता दे, साथ ही आप अपना मोबाइल नंबर बता दें, तो आकाशवाणी के श्रोताओं आप सर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं।
0: जी, मेरा ईमेल आईडी है ANKITFORESTRY21@gmail.com। साथ ही मेरा मोबाइल नंबर है 9691431520 या 9691431520।
1: श्रोताओं, इसी के साथ घड़ी की सुइयां अब आपसे विदा लेने की ओर इशारा कर रही है। आपको यह विषय था कृषि वानिकी में करियर की संभावनाएं, आपको कैसा लगा? आकाशवाणी बिलासपुर को पत्र अथवा ईमेल के माध्यम से जरूर बताएं, और अब अपने साथी शुभम पाठक और इस विषय पर विशेष रूप से जो अपना आख्यान दे रहे थे, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के वानिकी विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर अंकित पांडे को आज्ञा दें। नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे क्रम करियर गाइडेंस, कृषि वानिकी में करियर की संभावनाएं। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अंकित पांडे, उनसे बात की थी हमारे साथी शुभम पाठक ने। आइए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की ओर। पिछले हफ्ते हमने आपसे कुछ सवाल पूछे थे, आइए जानते हैं उन सवालों के सही जवाब। हमारा पहला सवाल था, हाल ही में किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? साथियों, जवाब है उत्तराखंड। दूसरा सवाल हमने आपसे पूछा था, पंडवानी के महान लोक कलाकार तीजन बाई को भारत सरकार द्वारा कौन कौन से पद्म सम्मान दिए गए? साथियों, उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों सम्मान प्राप्त हैं। तीसरा सवाल हमने आपसे पूछा था, भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का सबसे कम उम्र में राष्ट्रीय डेब्यू का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? साथियों, जवाब है वैभव सूर्यवंशी। चौथा सवाल हमने आपसे पूछा था, राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र किन राज्यों में स्थित है? दोस्तों, राष्ट्रीय धान

0: अनुसंधान केंद्र कटक ओडिशा में स्थित है और इसके कई क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हैं जैसे झारखंड असम। हमारा पांचवा और आखिरी सवाल था, भारत की नई चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? दोस्तों जवाब है जनरल NS राजा सुब्रमणि। सही जवाब देने वाले हमारे दोस्तों के नाम हैं, रिंगनी से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, बोरसरा नैला से हैं प्रमोद कुमार, बीमा वैभवी विभूति, महासमुंद से जीतू ध्रुव, केवल किरण दिव्यांशी और खेमू ध्रुव, हाटापारा से हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा, बालोद से हैं देवशंकर नामुरिया, डॉली, बेबी पूजा, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर, ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी, तुषारणी और खुमेंद्र मसिया, गौरेला से हैं दुर्गा प्रसाद साहू, आरती, तखतपुर से हैं जयमुन कोल, दिलीप, रामायणी और नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरोल, अकलतरा से दिलीप चंदन, चोवाराम यदु, निखिल वसुंधरा और प्रांजल चंदन। आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों अच्छी सेहत जितनी ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है हमारे आसपास की खबरों के बारे में जानकारी रखना। आइए सुनते हैं वो सभी खबरें जिन्होंने इस महीने सुर्खियां बटोरी। तमिल गीतकार आर वेरामुथु 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से हुए सम्मानित। तमिलनाडु के वे तीसरे साहित्यकार हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ। प्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का 5 जुलाई 2026 को निधन हो गया। वो कपालिक शैली अपनाने वाली पहली महिला कलाकार थी। छत्तीसगढ़ के धावक अनिमेश कुजूर ने वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर चैलेंजर प्रतियोगिता फास्ट आर्म फास्ट लेग्स मीट में दूसरा स्थान हासिल किया और उन्हें रजत पदक से पुरस्कृत किया गया। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने 19 जुलाई 2026 को इतिहास रचते हुए जापान ओपन 2026 का महिला एकल खिताब अपने नाम किया। बढ़ते हैं राजकीय खबरों की ओर। मिस छत्तीसगढ़ 2026 का खिताब जीता लारिया गुप्ता ने, वो जांजगीर चांपा जिले से संबंध रखती हैं। श्री अरुण देव गौतम बने छत्तीसगढ़ के 12वें पूर्णकालिक DGP। धमतरी में बनेगा छत्तीसगढ़ का पहला मॉडल कार्बन कृषि जिला। इसके अलावा आइए अब सुन लेते हैं ये संदेश।
1: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
3: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
0: तो दोस्तों ये थी इस महीने की कुछ अहम खबरें। इसी के साथ दीजिए अपनी दोस्त महक को इजाजत। नमस्कार।

कार्यक्रम युवा जगत अभी हम सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हो रहे हैं। वक्त है कार्यक्रम विवरण का।

रात्रि 8 बजे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे संसद समीक्षा। शाम 6:20 और शाम 7 बजे सुनिएगा ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म में गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें, गीत सुने। शाम 7:20 पर होगी ग्राम सभा, जिसमें बेरा के गोठ में हम सुनेंगे मसाला वाले फसल के खेती में बहुतेत फायदा विषय पर चर्चा। साथ ही हम लेकर आएंगे सफल कृषक से भेंट और जानकारी होगी मंडी और मौसम की। रात्रि 8:15 पर खुशबू बिखरेगी रजनीगंधा की और रात्रि 9:15 से लेकर 11 बजे तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को।

कल प्रातः 6:30 पर सुनिएगा खेती की बात। सामयिक सुझाव होगा अदरक मा रोग नियंत्रण विषय पर। वचन स्वर होंगे चित्रलेखा तिवारी के। कार्यक्रम चिंतन होगा प्रातः 6:45 पर। विषय होगा छोटी बातें और जीवन में मिठास।

सुबह 8:30 पर हम लेकर आएंगे छत्तीसगढ़ी गीतों का कार्यक्रम माटी के स्वर। कार्यक्रम आपकी पसंद का आनंद लीजिएगा सुबह 10 बजे और नए तारा ने होगा सुबह 10:30 पर।

0: प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी हम लेकर आएंगे। सुबह 11 बजे और शाम 5 बजे होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ, जिसके प्रायोजक होंगे सीएफ वन विभाग सरगुजा। संदेश सोल्जर्स को हम सुनेंगे दोपहर 4 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। शाम 5:35 पर होगा कार्यक्रम महिला सभा, जिसमें सामूहिक चर्चा होगी बच्चों को सुनाए कहानियां विषय पर। साथ ही होगा क्रम लोक संस्कृति। शाम 7:20 पर होगी ग्राम सभा, जिसमें बेरा के गोठ में हम सुनेंगे फूल के खेतीला बढ़ावा देवा विषय पर चर्चा। और शाम 7:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, जिसमें हम सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। विषय होगा वर्षा ऋतु में पशुओं को होने वाली बीमारियां एवं उनके बचाव के उपाय विषय पर श्रोताओं के फोन पर पूछे गए सवाल, और इन सवालों के जवाब देंगे पशु चिकित्सा सेवाएं मुंगेली के संयुक्त संचालक डॉक्टर आर एम त्रिपाठी। साथ ही जानकारी होगी मंडी और मौसम की। श्रोताओं के समीक्षात्मक पत्रों पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी मिली को हम सुनेंगे रात्रि 8 बजे। और इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को है। आइए अब जुड़ते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से और सुनते हैं छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग मिनल तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रदेश में अब अग्निवीर सैनिक मल्ला पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वन रक्षक और जेल विभाग में प्रहरी के सोझे भर्ती में 10% के मिली आरक्षण। राज्य मंत्री परिषद के बैठका में लेगी फैसला। आरटीए के तहत प्रदेश के प्राइवेट स्कूल मन में दाखिला बर तीसरा और आखिरी चरण आज ले हो गए है शुरू। और प्रदेश के आने आने जिला में आज भिनसरहा ले होवत वर्षा के सेती कतको नंदिया नरवा उफान में हवे। मौसम विभाग करे है ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार ले। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिक मल्ला पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वन रक्षक और जेल विभाग में प्रहरी के सोझे भर्ती में 10% के आरक्षण मिली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अगुवाई में आज मंत्रालय में हुए राज्य मंत्री परिषद के बैठका में ये फैसला ली गई। एकर फायदा वो अग्निवीर मल्ला मिली जौन 4 के सेवा पूरा कर वैध सेवा प्रमाण पत्र संग सेवा मुक्त हुए हैं। राज्य सरकार के कहना है कि एकर ले अग्निवीर मल्ला रोजगार के नई मौका मिली और उखर अनुशासन और अनुभव के फायदा राज्य के सेवाला मिली। उन्हें एक आने फैसला में राज्य मंत्री परिषद किसान मल्ला खरीफ और रबी मौसम में खातु के बेरा राहत देवाय बर मंत्रिमंडली उप समिति के गठन ला मंजूरी दे है। उप मुख्यमंत्री ये समिति के अध्यक्ष रही। उन्हें कृषि सहकारिता और वित्त मंत्री घलो एकर सदस्य रही। शिक्षा के अधिक

अधिनियम आरटीई के तहत प्रदेश के प्राइवेट स्कूल मन में दाखिला बर तीसरा और आखिरी चरण आज ले शुरू हो गए हैं। पात्र अभिभावक आज ले 5 अगस्त तक आरटीई पोर्टल ले ऑनलाइन अर्जी और जरूरी सुधार कर सकी। 10 अगस्त ले 14 तारीख तक ऑनलाइन लॉटरी काउंसलिंग ले चुने गए लयिका मन के सूची जारी करे जाही और 17 अगस्त ले 25 अगस्त तक लॉटरी में चुने गए लयिका मन ला प्राइवेट स्कूल मन में भर्ती दे जाही। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू हकीन है कि सरकार मानसून सत्र के पहले दिन नीट परीक्षा पेपर लीक मामला में गोट बात पर तैयार है। संसद परिसर में पत्रकार मन ले गोट बात में उमन कहीन कि ये गोट बात पर नियम बनाए जाना चाहिए। उमन यहू कहीन कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र में चर्चा चाहत है। श्री रिजिजू हकीन की सरकार और विपक्षी दल ये मुद्दा में गोट बात खातिर बुलाए रही फिर उमन ऐसा किस्म के मुश्किल खड़ा करीन जेखर ले ऐसे लागत है कि ओमन गोट बात में शामिल नहीं होना चाहते। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कोतिले प्रधानमंत्री आवास घेराव के विरोध में आज रायपुर के शंकर नगर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी है प्रदर्शन करीन। ये दौरान भाजपा नेता कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन के घेराव करे बर निकलीन। प्रदर्शन के दौरान दोनों पार्टी के नेता आमने सामने आ गए। स्थिति ला देखा पुलिस आ वाटर कैनन और आंसू गैस छोड़ीन। पुलिस कोतिले लगाए गए बैरिकेड ला प्रदर्शन करैया मन तोड़े के प्रयास करीन। राजधानी रायपुर में 18 ले 20 सितंबर तक 14वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर रखे जाही। ये जानकारी आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव सायलर रायपुर लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि मंडल है भेंट के दौरान दीन। ये मौका में मुख्यमंत्री है कहीन कि ऐसा राष्ट्रीय स्तर के आयोजन ले उद्योग ला बढ़ावा मिली और रोजगार के नवा मौका मिली। राज्यपाल रमन डेका है वनवासी विकास समिति कोती ले जनजाति नोनी मन के पढ़ाई लिखाई और संस्कृति ला बढ़ावा देखा तीर बनाए सबरी वाचनालय के उद्घाटन करीन। ये मौका मा राज्यपाल है कहीन की सबरी वाचनालय एक दूरदर्शी पहल आए जन जनजाति नोनी मन बर पढ़ाई लिखाई और व्यक्तित्व निर्माण के केंद्र बनी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ले आज यूनिसेफ भारत के प्रतिनिधि सिंथिया मैक कैफरे है भेंट करीन। ये दौरान राज्य में महतारी और लयिका के स्वास्थ्य कुपोषण और विकास ऊपर गोट बात हुई। मुख्यमंत्री है स्वास्थ्य महिला और बाल विकास पंचायत और आदिम जाति विभाग समेत सबो संबंधित विभाग ला यूनिसेफ के तकनीकी मदद ले कार्य योजना तैयार करे के निर्देश दिन है। छत्तीसगढ़ राज्य जीएसटी विभाग 53 करोड़ रुपया के फर्जी बिलिंग और बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामला में मुख्य आरोपी विजय कुमार यादव ला गिरफ्तार करे है। अदालत है आरोपी ला 3 अगस्त तक न्यायिक रिमांड में भेज दे है। विभाग के मुताबिक आरोपी है दो ठीन फर्म ले करीबन 53 करोड़ रुपया के बोगस बिलिंग करके 9 करोड़ 54 लाख रुपया के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट आने आने फर्म ला भेज दी। राज्य जीएसटी विभाग मामला के जांच करत है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था। अब आगू बढ़बो बाचे समाचार को ती। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के आने आने जिला में आज भिनसरहा ले रुक रुक के वर्षा हुआ थे। वर्षा के स्थिति कतको नंदिया नरवा उफान में हवे। जांजगीर चांपा जिला के रिंगनी कुगदा और बिलारी कचंदा नाला के पुल ऊपर ले पानी बुहाते जेकर स्थिति ये रद्दा में 24 घंटा ले अवई जवई बंद हो गए है। सुरक्षा ला देखत पुल के दोनों कोती डीडीआरएफ के टीम ला तैनात करे गए है। यही जिला में वर्षा के स्थिति जमड़ी नाला उफान में हवे जिमा सिवनी बहेराडी रद्दा अवई जवई बंद है। उती कबीरधाम जिला के कुकदूर थाना क्षेत्र के गांव लोखान मा नरवा के तेज बहाव मा बुहाय ले एक बाबू के मौत हो गए जेखर शव आज आगर नंदिया के पेड़ मा फंसे मिलीस। पुलिस के मुताबिक मृतक अपन संगी संग नाला पार करत रहीस तभे तेज पानी के बहाव मा बुहा गए। इती कोरबा जिला के लेमरू थाना क्षेत्र मा उपनत सांचर नरवा ला पार करे के प्रयास मा एक मनखे दुपहिया गाड़ी संग बुहा गए। मंगलवार बिहनिया पुलिस और गांव के लोगन मन उखरसा घटना के जगह ले करीबन 3 किलोमीटर दूरिया बरामद करीन है। सरलग वर्षा के सेती शक्ति जिला के जय जयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मा नाली के गंदा पानी अस्पताल में खुसर गए है। यही बीच मौसम विभाग अवैया 24 घंटा मा बिलासपुर और रायपुर दुर्ग संभाग मा ऑरेंज अलर्ट जारी करत कुछ एक जगह मा भारी ले अति भारी वर्षा होए के चेतावनी दे है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी है बताइन है कि प्रदेश मा ये स्थिति अवैया 3 दिन तक बने रही। मुख्यमंत्री

0: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिले लोक कलाकार और प्रसिद्ध बांसवादक विक्रम यादव के परिवार वाले मल्ले फोन में गोड़ बात करके उखर स्वास्थ्य के जानकारी लीन। उमन भरोसा देवइन की राज्य सरकार उखर बने इलाज खातिर मदद करी। मुख्यमंत्री है राजनांदगांव कलेक्टर ला निर्देश दीन है कि वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सक मन के देखरेख में श्री यादव के बने इलाज करे जाए। श्री साय कहिन कि विक्रम यादव है अपन बांस वादन कला ले छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति ला देश और विदेश में चिन्हारी देवाए हैं। उमन उखर जल्दी ठीक होए के कामना करीन। उन्हें संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल है घलो विक्रम यादव के परिवार वाले मल्ले फोन मा गोट बात करत बने इलाज और मदद दे के भरोसा देवाइन है। युवा कार्य विभाग माई भारत पोर्टल में राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी के शुभारंभ करीन है। ये प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 15 अगस्त तक चली। एकरले देश भर के युवा मल्ला भारत के राष्ट्रीय ध्वज और ओखर महत्ता के संबंध में अपन समझ ल बढ़ाए के मौका मिली। बलरामपुर रामानुजगंज जिला निःशुल्क HPV टीकाकरण अभियान में छत्तीसगढ़ अव्वल जगह पाए है। यूविन प्रगतिशील रिपोर्ट के मुताबिक जिला 100% उपलब्धि दर्ज करे है। जिला में 8,700 ले ज्यादा नोनी मन के टीकाकरण कराएगी। कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी बताइन कि घर घर जाके स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र ले पात्र नोनी मन के चिन्हारी करके लक्ष्य ला पूरा करेगी। महासमुंद जिला में जिला स्तरीय वैद्य सम्मेलन रखेगी। सम्मेलन के उद्देश्य पारंपरिक स्वास्थ्य परंपरा और औषधि पौधा ला बढ़ावा देना रहीस। कार्यक्रम में बताएगी कि इस राज्य के 660 पारंपरिक वैद्यमन के काउंसिल ऑफ इंडिया ले प्रमाणन कराए जाही। एकर बर सबो 33 जिला में वैद्य सम्मेलन रखे जाही। कृषि विभाग बच्चर 2026 बर प्रतिष्ठित कृषक रत्न पुरस्कार खातिर पात्र किसान मन ले अर्जी मंगाए है। जो उन किसान मन एमा भाग लेना चाहते उमन तय अर्जी ला भर के अपन विकास खंड के बड़का कृषि विकास अधिकारी कार्यालय मा 31 जुलाई तक जमा करा सकत है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के भाटापारा हथबंद स्टेशन के बीच तीसर लाइन सेक्शन में NI के काम करे जाही। जेखर सेती काली और परंदिन 23 और 24 जुलाई के कुछ गाड़ी रद्द रही। एमा रायपुर बिलासपुर रायपुर मेमू बिलासपुर गेवरा रोड बिलासपुर मेमू कोरबा रायपुर कोरबा पैसेंजर और रायपुर गेवरा रोड मेमू पैसेंजर ट्रेन शामिल है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। प्रदेश में अब अग्निवीर सैनिक मल्ला पुलिस विभाग में आरक्षक वन विभाग में वन रक्षक और जेल विभाग में प्रहरी के सोझे भर्ती में 10% के मिली आरक्षण। राज्य मंत्री परिषद के बैठका में लेगी फैसला। RTE के तहत प्रदेश के प्राइवेट स्कूल मन में दाखिला बर तीसरा और आखिरी चरण आज ले हो गए है शुरू। और प्रदेश के आने आने जिला में आज भिनसरहा ले होवत वर्षा के सेती कतकुन नंदिया नरवा उफान में हवे। मौसम विभाग करे है ऑरेंज अलर्ट जारी। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हो रहे हैं। वक्त है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने का। कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने का पहला फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं राजकोट से जूली जगदीश गुजराती प्राची और प्रवीण पुजारी। जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश जायसवाल उर्मिला दीपक स्वाति जायसवाल। सहारनपुर से सैयद मसरूर शायना हसन नाजिया इब्राहिम। गुजरात से प्रवीण सोनी पूजा पायल और जगदीश जोहरी। भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर प्रमिला आसमा श्याम कुंवर। लुतरा कमरिया से नकुल श्याम मोहम्मद अकरम मोहम्मद अजीज। लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल दलजीत सिंह राजदीप गुरनूर गुरलाल और अविराज सिंह। लोहारी डी जिला कवर्धा से अशोक कुमार साहू लीलेश्वरी लालिमा खुशांत और निशांत साहू। गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान साइमा नवाज हसन नवाज अहद मिफरा नवाज और चाहत। पलारी से नितेश कुमार देवांगन दुर्गा प्रसाद पराग पूनाराम और कृष्णा देवांगन। लुतरा खमरिया से अकरम अमीन अर्श और आतिका। डोंडी लोहारा बालोद से देवशंकर तामुरिया अजय। सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद हबीब और इरफान मोहम्मद। बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन खुशबू तारा कौशल सेन। दिल्ली से आसमा परवीन आमना और वली भाई अंसारी। सावंतपुर से ऋषि सेन रितेश कंचन माही सेन। बरकाकाना से अफजाल ताज शाहीन सुल्ताना सोनू तस्नीम निपी साहनी और मोहम्मद अफजल मलिक। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे नंदा हनुमान बोड़खे। पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा। लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू पंकज तिरुपति साहू।

लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां, टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता प्रियंका प्रशांत, प्रियम बामिका और वाणी थांदी, फिल्म सिटी मुंबई से अदीबा नाज, फातिमा नसरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा सुलोचना, चेतन भगत, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन अपार ढिंगिया, पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल यशस्वी, अन्नपूर्णा वर्मा, पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीना विनय शंकर पांडे। आइए आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं के और वसुंधरा दास की आवाजों में मैं हूं ना फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीतकार हैं अनु मलिक।

कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने में अभी हमने सुना के और वसुंधरा दास की आवाजों में मैं हूं ना फिल्म का गीत। कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अली अजमत के गीत और संगीत से सजा हुआ गीत। फिल्म का नाम है पाप और इस गीत को लिखा है साबिर जाफर ने। इस गीत की मिलीजुली फरमाइश हमें ईमेल के माध्यम से भेजने वालों के नाम है नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि और शीतल, मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमनदीप, वीरमगाम राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता, बिलाईगढ़ से खीकराम देवांगन, रेनू, रजनी, प्रियंका देवांगन, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिश कौर, तन्मय गजभिये, मजनू का टीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु, सागर बालूजा, सोंगा मगरलोड से फणेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित देवी करानी, गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार चंदन, पोड़ी भाटा कलतरा से दिलीप चंदन, चोवाराम यदु, निखिल वसुंधरा और प्रांजल चंदन, मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश राहुल साहू, कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा प्रतीक्षा, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, गर्व और हिमाक्ष, पांडरकवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री, धनश्री बुरांडे, बठिंडा पंजाब से परेम सिंह जोड़ा, मंजीत, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजोत, तीव्रता डबरीपारा जिला कोरबा से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया, जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र मरकाम, मोहन सिंह, सहोदरी बाई, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई, चंद्रपाल मरावी और लक्ष्मी थदवानी, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना चैतन्य, मेघा मस्कीन, बेंगलुरु जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे, महसूल सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहां नहाज, तलत, फरहत, रिफत, नुजहत, साजिया, शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज, चिनवीरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद और कालिंदरी लहरे, तेलंगाना भोंगिर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन और मोहम्मद यूसुफुद्दीन, रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लाल गिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या और सुच्चा सिंह, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, पीयूष कुमार और रोहित राज, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जसी, सीता और गीता, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन, कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई। आइए आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं पाप फिल्म का ये गीत।

0: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
1: कार्यक्रम में मिलकर एक गीत सुने के इस अंक का अगला और अंतिम फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं। तखतपुर से मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया, साजिद शाहिद। सांदुल शहर राजस्थान से रामकुमार रिवाड़, चंद्रकला। मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश निवान, सौरभ, शायना, मैंडी शर्मा। मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून। गुमला झारखंड से

नजम उल हुदा, एसएम जावेद और शगुफ्ता अंजुम, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव भानु, प्रिया माधुरी और किरण, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा रजत, मंजू और मयंक भाटिया, चिरमिरी कुरासिया कालरे से अनुभव कालिंदरी, निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत, करमजीत कौर, बहादुर नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाणकर, टुक टुक प्रिंस, एकांश, सुमित और ध्वनि, पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति, रान, गुरमंत कौर, मनु, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो, तेलहारा से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा सुजाता पोहरकर, कांकेर जिला भानबेड़ा मुंगवाल से भारत राम पड़ोटी, जयंती, हेमंत, उमंग और मोक्ष पड़ोटी, करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और ईशप्रीत शर्मा, कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत, संचित वायाड़, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली, सरवद और सानवी देशमुख, दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नगमा, गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक, जयश्री, ऋषभ और ऋचा देवांगन, कैदी मोड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा ऋषभ सिंह, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली और धनंजय कटनकर, दिल्ली से सोनम सना और अदीबा, मलौट से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू, गुड्डू जाजोरिया, दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े, जालंधर से रोशन जहां, मन्नत, इशरत और मक्कर जहां, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी। आइए आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत, संगीत है जतिन ललित का, फिल्म का नाम है चलते चलते और आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक के गाए चलते चलते फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने का ये अंक अब यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने को है। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से और सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
4: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
5: क्यों?
4: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
6: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
7: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
8: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
7: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
8: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
7: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
8: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
6: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
0: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में अग्निवीर सैनिकों को पुलिस, वन और जेल विभाग में होने वाली सीधी भर्ती में 10% आरक्षण दिया जाएगा। आरटीई के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए तीसरा और अंतिम चरण आज से शुरू। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण अनेक नदी नाले उफान पर। कोरबा और कबीरधाम जिले में तेज बहाव में बह जाने से 2 लोगों की मृत्यु। और राज्य जीएसटी विभाग ने करीब 9.5 करोड़ रुपए के टैक्स घोटाले के मुख्य आरोपी को दुर्ग के उतई से किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वन रक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
4: राज्य की तृतीय श्रेणी के पदों पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वन रक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में अग्निवीर सैनिकों के लिए 10% आरक्षण के प्रावधान करने हेतु छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम 2026 बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
3: श्री साव ने बताया कि इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवा मुक्त हुए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि इससे अग्निवीरों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और उनके अनुशासन तथा अनुभव का लाभ राज्य की सेवाओं को मिलेगा। वहीं एक अन्य फैसले में राज्य मंत्रिपरिषद ने किसानों को खरीफ और रबी मौसम में उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन को मंजूरी दी है। यह समिति उर्वरकों की उपलब्धता, आपूर्ति और वितरण की समीक्षा कर राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव देगी। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री आवास घेराव के विरोध में आज रायपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शंकर नगर क्षेत्र में स्थित कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कल दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले जाने के विरोध में आज रायपुर में भाजपा कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। इस बीच पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी भी हुई। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के कारण अनेक नदी नाले उफान पर हैं। जांजगीर चांपा जिले के रिंगनी कुकदा और बिलारी कचंदा नाला स्थित पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके कारण इस मार्ग पर 24 घंटे से आवागमन बंद है। सुरक्षा के मद्देनजर पुल के दोनों ओर DDRF की टीम को तैनात किया गया है। इसी जिले में बारिश की वजह से जमड़ी नाला भी उफान पर है, जिससे सिवनी बहेरा डी मार्ग पर आवागमन बंद हो गया है। उधर कबीरधाम जिले के कुकदूर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लोखान में नाले के तेज बहाव में बहने से एक बालक की मृत्यु हो गई। मृतक का शव आज आगर नदी के एक पेड़ में फंसा मिला। पुलिस के अनुसार मृतक अपने दोस्त के साथ नाला पार कर रहा था, तभी वह तेज पानी के बहाव में बह गया। वहीं कोरबा जिले के लेमरू थाना क्षेत्र में उफनते सांचर नाले को पार करने की कोशिश में एक युवक बाइक समेत बह गया। मंगलवार सुबह पुलिस और ग्रामीणों की संयुक्त तलाश में उसका शव घटनास्थल से करीब 3 किलोमीटर दूर बरामद किया गया। लगातार बारिश के कारण शक्ति जिले के जयजयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नालियों का गंदा पानी अस्पताल परिसर में घुस गया। डिलीवरी रूम, जनरल वार्ड, स्टोर, इंजेक्शन कक्ष, ड्रेसिंग रूम सहित कई हिस्सों में लगभग 1 फीट पानी भर गया। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कुछ स्थानों पर भारी से अति

भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि प्रदेश में यह स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहेगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए तीसरा और अंतिम चरण आज से शुरू हो गया है। पात्र अभिभावक आज से 5 अगस्त तक आरटीई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन और आवश्यक संशोधन कर सकेंगे। 10 अगस्त से 14 अगस्त तक ऑनलाइन लॉटरी काउंसलिंग के माध्यम से चयनित बच्चों की सूची जारी की जाएगी और 17 अगस्त से 25 अगस्त तक लॉटरी में चयनित बच्चों का संबंधित निजी विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित कर लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य जीएसटी विभाग ने करीब 9.5 करोड़ रुपए के टैक्स घोटाले के मामले में मुख्य आरोपी विजय कुमार यादव को दुर्ग जिले के उतई से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 3 अगस्त तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। विभाग के अनुसार आरोपी ने 2 फर्मों के माध्यम से लगभग 53 करोड़ रुपए की बोगस बिलिंग कर 9.54 करोड़ रुपए का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट विभिन्न फर्मों को हस्तांतरित किया। राज्य जीएसटी विभाग मामले की जांच कर रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज यूनिसेफ भारत की प्रतिनिधि सिंथिया मैक कैफरे ने मुलाकात की। इस दौरान राज्य में मातृ और शिशु स्वास्थ्य, कुपोषण और बच्चों के समग्र विकास पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास, पंचायत और आदिम जाति विकास विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग से संयुक्त कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में मातृ और शिशु मृत्यु दर तथा कुपोषण कम करने पर जोर दिया गया। राजधानी रायपुर में 18 से 20 सितंबर तक 14वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को रायपुर में लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात के दौरान दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे राष्ट्रीय स्तर के आयोजन से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा तथा निवेश, नवाचार और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि इस आयोजन से स्थानीय उद्यमियों को नई तकनीक, राष्ट्रीय बाजार और व्यापार विस्तार के बेहतर अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाकार और प्रख्यात बांस वादक विक्रम यादव के परिजनों से दूरभाष पर चर्चा कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनके बेहतर उपचार के लिए हर संभव सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में श्री यादव का समुचित इलाज सुनिश्चित किया जाए। श्री साय ने कहा कि विक्रम यादव ने अपनी बांस वादन कला से छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को देश और विदेश में पहचान दिलाई है। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया। यह प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 15 अगस्त तक चलेगी। इससे देश भर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। कृषि विभाग ने वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित कृषक रत्न पुरस्कार के लिए पात्र किसानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक किसान निर्धारित आवेदन को पूर्ण रूप से भरकर अपने विकास खंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय में 31 जुलाई तक जमा कर सकते हैं। बलरामपुर रामानुजगंज जिले ने निःशुल्क एचपीवी टीकाकरण अभियान में छत्तीसगढ़ में पहला स्थान हासिल किया है। कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने बताया कि घर घर संपर्क, स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पात्र किशोरियों की पहचान कर यह लक्ष्य पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि यह अभियान किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के भाटापारा हदबंद स्टेशन के बीच तीसरी लाइन सेक्शन में ऑटो सिग्नलिंग कमीशनिंग के लिए एनआई का कार्य किया जाएगा। इसके कारण कल और परसों यानी 23 और 24 जुलाई को कुछ गाड़ियां रद्द रहेंगी। इनमें रायपुर बिलासपुर, रायपुर मेमू, बिलासपुर गेवरा रोड बिलासपुर मेमू, कोरबा रायपुर कोरबा पैसेंजर और रायपुर गेवरा रोड मेमू पैसेंजर ट्रेन शामिल है। इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने आरा दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस को पुनः बहाल कर दिया है। वहीं रेलवे ने पटना और चरलपल्ली के बीच चल रही स्पेशल ट्रेन का परिचालन 18 सितंबर तक बढ़ा दिया है। महासमुंद जिले में जिला स्तरीय वैद्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य पारंपरिक स्वास्थ्य परंपरा और औषधीय पौधों के संरक्षण को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में बताया गया कि इस वर्ष राज्य के 660 पारंपरिक वैद्यों का क्वालिटी
काउंसिल

0: इंडिया के माध्यम से प्रमाणन कराया जाएगा, जिसके लिए सभी 33 जिलों में वैध सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। कांकेर जिले की सभी ग्राम पंचायतों में आगामी 30 जुलाई को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। इसमें ग्राम पंचायत विकास योजना का अनुमोदन किया जाएगा। कांकेर जिले के छोटे बेठिया थाना क्षेत्र के ब्रेहबेड़ा के जंगल में संयुक्त सर्चिंग अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने लगभग 5 किलोग्राम का प्रेशर कुकर आईडी बरामद किया, जिसे बम निरोधक दस्ते की टीम ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा पुलिस ने नकली नोट से शराब खरीदने की कोशिश करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 5-5 सौ रुपए के 4 नकली नोट बरामद किए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और बलरामपुर जिले के शारदापुर गांव में खेत की जुताई के दौरान ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में अग्निवीर सैनिकों को पुलिस, वन और जेल विभाग में होने वाली सीधी भर्ती में 10% आरक्षण दिया जाएगा। आरटीई के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए तीसरा और अंतिम चरण आज से शुरू। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण अनेक नदी नाले उफान पर। कोरबा और कबीरधाम जिले में तेज बहाव में बह जाने से 2 लोगों की मृत्यु। और राज्य जीएसटी विभाग ने करीब 9.5 करोड़ रुपए के टैक्स घोटाले के मुख्य आरोपी को दुर्ग के उतई से किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
2: एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। श्रोताओं, कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 23 जुलाई को स्टूडियो में पशु चिकित्सा सेवाएं मुंगेली के संयुक्त संचालक डॉक्टर आरएम त्रिपाठी उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा वर्षा ऋतु में पशुओं को होने वाली बीमारियां एवं उनके बचाव। और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा वर्षा ऋतु में कुत्तों में होने वाली आक्रामकता या कुत्तों के काटने से होने वाली रेबीज की बीमारियों से बचाव के उपाय। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665 92 और 3100026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 23 जुलाई और 24 जुलाई को शाम 7:30 से 8 बजे के बीच किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7 बज रहे हैं। आइए चलते हैं कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने के अंतिम और शेष भाग की ओर। कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का इस अंक का पहला फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश प्रगेश, प्रीतेश संघई, यवतमाल से राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन रोशनी मनवर और इनके साथ है प्रियांशी, भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र दुष्यंत राघवेंद्र साहू, यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षता लोखंडे, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे, वसंतराव भोजने, निवृत्ति आड़ोकर, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन मंगलाबेन और राजेंद्र शाह, धरती सरगांव से चंदुलाल पटवा, सुनीता हर्ष, विनीत कृष्टि पटवा, वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश, दीपेश वर्मा, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गम्हाणकर, सरिता प्रिंस, एकांश गम्हाणकर, पैठण से सुरेश जाधव, अनिता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल सिया जाधव, कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा अमित, हैप्पी राय, दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अलकमा खत्री, अल्तमश, रमेश गौड़ और शादाब खत्री, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसौलिया, लसोड़िया पाता जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी, यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा श्राव्या रामटेके, बठिना पाटन से परमेश्वर साहू, राजबत्ती, काजल पूर्वी, हेजल, राजेश, रेशमा साहू, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, छोटी

बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन। नागरकोरा जिला राजनांदगांव से बबलू साहू, जामन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा आराध्या साहू। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल, पूजा परिहार। रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका दले। आइए आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं गुलजार का लिखा हुआ गीत। आवाज लता मंगेशकर की है, फिल्म का नाम है माचिस और संगीतकार हैं विशाल।

कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुनने में अभी हमने सुना लता मंगेशकर की आवाज में माचिस फिल्म का गीत। कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार दूधी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र सिंह दूधी, रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र जोई यामिनी उमा तिवारी, हांसी से राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू बबीता मिगलानी और सुभाष योगी, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, तान्या नारंग, धुर्राबांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन, युवराज साहू, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी, खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार, मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, तेलंगाना निजामाबाद से शेख हल्ला बख्श, राबिया शेख और शेख रहीम मुन्ना, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू, पप्पी भाटिया, राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, बुल्ढाणा वड़चिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई, दीपाली और श्लोक कुमार, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम राकेश कुमार, लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी साहिल भारती बघेल, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल पूजा परिहार, इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता गणेश, कार्तिक परी खर्चे, स्वाति, प्रयाग चौधरी, देवी चौधरी और मालती चौधरी, भाटापारा से हमारे साथी हैं बचकामल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चोवराम वर्मा, सूरज बोरकर, नारायण यदु और भुवन कामरी, रसीडा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या कीर्ति, डिकेश वासु, डॉली और पूर्वेश साहू, नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नावकर, निर्मला, विशाल नावकर, गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु गोदारा, रायपुर से नीलू मेघ, वंदना कुमार, बिट्टू कुमार, पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत और अर्पिता, राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण। आइए आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं भूल भुलैया फिल्म का ये गीत जिसे लिखा है समीर ने, प्रीतम का संगीत है और इस गीत को गाया है नीरज श्रीधर ने।

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं। जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा है और संगीतकार हैं आर डी बर्मन। इस गीत की मिलीजुली फरमाइश हमें ईमेल के माध्यम से भेजने वालों के नाम हैं: कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश लोकेश आशीष रवि शनि रेयांश कान्हा और आदित्य देवांगन, बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति रामशरण चंद्रेश कुमार चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश प्रियंका मन्नत गुरकीरत गुरशब्द राहुल, जालंधर से संदीप मक्कड़ ज्योति मन्नत भरत कमल साहनी, गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन प्रभा देवी लक्की विक्की नानू रविन्द्र रौनक सेन, सहारनपुर से सुरेश नारंग आशु सोनाली नारंग, बरेली कैंट चनहेटी उत्तर प्रदेश से विनेश कुमार रागिनी और मुस्कान, सरगांव से राजेश वर्मा हीरोमन पल्लवी राजेश्वरी वर्मा, खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा घुरनी करिश्मा सोमार साय कलेश्वर सिंह सुखराम हीरामणि और ऐश्वर्या पैकरा, भिलाई तीन चरौदा से नौशाद अहमद सिद्दीकी हमीदून जिशान शहनवाज अहमद सिद्दीकी, बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू बीमा वैभवी विनोद विभूति अंशु बबली और प्रियांशु साहू, बिलासपुर से चनुलाल श्रीवास अनिता पुष्पा अंजू योगिता रज्जन साहू हेमंत नामदेव धर्मदास वाधवानी, भाटापारा से दानसिंह रावत पद्मिनी रावत नीरज शुभम सौरभ रावत, ग्वालियर से सुरेश खुराना किरण लाविया आरव एस के पप्पी, मोन्ताला महाराष्ट्र से विजय सुरड़कर रत्नमाला ओम कुमार सुरड़कर, छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फुलवाले दुखनी सदफ आरजू जूही इकबाल इमरान अहमद आमना नसरीन आसमा परी राबिया मंतशा आशु अहमद फुलवाले, दिल्ली से प्रमिला हेमा और अंतरा सिंह, डुमराव से वलीउल्ला अंसारी सोनम वली और आसमा वली। आइए सुनते हैं आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर 1942 लव स्टोरी फिल्म का ये गीत।

कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के गाए 1942 अ लव स्टोरी फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने अब यही समाप्त होता है। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7:20 हो रहे हैं। वक्त है कार्यक्रम ग्राम सभा का।

ग्राम सभा सुनैया जम्मो संगवारी भाई बहनी मन ल फुलवा बहनी के माया भरे राम राम जय जोहार। किसान भाई बहनी मन तो बिप्त्याय रथे बूता मा और अभी के घनी में पानी गिरत है तो बूता हाउ बाढ़ गए। हमर किसान भाई बहनी मन सरलग धान और साग भाजी के खेती तो परंपरागत करते हमें, जैसन के देखे जाए तो छत्तीसगढ़ के जलवायु मसाला उत्पादन करे बर बहुत बढ़िया है, अनुकूल है। हमर छत्तीसगढ़ के किसान मन प्रमुख रूप में हल्दी अदरक लहसुन धनिया के खेती करते और यही खेती में बहुत मुनाफा पाते। पारंपरिक खेती ले ज़्यादा कमाई धान के तुलना में मसाला जैसन के धनिया के खेती में प्रति एकड़ 50,000 तक मुनाफा कमावत है। किसान भाई मन कम लागत और कम पानी में ठंडा के मौसम में धान लुवाई के बाद दिवाली ले मार्च तक गेहूँ चाहे चना के जगह में धनिया मेथी सौंफ के खेती बहुत कम पानी में और कम लागत में इमन हो जाते। और राज्य में सबले ज़्यादा पैदावार छत्तीसगढ़ में हल्दी के उत्पादन होते। संगी हुआ हल्दी के दो तीन किस्म होते, आमी हल्दी काली हल्दी प्यूरा हल्दी। तब ये हल्दी मनला आप मन खचित लगावा, इमा ज़्यादा पानी के आवश्यकता नहीं हुए और पैदावार हा बहुत बढ़िया होते और खातू घलक कम लगते। इमा बिलासपुर बलरामपुर मुंगेली और कुंडा गांव कती आजकल देखिया था काली मिर्च बटुआ मरीच के घलौक खेती।

0: ही कराथे। अंजवाइन मसाला फसल घलो लगावत हे, नगदी फसल के रूप म किसान मन एला कमावत हे। लगा के मसाला के खेती छत्तीसगढ़ के किसान मन बर ठंडा के समय म बढ़िया होते, उपयुक्त होते। खेत के जोताई करे बर कतारबद्ध तरीका ले मसाला फसल ला 20 सेंटीमीटर के दूरी म लगाना चाहिए। मसाला फसल बर डोमट माटी बढ़िया रथे, भुरभुरा माटी फसल लगाए बर ये मन बढ़िया रथे। और गोट बात करबो संगी व संदेश ला सुने के पाछू।
1: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा

0: के दूरी में लगाना चाहिए। मसाला फसल बर डोमट माटी बढ़िया रथे, भुरभुरा माटी फसल लगाए बर ए मन बढ़िया रथे। और गोट बात करबो संगी व संदेशा ला सुने के पाछू।
1: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडा गांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी, मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों, क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
2: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
3: आगे सैनरी, नहीं झुमके
4: ना, पहले बचत,
3: पहले झुमके।
4: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
3: लेकिन झुमकों का क्या,
4: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
5: आरबीआई कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: हमन गोट बात करत रहें संगी हुआ मसाला फसल के खेती बर। तो मसाला फसल के खेती बर बीजा लगावत समय एक एक दाना ही बीजा ल डालना चाहिए। मसाला फसल ह 90 दिन में आसानी ले तैयार हो जाते संगी हुआ। जतके ठंडा रही फसल ह उतके अच्छा होते। मसाला फसल के खेती के समय बारिश या आंधी चले में फसल के नुकसान होते। ठंडा के समय में मसाला फसल मन ला पानी कम लागते, पानी के आवश्यकता कम होते फसल बर। मसाला फसल के खेती में ये बात के चेत करना चाहिए हमार किसान भाई बहनी मन ला कि हफ्ता में एक चाहे दो पैत पानी सिंचाई करना चाहिए पानी के। मसाला फसल के जैविक खेती करे बर गोबर के खातु, केचुआ खातु के परत लेयर बिछा के एकर संगे संग नाम मात्र के यानी थोड़ की रसायन के उपयोग घलाव कर सकत हवा। छत्तीसगढ़ में मसाला फसल हरदी, मिर्चा, अदरक, लहसुन, धनिया उत्पादन करैया किसान मन ला उद्यानिकी विभाग और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के माध्यम ले लागत ले 50% अधिकतम 10,000 ले 50,000 प्रति हेक्टेयर अनुदान दिए जाते यानी सब्सिडी मिलते। कंद और प्रकंद मसाला फसल मन ला 50,000 प्रति हेक्टेयर अनुदान मिलते। और मसाला प्रसंस्करण विपणन मसाला प्रसंस्करण इकाई लागत 40% अधिकतम 10,00,000, एकर अलावा छटाई है, ग्रेडिंग और पैकिंग इकाई पर 35-40% तक सब्सिडी के प्रावधान है। तो हमार किसान भाई बहनी मन मसाला फसल के रकबला खचित बढ़ावा। और ये तो हो जानकारी संगी हुआ मसाला फसल के खेती में बहुत तेज फायदा है। और अब सुघर असन एक ठन गीत सुना थन जेल को कई काटाओ गीत है और स्वर दे है गंगा बाई मन।

संगे सुघ्घर गीत लगाने गात रहीन है गंगा बाई और संगवारी मन निक लागी से संगी हुआ देखा डुआ डुआ पानी में कोकाई कांटा चलावा थे और ऐसन है हम मन ला पानी ला डुआ डुआ करके बचत करना है अभी पानी गिरा थे तो निक लागा थे फिर हम अल्लाह जतन करना है पानी के पानी है तभी जिंदगानी है संगी हुआ तब पानी ला हम अल्लाह बरसात के कैसन हो करके सहेज के जतन के राखे ला पड़ी चाहे कुआं बनवावा चाहे कच्चा कुआं बनवावा चाहे टंकी बनवावा एमा जतन के राखिया तभे हमर जीवन हा आगे चल ही अब किसान भाई मन के फसल हा आगू बढ़ी। अब एक ठन सूचना है संगी हुआ हरेक गुरुवार और शुक्रवार के संझा 7:30 में फोन इन में आधारित कार्यक्रम प्रसारित करे जाते एमा किसान भाई कृषि उत्पाद पशुपालन मुर्गी पालन मछली पालन और अपन स्वास्थ्य संबंधी समस्या के समाधान पाए खातिर विशेषज्ञ मन लंग फोन में सवाल पूछ के समाधान पाथे। यही कड़ी में बृहस्पत के दिनांक 23 जुलाई 2026 के स्टूडियो में पशु चिकित्सा सेवाएं मुंगेली के संयुक्त संचालक डॉक्टर आर एम त्रिपाठी उपस्थित रही। इखर लांग बिहनिया 10:30 ले 11 बजे तक सवाल पूछे बर विषय रही वर्षा ऋतु में पशुओं को होने वाली बीमारियां एवं उनके बचाव और बिहनिया 11 बजे ले 11:30 तक विषय रही वर्षा ऋतु में कुत्तों में होने वाली अक्रामता कुत्तों के काटने से होने वाले रेबीज के बीमारियों से बचाव के उपाय ए विषय ले संबंधित समस्या और जिज्ञासा के समाधान पाए खातिर हमार फोन नंबर है आप मन नोट कर लेवा 2665 92 और दूसरा यह फोन नंबर है 3100026। तब फोन लगाए के पहली हमार बिलासपुर के स्टडी कोड है 07752 तक खचित फोन लगा हा। अब एक कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग के प्रसारण 23 जुलाई 2026 और 24 जुलाई

0: 26 के संध्या 7:30 ले 8 बजे आप मन सुन सकत हा सूचना सिरागे। अब कार्यक्रम मा आगू बढ़बो संगी हुआ, कहे के अब बेरा है भेंटवार्ता के। आज सफल कृषक के भेंट क्रम में जानबो सुघर खेती के संगे संग बागवानी और पशुपालक भाई इमन मास्टर है पढ़ाए तक जाते। इमन है श्री राम प्रसाद साहू, ग्राम पंचायत खैरा डगनिया, विकास खंड बिल्हा, जिला बिलासपुर के। इंकर लंग बढ़िया गोठ बात करते है हमार सहयोगी नंदू भैया मन, तो आवाज सुनन कले चुप ए भेंट वार्ता ला।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। संगवारी हो, आज के हमन गोठ बात मल आए हवन गांव खैरा डगनिया और सफल कृषक से भेंट मा। आज आप मन करा भेंट कराबो हमन शिक्षक के रूप मा और सफल व्यक्तित्व के धनी से हमन गोठ बात कराबो और समाज सेवी घलाव है। पेड़ पौधा रहे कि रुख रहे रहे सब के बारे मा एक जागरूकता लिए हुए सफल कृषक से हमन आज इनकर गोठ बात कर आए हन और सर जी से भेंट करत हन हमन। सर जी जय जोहार, राम राम, प्रणाम।
2: जय जोहार, राम राम।
1: नाम बताओ गांव के नाम सर।
2: मोर नाम राम प्रसाद साहू है जी। मैं खैरा गांव में रहता हूँ जन्म से। फिर पढ़ाई के बाद 10वीं तक पढ़ाई मैं यहीं के स्कूल में करे डगनिया के
1: जी,
2: शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला डगनिया। ओकर बाद 11वीं कक्षा में है शासकीय बहुद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला बिलासपुर से करे
1: जी।
2: फिर वही समय शिक्षक के इंटरव्यू निकली नौकरी पर
1: जी,
2: इंटरव्यू दे तुरंत वही साल सिलेक्शन हो गए
1: जी।
2: और अपन कार्यकाल में मैं नौकरी के साथ साथ खेती भी महत्व दिए
1: जी।
2: स्वयं स्कूल समय के पूर्व खेत जात रहे, उकर बाद बिल्कुल फिक्स समय में आके नहाना, फिर पूजा पाठ करना और समय 15-20 मिनट पूर्व स्कूल पहुंच जाना
1: जी।
2: स्कूल से आए के बाद फिर खेत तरफ थोड़ा सा घूमे घामे देख रेख करे जाना।
1: बहुत बढ़िया जानकारी बताते सर जी। मन से तो हमन गोठ बात भेंट मुलाकात करते रहे, फिर आज आकाशवाणी के माध्यम से आप सबो झीन मन घलाव सुघर जानकारी पाओ। गुरु जी मन टीचर के रूप में घलाव अपन सेवा दीज और परिश्रमी के संगे संग जौन खेती कति घलाव आगे बढ़ीज और आज हमार गांव क्षेत्र में बढ़िया बड़का किसान हवे। तो संगवारी हो हमन गोठ बात करबो और खेती के विषय में चर्चा करत हन। तो सर जी अभी खेती किसानी में कतेकन के खेती आप मन करथो?
2: अभी हमन करीब करीब 22-23 एकड़ के खेती करथन। तो एमा मैं अपन सेवा काल में अपन पूर्वज द्वारा मिले हुए खेती से
1: जी
2: और कुछ नौकरी से पैसा बचा के नया नया खेत लेत गए। ओकर कुछ समय बाद लड़का भी मन तैयार होके पढ़ लिख के उहू मन खेती में रुचि लिहिन, ट्रैक्टर लिहिन, अवश्य करत ट्रैक्टर और अन्य साधन के माध्यम से करीब करीब 22-23 एकड़ जमीन बनीस और 22-23 एकड़ में खेती हमन स्वयं करथन और बहुत ही अच्छा खेती होते आधुनिक खेती
1: जी। बहुत बढ़िया बताया सर। आधुनिक खेती के बात करबो हमन तो खेत में जोन फसल लगा था उकर बर कौन प्रकार के तैयारी में साधन उपयोग करता सर जी?
2: सबले पहली तो हमन खेत में गोबर खाद डालथन। गोबर खाद ले बीछे के बाद चारों तरफ बराबर बीछथन, खेत में सब जगह पड़ना चाहिए
1: जी।
2: उकर पश्चात उकर जुताई करथन
1: जी।
2: जुताई पहली जुताई करे के बाद कुछ समय छोड़ देथन, फिर जब वर्षा होते
1: जी
2: या बोरिंग में से पानी पलो के दूसरा जुताई करथन
1: जी,
2: फिर ओला छोड़ देथन और जब थरहा तैयार हो जाते तो फिर ओमर रोपाई के काम शुरू कर देथन
1: जी,
2: आधार खाद डाल के। और हमन आजकल गोबर खाद में ज्यादा प्राथमिकता देथन
1: जी,
2: नेचुरल खेती और आंशिक रूप से ये रासायनिक खाद के प्रयोग करथन
1: जी। बहुत बढ़िया हमर किसान संगवारी मनला और भाई बंधु मनला जानकारी बतात हो सर जी। आओ जानबो जौन ये गोबर खातु हवा जैविक खातु और रासायनिक खातु तो एमा का अंतर रही थे इहुल बताओ सर।
2: जैविक खाद से उत्पादन में कम नहीं हुए लेकिन आजकल रासायनिक खाद डाले की आदत पड़ गए है तो ओकर से रासायनिक खाद से आगे चल के जो खेत में डालोगे वो पेट में जाएगा, तरह तरह की बीमारी उत्पन्न हो रहे हैं। अतः समस्त

0: कृषक बंधु से मोर निवेदन है कि वे जैविक खाद ला बढ़ावा दें और रासायनिक खाद डाले बर कम करें।
1: खेती किसानी के हमन फसल जब लेथन सर जी तो ओमा हमला चुनौती के सामना करना पड़ते, रोग राय आ जाते, कभू कभू देखथन तो प्राकृतिक रूप से भी नुकसान होए लगते, तो ओकर बर कौन प्रकार की चेत किसान भाई मन ला करना चाहिए?
0: ओकर बर अभी तो अधिकांश किसान मन रासायनिक कीटनाशक के उपयोग करते है, लेकिन यदि हम प्राकृतिक ढंग से कनेर के फल है, आंख है, धतूरा है, गोमूत्र है, एक ड्राम में सड़ो के गर्म करके स्प्रे किए जाए तो वह बहुत लाभदायक होते। हम प्रयोग करके गोमूत्र के देखे हैं, गोमूत्र से बंकी के बीमारी है कट जाते
1: जी।
0: लेकिन पब्लिक मन वो खरीदी वाला दवाई से, रासायनिक दवाई से ज्यादा प्रभावित है, तो मुर्गोट के सुन के उनका जरूर प्रेरणा लेना चाहिए ताकि गोमूत्र मुफ्त में उपलब्ध होते और उसका दुष्प्रभाव भी नहीं पड़े, जबकि कीटनाशक के दुष्प्रभाव पड़ते।
1: बढ़िया जानकारी बताया हो सर जी, हमन गोठ बात मा किसानी कति आओ आबो, फिर आप मन शिक्षक के रूप में बढ़िया सेवा दिया हो और हमूला पढ़ाए हो नानपान ले, और पेड़ पौधा के प्रति आप मन के बहुत रुचि हवे, जौन हमला प्रमाण के रूप में हमन तलाव पार हवे और अन्य खेत खार है उमेर देखे ल मिलते, तो पेड़ पौधा के कति कैसे आप मन के रुझान गई?
0: पेड़ पौधा के रुझान मोर बचपन से ही रहीस
1: जी।
0: काहे हमन पढ़ाई में जब पढ़ें तो हम लिखी पेड़ पौधा ऑक्सीजन देते, ऑक्सीजन मतलब प्राणवायु, यदि पेड़ पौधा नहीं रही तो सब जतका जीव जंतु है सब मर जाए, तो हमर पूर्वज मन लगा रहे तो उकर से हमन फल फूल छाया के रूप में ऑक्सीजन के रूप में प्राप्त करें, लेकिन अबोला काटना ज्यादा शुरू हो गए तो पेड़ नहीं रहेगा तो जीवन भी नहीं रहेगा, तो एकन नाले के पेड़ लगाना शुरू करें। वर्तमान में है करीब करीब 10 पीपल, 4-5 पेड़ आम, 2-3 बरगद, नीम और जामुन, ऐसे करके 25 की संख्या में करीब करीब तैयार पेड़ में है, अपन स्वयं से कर डाले हैं। एमन लड़का मन लगाए के टाइम में मोर मेहनत करे है और थोड़ा सा पब्लिक मन ला चाहिए कि कोई पेड़ लगा दिए है तो उहु मन ओकर सुरक्षा करे, जबकि प्राय देखे में आते के नुकसान करते हैं, तो सुरक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए और प्रत्येक आदमी को पेड़ लगाना चाहिए। काहे पेड़ हम लोग फल के साथ साथ वायु शुद्ध करते, छाया देते और गर्मी से रक्षा करते, मिट्टी के संरक्षण करते और वर्षा कराते, जहां जहां ज्यादा पेड़ है वहां ज्यादा ज्यादा वर्षा होते और अमृत रूपी फल देते, एक नाले के पेड़ लगाना जरूरी है।
1: बहुत बढ़िया जानकारी बताया हो सर जी। शिक्षक की रूप में देखें तो लड़का जौन हवा ओमन ला पढ़ाना जरूरी काहे होते और लड़का मन से आओ का सीखेला आप मन अपन सेवा काल में पाए हो इहुल बताओ सर?
0: हाँ, लड़का मन को पढ़ाना एक नॉलेज जरूरी है, यदि लड़का पढ़े लिखे नहीं है तो बस स्टैंड में गई, अब बस स्टैंड में एक एक कलर के बस है, ओला जाना है बेलतरा और चढ़ गए जांजगीर वाला बस में, काहे पढ़े नहीं है, अब जांजगीर मुद्री से बेलतरा खोजा था कहाँ मिली, अब यदि पढ़े लिखे रही तो ऊपर में लिखा रहे थे बेलतरा वाली बस, जांजगीर वाली बस जान जाही। दूसरा, घर में फसल कर रहे थे तो छोटे छोटे कीटनाशक के दवाई पड़े है और घर में लड़का बीमार है, ओकरो शीशी लाए मार रहे है, ओकर पिताजी है के जगह मढ़ा दीस, माँ अनपढ़ है तो डॉक्टर की दवाई नहीं पिला के कीटनाशक के दवा पिला दे तो लड़का खत्म हो जाए, एक नाव लेके पढ़े लिखना जरूरी है, यदि पढ़े रही तो सही दवाई के उपयोग कर ही घर सुरक्षित रही सब लड़का मन
1: जी, स्कूल जाबो पढ़े ला जिंदगी ला गढ़े ला सके थे। संगवारी हो, आज हमन गोठ बात करत हन सफल कृषक के रूप में श्रीमान राम प्रसाद साहू जी से, जौन हर सफल कृषक हवा व्यक्तित्व के धनी है, धार्मिक समाज सेवी ये रूप में बढ़िया से अपन योगदान देते और हम मन इनकर से प्रभावित हन और गोठ बात ला हमन आगु बढ़ाथन। सर जी, हमन जानबो कि खेती किसानी मा जौन गाय गरुआ हवे और हमर जीवन मा एकर का महत्व होते, गौ ला हमन माता कहथन तो इला पालन करना कतेक जरूरी होते, इहुल बताओ सर?
0: गौ माता है संसार में ऐसे मशीन नहीं है जे में पैरा डाला और दूध निकले, लेकिन गौ माता ऐसे है जे ला पैरा खिलाहा और अमृत निकलते। एक बार अकबर के दरबार में

0: अकबर प्रश्न पूछिस कि सबसे अच्छा दूध कौन सा होता है,
1: जी।
0: तो कोनो गाय कोनो भैंस के कोनो ऊंट के कोनो बकरी के बताइस, कोनो गाय के बताइन। बीरबल लंग अकबर पूछिस कि कौन सा दूध अच्छा होता है, कहिस भैंस का। तुमको गाय का बोलना चाहिए, तो बोले गाय का दूध दूध नहीं है, तो क्या है, तो बोले गाय का दूध तो अमृत है, और हम लोग जो पंचामृत बनाते हैं धार्मिक कथाओं के लिए, उसमें गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, ये पांच ठो उपयोग होता है। पंचगव्य बनाते हैं तो भी गाय का दूध, घी, गोमूत्र और गोबर का उपयोग करते हैं, है ना
1: जी।
0: तो धार्मिक काम में भी हमारे देसी गाय का बहुत ज्यादा महत्व है, और शरीर के पोषण के लिए, बच्चे की जब माँ मर जाती है तब गाय के दूध से ही बच्चा पाला जाता है, इस प्रकार उसका जीवन आगे बढ़ता है। दूसरा, गाय के गोबर से कृषि में उसका उपयोग होता है, अनाज अच्छा होता है, और गाय के गोबर से उत्पन्न अनाज को आप खाओगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। हम लोग करीब करीब 10-12 ठो गाय रखे हैं, तो कुछ देसी नस्ल की गाय हैं और कुछ विदेशी नस्ल की।
2: बहुत बढ़िया जानकारी बताया सर जी। गाय गरुआ और खेती किसानी में हमारे हर कैसे मदद करते, इहुला थोड़ा बताओ सर।
0: गोबर खाद डालथन ना तो फसल अच्छा होते। दूसरा, गाय के जो बच्चा होते वो बैल होते
1: जी।
0: तो बैल का हमन गाड़ी के रूप में, गाड़ी फांदे के रूप में, वाहन माने सामान ढोए के बर ओकर उपयोग कर सकथन
1: जी।
0: और नांगर भी फांदथन, कोपर भी चलाथन। तो कृषि के कार्य के लिए गोधन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है
1: जी।
0: काहे हम ट्रैक्टर चलाथन तो ट्रैक्टर से डीजल के खपत होते, ओकर से धुआं निकलते, लेकिन यदि बैला में चलाथन, बैला गोबर कर ही खेत में, तो ओकर से अनाज बाढ़ी ज्यादा उत्पन्न हो। तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए गो संवर्धन आवश्यक है, गाय गरुआ के वृद्धि आवश्यक है, गोपालन आवश्यक है।
2: बहुत बढ़िया बढ़िया जीवन उपयोगी जानकारी बताते सर जी मन। हमन आओ खेती किसानी करते आबो सर जी। सिंचाई के साधन बर आप मन का उपयोग करता सर, इहुल बताओ।
0: सिंचाई के साधन के लिए सबसे पहले तो हमन जब छोटे रहन ना, तो खूंटा घाट बांध से पानी से ही सिंचाई होत रही, जो वर्षा से
1: जी
0: जो भी हो, फसल हो जाती रही, कोनो कोनो साल दुकाल पड़े। लेकिन अब वर्तमान समय में बोरिंग वाला युग है, ट्यूबवेल वाला है, हमारे पास 3 ठो बोरिंग है, और ओकर से समय में पर्याप्त पानी मिलते और खेती बढ़िया होते, और कुछ कहीं बीमारी आते तो घर के लड़का मन किसानी करते हैं, वो मन ओकर उचित उपचार करते हैं।
1: अच्छा।
0: जैविक की जरूरत पड़ी तो जैविक की करते हैं, और रासायनिक दवाई के उपयोग करना पड़ता तो रासायनिक के करते हैं।
2: अतेक बढ़िया बढ़िया जानकारी बताई से सर जी मन। सर जी आओ हमन जानबो, आओ छोटे किसान हवाए, मध्यम किसान है, वो किसान बंधु मनला आप मन अपन तरफ से आओ संदेश के रूप में का कहना चाहते, ये बताओ सर।
0: किसान मन के लिए एक तो ये है, सबसे पहली आवश्यक है जन गौ माता मन बाहर में सड़क में घूमत है, ओकर लिए उचित व्यवस्था करे। अपन अपन गरुआ मल्ला, गाय बछड़ा मल्ला, बैला मल्ला घर में बांधे, काहे कर से खेती की सुरक्षा होते, उनकर उचित आहार की व्यवस्था करें, और घर में रखी तो गोबर भी हो ही, और गोबर के खाद के उपयोग करें, और रासायनिक खाद के उपयोग धीरे धीरे कम करत जाए। तो एमा से कहा है, पशु पक्षी नाना प्रकार के जीव जंतु एकर सुरक्षा हो है, काहे केमिकल डाले के वजह से, जैसे गेंगरुआ है, सर्प है, घोंघा है, एमन सब हमारे रासायनिक खाद कीटनाशक के वजह, सांप है, एमन सब खत्म हो जाते। तो प्रकृति में सब जीव जीवित रहने के रहे के अधिकार है। तो हमारे द्वारा जो रासायनिक चीज के उपयोग होते, ओकर से प्रकृति के संतुलन हम बिगड़ते थे। जो जीव जंतु आवश्यक है, सब लोग जीवित रहे के अधिकार है, और हम अनेक प्रकार के अपन लाभ के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशक उपयोग करके जीव हत्या करते हैं, तो ये पाप से बचना चाहिए।
2: बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी बताई से सर जी मन। और जात जात हमन अही कहबो, जैसे किसान आप मन लेह दे हो, वैसे झोक आशीष जी, अन्न धन से तुम्हार घर भरे, जुग जीव लाख बरिस जी। एकरे संग संगवारी हो आज के सफल कृषक मा हमन गोठ बात करें श्रीमान राम प्रसाद साहू जी से, और अतिक सुघर अपन अमूल्य समय दीच एकर बर। जय जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर।
0: राम राम।

बढ़िया सुघ्घर भेंट वार्ता रही से, बहुत सुघ्घर इमन विचारधारा के मास्टर जी मन, और जम्मो चिल्ला पशुपालक घलक हे, और बढ़िया पेड़ पौधा घलक जिन ऑक्सीजन प्राण वायु खले पेड़ पौधा घलक लगाए हैं, बहुत बढ़िया इमन किसान है। अभी सुने हैं बढ़िया जानकारी भेंट वार्ता ला, इमन है ग्राम पंचायत खैरा डंगनिया विकास खंड बिल्हा जिला बिलासपुर के श्री राम प्रसाद साहू जी मन, इखर लंग बढ़िया फुरिया फुरिया के गोट बात करीन हमार सहयोगी नंदू भैया मन। अब संगी हुआ कार्यक्रम में आगू बढ़ा थन, और एक ठन कार्यक्रम संबंधी सूचना है, हरेक गुरुवार और शुक्रवार के संझा 7:30 में फोन इन में आधारित कार्यक्रम प्रसारित करे जाते, एमा किसान भाई कृषि उत्पाद पशुपालन मुर्गी पालन मछली पालन और अपन स्वास्थ्य संबंधी समस्या के समाधान पाए खातिर विशेषज्ञ मनलंग फोन में सवाल पूछ के समाधान पाते। यही कड़ी में बृहस्पत के दिनांक 23 जुलाई 2026 के स्टूडियो में पशु चिकित्सा सेवाएं मुंगेली के संयुक्त संचालक डॉक्टर आर एम त्रिपाठी उपस्थित रहीं। इखर लंग बिहनिया 10:30 ले 11 बजे तक सवाल पूछे बर विषय रही वर्षा ऋतु में पशुओं को होने वाली बीमारियां एवं उनके बचाव, और बिहनिया 11 बजे ले 11:30 तक विषय हो है वर्षा ऋतु में कुत्तों में होने वाली अक्रामता, कुत्तों के काटने से होने वाले रेबीज के बीमारियों से बचाव के उपाय, ए विषय ले संबंधित समस्या और जिज्ञासा के समाधान पाए खातिर आप मन फोन नंबर नोट कर लेवा 2665592। दूसरा यह फोन नंबर है 310026। फोन लगाए के पहली बिलासपुर के स्टडी कोड है 0752। तब फोन खचित लगा है। एक कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग के प्रसारण 23 जुलाई 2026 और 24 जुलाई 2026 के संध्या 7:30 ले 8 बजे तक आप मन सुन सका था सूचना सिरागे। अब वह संगी हुआ बढ़िया सुघर असन गीत सुनबो जिन लगाए है अनुराग ठाकुर, कविता हिरकने, साधना यादव मन और संगवारी मन, तो आवा सुनन सुघर लोक गीत ला।

ए सुघ्घर गीत लगात रहिन हे अनुराग ठाकुर, कविता हिरकने, साधना यादव, संगवारी मन। अब संगी हुआ देखा मौसम के बात करबो तो आज के तापमान अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम कम ले कम 27 डिग्री सेल्सियस रही से। अब मंडी भाव कति जाबो तो आलू के भाव रही से 2000 ले 2500, प्याज के भाव तिफरा मंडी में 2500 ले 3000, पताल के भाव 2000 ले 2400 ले 2000 तक, और फूल गोभी के भाव 4000 ले 4500, और पत्ता गोभी 2000 ले 2500। अब फल के बात करबो तो सेब 1000 ले 15000 तक और 1500 तक, और संतरा 6000 ले 7500, पपीता 6000 ले 10000 तक, और अनानास 3500 ले 10000 तक भाव रही से। और अब संगी हुआ पानी, अब सामयिक सलाह बता था कि पानी गिरा थे रोपा लगाए बर अभी के समय बढ़िया रहते, और फिर रोपा ला बढ़िया ढंग ले उपचारित करके आपन लगाहा। अभी के समय में वर्षा के समय में बड़े बड़े पेड़ पौधा लगावा, पेड़ हा बढ़िया ढंग ले बाढ़ते, आम है, आमा के पेड़ है, नीम है, पीपल है, जामुन है, बरगद है, ये मन में पानी खलक डारे बर नहीं पड़े अभी लगाहा था। अब पशु मन ला संगी हुआ गाय बछरू मन ला पानी गिरा थे तो खुल्ला म झंडीला, उखर अपन पशु पाले है तो उखर रखवारी खुदे करा। और पानी बरसात में नमी पाए के बैक्टीरिया ज्यादा पनपे लगते, संक्रमण होए के खतरा रहते, तो पानी हर दूषित हो जाते ऐसा समय में। तो बरसात के बेरा में पानी ला बढ़िया डबका के और छान के पिया, बासी भोजन खलक झन करा, ताजा और गर्म भोजन करा। और माछी मंगसा घलव पनप जथे अभी पानी नमी पाए के, तो इमन ला भगवाए बर छेना सुलगा के बढ़िया नीम पान डाल के धुआं दिखावा, तो एखर ले माछी मंगसा कम होते। अब बेरा हो गए संगी हुआ घर जाए के, तो अपन फुलवा बहनी ला देवा विदा, जम्मो कार्यक्रम सुनैया भाई बहनी मन ला, फुलवा बहनी के माया भरे राम राम, जय जोहर।

कार्यक्रम ग्राम सभा अभी हम सुन रहे थे एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। श्रोताओं, कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आईटीआई में रिक्त सीटों में प्रवेश हेतु पुनः पंजीयन 17 जुलाई से 24 जुलाई तक प्रारंभ किया जा रहा है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवरा बिलासपुर में 1 वर्षीय व्यवसाय कोपा तथा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोटा में 1 वर्षीय व्यवसाय कोपा एवं स्टेनोग्राफर हिंदी तथा द्विवर्षीय व्यवसाय फिटर एवं इलेक्ट्रीशियन की रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु पुनः आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 17 जुलाई से 24 जुलाई तक आधिकारिक वेबसाइट cgiti.admissionsonline.nic.in पर पंजीयन कर आवेदन कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी पूर्व से पंजीकृत हैं और अगले चरण में भाग लेना चाहते हैं, वे अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन कर कंसेंट प्रदान करते हुए निर्धारित शुल्क जमा करें तथा आवश्यकता होने पर चॉइस फिलिंग में संशोधन परिवर्तन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी संबंधित संस्था से अथवा उक्त वेबसाइट पर प्रदर्शित हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को है। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं संसद समीक्षा।

अब जागृति शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी दलों के हंगामे के कारण लोकसभा में आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सका और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में आज कहा कि सरकार नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा किस नियम के अंतर्गत होगी और कितनी देर होनी चाहिए ये बातचीत में तय होगा। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो इसके लिए सरकार तैयार है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में मॉनसून सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया गया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने दो बार स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू की और हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि श्री कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों की ओर से महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में श्री कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। श्री तेनेटी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद श्री बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इन मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे शुरू होते ही विपक्षी दल हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य नीट के विरोध में नारे लिखी तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को बोलने की अनुमति दी। श्री वेणुगोपाल ने कहा कि जिस तरीके से विपक्षी दलों और विद्यार्थियों के साथ पुलिस व्यवहार कर रही है वह बहुत अनुचित है। उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, इसके बाद सदन में पेपर लीक मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कराई जाए। अगर सरकार उनकी मांग स्वीकार करती है तो वे चर्चा के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर लीक मुद्दा कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का नहीं है, ये सभी लोगों से जुड़ा मसला है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के साथ पुलिस

जिसने बर्बरता की, बेटियों के कपड़े फाड़े गए। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री सदन से बाहर नीट मुद्दे पर बयान दे सकते हैं, सदन में आकर इस मसले पर क्यों नहीं बोल सकते। इसके बाद श्री ओम बिरला ने कहा कि कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, ये बातचीत के दौरान तय होगा। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, विपक्षी सदस्य अपने अपने स्थानों पर जाएं और कार्यवाही चलने दें। श्री बिरला की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और हंगामा जारी रहा। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे श्री बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, उससे पहले ही विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन सदस्य उनकी बात पर ध्यान दिए बिना और नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। अध्यक्ष ने सदस्यों से सदन चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि आप प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्रश्नकाल के बाद जिन विषयों पर नोटिस आए हैं उन सब पर चर्चा कराई जाएगी, लेकिन ये सब प्रश्नकाल के बाद ही संभव होगा। मैं आपके मुद्दे पर चर्चा देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि सदस्य सदन नहीं चलाना चाहते हैं, ये अच्छा संदेश नहीं है। उनकी किसी बात पर जब सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया तो श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही 1 मिनट के भीतर ही 12 बजे तक स्थगित कर दी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर में चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामुदायिक अवसंरचना का सृजन करना है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, महिला केंद्रित पहलों, पेयजल, स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, पशुपालन तथा अन्य सामुदायिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि पीएमजेवी के एक मांग आधारित योजना है और इस योजना के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। योजना के अंतर्गत अनुमोदित पात्र परियोजनाओं के लिए निधियां जारी की जाती हैं। विगत 5 वर्षों के दौरान पीएमजेवीके के अंतर्गत तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। इस अवधि के दौरान जिले के लिए न तो कोई निधि आवंटित या जारी की गई है और न ही योजना के अंतर्गत जिसे कोई कार्य किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गुन ने एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए आईटी अधिनियम 2000 के तहत 25 फरवरी 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों के भाग 3 में डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान है। शिकायतों का निपटान आईटी नियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(ख) अवैध सामग्री को हटाने या उस तक पहुंच को अक्षम करने के लिए मध्यस्थों को अधिसूचना का प्रावधान करती है। उन्होंने कहा कि शिकायतों के आधार पर सरकार ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। सरकार ने पिछले 2 वर्षों में अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने और आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67(क) भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 और स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के उल्लंघन के लिए भारत में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सार्वजनिक पहुंच से प्रतिबंधित कर दिया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्नपत्र लीक मामले और इसके विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर लगातार 3रे दिन गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच जहां सरकार ने कहा कि वह नीट प्रश्नपत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही 3 बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में तीस्ता नदी पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएचपीसी की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में 20 लोगों की मौत की जानकारी दी।

सदस्यों ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। श्री राधाकृष्णन ने सदन को भारत में स्वदेश में विकसित पहली हाइड्रोजन ईंधन से संचालित रेलगाड़ी के परिचालन शुरू होने की भी जानकारी दी और इसे स्वच्छ, टिकाऊ तथा तकनीकी रूप से उन्नत रेल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि सदन इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और रेल अधिकारियों को बधाई देता है। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। श्री खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उन्होंने कहा कि सोमवार को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई से उन्हें बेहद पीड़ा हुई है। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। श्री खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी हुई थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद जब बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तब उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में हंगामा करने लगे। श्री हरिवंश ने सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि ये प्रश्नकाल है। आजादी के 50 वर्ष पूरे होने पर सदन में ये संकल्प लिया गया था कि किसी भी हालत में प्रश्नकाल और शून्यकाल चलाया जाएगा। अगर सदन अपनी बात पर कायम नहीं रहता है तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि सवालों के जवाब तैयार करने में कितना समय और जनता का धन लगता है, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने अपील की कि कृपया प्रश्नकाल चलने दें, अपनी बात का असर न होते देख श्री हरिवंश ने एक मिनट के भीतर ही बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्यवाही को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और आसन की व्यवस्था मिलने पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं और छात्रों के भविष्य के लिए नीट परीक्षा से जुड़े विषय पर चर्चा के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। सरकार ने एक एक करके जो भी कदम उठाए हैं उन्हें देश के सामने रखना हमारा दायित्व है। श्री रिजिजू ने कहा कि उन्होंने कई दलों के सदस्यों से बात की है और वे सभी चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, हमने पहले दिन से बात कही है, लेकिन चर्चा नियम के तहत होती है। चर्चा कब होनी है, कितनी लंबी होनी है और किस नियम के तहत होनी है, इसका निर्णय सभापति सभी दलों के नेताओं से बात करने के बाद लेंगे। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि सरकार हर अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने कहा, विपक्ष की ओर इंगित करते हुए कहा कि ये इंडी गठबंधन का व्यवहार बहुत गैर जिम्मेदाराना है। यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। विपक्ष संसद की मर्यादाओं को तार तार करके प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहा है। सदन के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार एक पारदर्शी और लोगों के हित में फैसले करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की जो जन विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, वे उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का प्रजातांत्रिक व्यवस्था और उसके मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी सदस्य नियम 267 के तहत चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि पिछले 4 दशकों में राज्यसभा में नियम 267 का इस्तेमाल दुर्लभतम मामलों में हुआ है। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने सवाल किया कि दुर्लभतम मामला क्या होता है।
उन्होंने कहा कि विपक्ष जिस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है वह दुर्लभतम ही है। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और उपसभापति हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित

0: कर दी। तीन बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में नीट प्रश्न पत्र लीक मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच आसन की अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कांग्रेस ने चर्चा की मांग की थी, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, अब विपक्षी सदस्य शर्त रखकर चर्चा टालने की कोशिश कर रहे हैं। उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपने कहा है कि नियम 267 का उपयोग दुर्लभतम मामलों में किया जाता है, जो घटना हुई है उससे अधिक दुर्लभ से दुर्लभतम मामला भला और क्या हो सकता है, बच्चों पर बल प्रयोग किया गया है। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा तेज कर दिया और उपसभापति हरिवंश ने सदन में व्यवस्था बनते न देख बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा की कार्यवाही संचालन संबंधी नियम 267 के तहत सभापति की अनुमति से कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण जनहित के किसी विषय पर चर्चा कराने के लिए सदन की निर्धारित कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध कर सकता है। उच्च सदन में 20 जुलाई को मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद से ही नीट प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर गतिरोध लगातार बना हुआ है और अभी तक कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो सका है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: संसद समीक्षा अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। वक्त है फिल्म संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा का।

कार्यक्रम रजनीगंधा सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का मैं अंशुल गुलकरी स्वागत करता हूं। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, आज तारीख है 22 जुलाई। आज हिंदी सिनेमा के आसमान का वो सितारा मुस्कुरा रहा है जिसकी आवाज ने न जाने कितने टूटते दिलों का सहारा दिया। एक ऐसी आवाज जिसमें दर्द भी था और उस दर्द को सहने का हौसला भी। आज जन्मदिन है दर्द के बादशाह और भावनाओं के जादूगर आदरणीय मुकेश जी का। उनका जीवन और उनका संगीत महज एक करियर नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति समर्पण की एक खूबसूरत मिसाल है। आइए मुकेश साहब के सुरेले सफर की शुरुआत करते हैं इसी बेहद खूबसूरत और जिंदगी का फलसफा सिखाते इस नगमे के साथ।

श्रोताओं, मुकेश जी का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री जोरावर चंद माथुर पेशे से इंजीनियर थे और माता चंद्रानी माथुर एक कुशल गृहिणी थी। 10 भाई बहनों के भरे पूरे परिवार में मुकेश साहब छठे नंबर पर थे। दिल्ली की गलियों में पढ़ाई करते करते उनके भीतर संगीत का एक पौधा पनप रहा था। दरअसल, जब उनकी बड़ी बहन संगीत सीखती थी तो नन्हे मुकेश छुप छुप कर उन्हें सुना करते थे। बस वहीं से सुरों का यह सफर शुरू हो गया। श्रोताओं, सावन का महीना आने को हो और मुकेश जी की आवाज ना गूंजे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सुनिए ये सदाबहार गीत।

सच में मनवा तो मोर की तरह नाच ही उठता है इस गाने को सुनकर। श्रोताओं, मुकेश जी के दिल में बचपन से ही कुंदन लाल सहगल साहब और पंकज मलिक साहब जैसे महान गायकों के लिए एक खास जगह थी। स्कूल के फंक्शन हो या दोस्तों की महफिल, वे सहगल साहब के ही गाने गाते थे। हालांकि उन्होंने संगीत की औपचारिक शिक्षा पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी से ली थी, लेकिन उनके गायन पर केएल सहगल साहब का ऐसा असर था कि लोग भ्रमित हो जाते थे। श्रोता, एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। जब मुकेश जी का एक शुरुआती गाना सहगल साहब ने सुना तो वो खुद हैरान रह गए और बोले, अरे ये गाना मैंने कब रिकॉर्ड कर दिया, मुझे तो याद ही नहीं। सोचिए, गुरु को भी अपने जैसा मुकम्मल भ्रम दे देना, ये सिर्फ मुकेश जी ही कर सकते थे। और आपको पता है वो गाना कौन सा था? वो गाना था ये।

इस नायाब हीरे को तराशने का श्रेय जाता है मशहूर अभिनेता मोतीलाल जी को, जो मुकेश जी के दूर के रिश्तेदार रहे। एक शादी में जब मोतीलाल जी ने मुकेश जी की आवाज सुनी तो समझ गए कि ये लड़का इतिहास रचने के लिए पैदा हुआ है। पिताजी की थोड़ी असहमति थी, लेकिन 1939 में मुकेश जी ने मुंबई का रुख किया। शुरुआत में उन्होंने 1941 की फिल्म निर्दोष में अभिनय भी किया और गाना भी गाया, लेकिन असली पहचान, जैसा कि मैंने अभी आपको सुनवाया, फिल्म पहली नजर के इस गीत से मिली, जिसके संगीतकार अनिल बिस्वास साहब थे। इसके बाद तो मुकेश जी ने पलट कर देखा ही नहीं। उनकी आवाज की इसी सादगी और गहराई ने उन्हें शोमैन राज कपूर साहब की रूह बना दी। राज कपूर साहब अक्सर कहा करते थे, मैं तो सिर्फ एक शरीर हूं, मेरी आत्मा तो मुकेश है। आइए सुनते हैं एक ऐसा ही जादुई और रूहानी गीत।

श्रोताओं, राज कपूर साहब और मुकेश जी की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को वो कल्ट दिए जो आज भी दुनिया के कोने कोने में गूंजते हैं। चाहे रूस हो या चीन, हर जगह इस आवाज का डंका बजा। अपने सुनहरे सफर में मुकेश साहब ने एक नेशनल अवार्ड और 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स अपने नाम किए। चलिए, राज साहब और मुकेश जी की उसी रूहानी जोड़ी का एक और कल्ट गाना सुनते हैं जिसने भारतीय संगीत को वैश्विक पहचान दी।

श्रोताओं, नियति बड़ी क्रूर होती है। जो आवाज करोड़ों दिलों को धड़कना सिखाती थी, एक दिन उसी आवाज का दिल थम गया। 27 अगस्त 1976 अमेरिका का डेट्रॉइट शहर, जहां मुकेश जी एक कॉन्सर्ट के लिए गए थे, अचानक दिल का दौरा पड़ने से वो हमसे हमेशा के लिए दूर चले गए। उनकी मृत्यु की खबर सुनकर राज कपूर साहब फूट फूट कर रोए थे और उन्होंने कहा था, आज मेरी आवाज चली गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका आखिरी रिकॉर्ड किया गया गाना फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए था, चंचल शीतल निर्मल कोमल। वे शारीरिक रूप से चले गए, लेकिन अपनी आवाज को हमारे पास हमेशा के लिए छोड़ गए। बिछड़ कर भी जो जुदा नहीं होता, ऐसी ही एक आवाज का नाम मुकेश है। आइए सुनते हैं उनका ये कालजयी गीत।

0: सचमुच श्रोताओं, जीना यहाँ मरना यहाँ। मुकेश जी आज भी अपनी इस मखमली आवाज के जरिए हमारे सुख दुख, हमारी मोहब्बत और हमारे आंसुओं में जिंदा है। उनके इस जन्मदिन पर पूरा रजनीगंधा परिवार और हमारे सभी श्रोता इस महान फनकार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उम्मीद है मुकेश जी के सुरों से सजी आज की ये खास पेशकश आपके दिलों को छू गई होगी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अपने दोस्त, अपने साथी अंशुल गुलकरी को दीजिए आज कार्यक्रम रजनीगंधा को यहीं समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार। कार्यक्रम रजनीगंधा अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं समाचार।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बेहतर रेल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीक के कारण रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने के महत्व पर भी बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
3: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
2: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
4: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।

0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। आज लोकसभा की कार्यवाही 3 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के विचार सुने है और सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही बाधित करने के बजाय विस्तृत चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
2: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
3: हम एडजर्नमेंट मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से एडजर्नमेंट मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में श्री वांगचुक ने कल रात अस्पताल में उनसे मिलने के लिए दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में देश भर में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने कहा कि सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तोतापुरी आमों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तीनों राज्यों में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में लगातार हो रही गिरावट की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन, दान प्रणाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पद भरने

0: ने और धार्मिक समिति के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह ही अडिग है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या स्थिर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सातवें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और पेंशन से संबंधित संशोधनों की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्रों के साथ सेवामुक्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: नामची जिले के एनएसपीसी की टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू दल काम कर रही है। कम विजिबिलिटी और मीथेन गैस के लीकेज के वजह से शवों को निकालना मुश्किल हो गया है। इस बीच सिक्किम सरकार ने मरने वालों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए है। केंद्र सरकार के अलावा सिक्किम सरकार और एनएसपीसी ने मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के समय टनल के अंदर कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: कश्मीर में आज अनंतनाग जिले के लालचौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतक पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बीरोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित ये नौका आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बल देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिया शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केज से मुलाकात की। श्री सोनोवाल ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। इस बीच पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के युशी तनाका से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लक्ष्य सेन ने पहला गेम अपने नाम कर लिया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
2: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़ककर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिड कैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे के नुकसान से 96.57 प्रति

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मुकेश की आवाज में। शब्द रचना है साजन दहलवी की, संगीत रचना श्याम जी।

आइए सुनते हैं अगला गीत मुकेश की आवाज में। नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है संगम।

आइए सुना जाए अगला और अंतिम गीत, जिसे लिखा है कमर जलाल आबादी ने। धुन है कल्याण जी आनंद जी की, फिल्म का नाम है छलिया, आवाज आप जानते हैं मुकेश की।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको एक दिलचस्प घटना बताते हैं। एक लड़का था जिसकी बहन की शादी हो रही थी और अभिनेता मोतीलाल चूंकि उसके रिश्तेदार थे इसलिए वो इस शादी में शामिल होने के लिए आए थे। चूंकि माहौल शादी के जश्न का था तो उस लड़के से कहा गया कि तुम गाना गाओ क्योंकि परिवार में सब जानते थे कि इसे गाने का शौक है। उस लड़के ने गाना गाया और सब लोग मुग्ध होकर सुनते रहे। मोतीलाल जी को लगा कि इस लड़के में प्रतिभा है। उन्होंने उसे मुंबई बुला लिया और बस यहां से फिल्म संगीत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया क्योंकि ये नौजवान था मुकेश चंद्र माथुर।

0: रहेंगे।
1: हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास को खंगालें तो जो सबसे रोशन सितारे हमें नजर आते हैं पुरुष गायकों में, वो हैं मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार। जाहिर है कि इन तीन मुख्य सितारों को अलग कर दें तो फिल्म संगीत के न जाने कितने अनमोल गाने फिल्म संगीत के इतिहास से हट जाएंगे। मुकेश चंद्र माथुर के अपने फैन रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में रहे हैं। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि मुकेश की गायकी में ऐसी सादगी, ऐसी सरलता है।

0: कि यूं लगता है जैसे वो हमारे लिए गा रहे हैं और हम उनके साथ गा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि आपके परिवार में अंत्याक्षरी हो रही हो, कोई पिकनिक हो, कोई अन्य उत्सव हो, गाने का माहौल हो, तो कोई ना कोई मुकेश का फैन आपको जरूर मिल जाएगा। यूं लगेगा जैसे मुकेश उसकी आवाज में गा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुकेश जी की जीवन यात्रा।
1: मैंने

मुकेश चंद्र माथुर का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। पिता लाला जोरावर चंद इंजीनियर थे और माँ थी चांद रानी। दरअसल पुरानी दिल्ली में पैदा हुए इस लड़के के जहन में संगीत की महक बहुत पहले से थी। बहुत बचपन से इस लड़के ने गुनगुनाना शुरू कर दिया था। ये वो दौर था जब सबसे बड़े गायक थे कुंदन लाल सहगल और सभी उनके दीवाने हुआ करते थे। जाहिर है कि यंग मुकेश भी कुंदन लाल सहगल के फैन थे। दसवीं पास की उस जमाने में इतनी पढ़ाई बहुत मानी जाती थी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग में काम करना शुरू कर दिया। तकरीबन यही दिन थे जब उनकी बहन की शादी हुई और वही घटना हुई जो हमने आपको इस कार्यक्रम की शुरुआत में सुनवाई थी, और इस तरह से मुकेश का मुंबई जाने का रास्ता खुल गया। हुआ यूं कि रंजीत मूवी टोन की ओर से एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि एक नए गायक की तलाश जारी है। और फिर क्या हुआ कि चंदूलाल शाह के जारी किए गए इस विज्ञापन को देखकर मुकेश मोतीलाल जी के पास मुंबई आ गए। यहाँ आने के बाद उन्होंने पंडित जगन्नाथ प्रसाद से संगीत की तालीम लेनी भी शुरू कर दी और उन्होंने बड़ी शिद्दत से ये सपना देखा कि वो गायक अभिनेता बनेंगे, और ऐसा हुआ भी। सन 1941 आया, मुकेश ने अपनी पहली फिल्म साइन की निर्दोष। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया और गाया भी। यानी ये वो पहला गाना है जो मुकेश जी ने गाया, पर इस गाने में मुकेश जी ने प्लेबैक नहीं किया, यानी किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए गाया। ये गाना था दिल ही बुझा हुआ है तो फसले बहार क्या।

मुकेश जी का पहला प्लेबैक गाना कौन सा था ये भी आपको बता देते हैं। सन 1945 में फिल्म पहली नजर बन रही थी। संगीतकार अनिल बिस्वास से मोतीलाल ने ये कहा कि आप मेरे लिए एक युवा गायक से प्लेबैक करवाएं। मुकेश की आवाज जब अनिल बिस्वास ने सुनी तो उन्हें ये आवाज जम गई और फिर मुकेश ने गाया अपना पहला प्लेबैक सॉन्ग पहली नजर फिल्म में।

जब कुंदनलाल सहगल तक इस गाने की ख्याति पहुंची और उन्होंने इस गाने का रिकॉर्ड सुना तो वो चकित रह गए। उन्होंने तपाक से ये सवाल पूछा, ये गाना मैंने कब गाया? इसके बाद उन्होंने मुकेश को अपने घर बुलवाया और कहा कि तुम गाने गाते जाओ। मुकेश एक के बाद एक कई गाने गाते चले गए और कुंदनलाल सहगल उस जमाने के सुपरस्टार, उस जमाने के लाजवाब गायक और अभिनेता मुकेश को मुग्ध भाव से सुनते चले गए। उन्हें लगा कि यही है मेरा उत्तराधिकारी और उन्होंने अपना रियाज वाला हारमोनियम मुकेश को भेंट कर दिया। ये कुंदनलाल सहगल का मुकेश के लिए आशीर्वाद था। सन 1941 में निर्दोष में अभिनय करने के बाद सन 1943 में मुकेश ने एक और फिल्म में अभिनय किया जिसका नाम था आधा बर्ज। सन 1953 में उन्होंने फिल्म माशूका में अभिनय किया जहां उनकी हीरोइन थी सुरैया और सन 1951 में मल्हार फिल्म में अभिनय किया। संगीतकार रोशन की ये पहली फिल्म

वो दौर था जब मुकेश कुंदन लाल सहगल की छाया में थे, उनके प्रभाव में थे और उनके जैसा गाया करते थे। सन 1948 में नौशाद ने दिलीप कुमार की फिल्म मेला के लिए मुकेश को गाने का मौका दिया और नौशाद के जरिए कुंदन लाल सहगल की छाया से बाहर आया उस जमाने का युवा पार्श्व गायक मुकेश। और फिर बस मुकेश की अपनी शैली तैयार हो गई। सन 1949 तक मुकेश का स्वर कुछ ऐसा हो चुका था।

1948-49 का दौर भारत में फिल्म संगीत के बदल जाने का दौर था। कैसे, आपको बताते हैं। लगातार नई प्रतिभाएं आती चली जा रही थीं और इन नई प्रतिभाओं में शामिल थे युवा संगीतकार शंकर जयकिशन। शंकर सिंह रघुवंशी और जयकिशन पांचाल किस तरह से मिले, ये तो एक इतिहास है। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म बरसात में संगीत देने का मौका दिया और इस युवा संगीतकार जोड़ी ने कई युवा कलाकारों से गाने गवाए, जिनमें से एक मुकेश भी थे। फिल्म बरसात में मुकेश ने दो गाने गाए थे। एक गाना था ये।

0: प्यार है।
1: और इसके बाद राज कपूर, शंकर जयकिशन और मुकेश की इस तरह से टोली बनी कि एक के बाद एक इनकी फिल्में आती चली गईं और इन तमाम फिल्मों में मुकेश के गाने आते चले गए। यहां तक कि मुकेश का आखिरी गीत भी राज कपूर की ही फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था। ये कहानी बाद में, पहले आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताते हैं। जरा सोचिए कि मुकेश ने किस संगीतकार के लिए सबसे ज्यादा गाया होगा। आपने सही सोचा है, शंकर जयकिशन के लिए मुकेश ने कुल 133 फिल्मों में पार्श्व गायन किया, जबकि कल्याण जी आनंद जी के लिए 99 फिल्मों में। जाहिर है कि कल्याण जी आनंद जी भी मुकेश के कम फैन नहीं थे।

0: था।
1: चलिए फिर से पीछे चलते हैं, समय के चक्र को घुमाते हैं और पहुंच जाते हैं सन 1948 में। आप सोच रहे होंगे कि यहां हम क्यों आए हैं। दरअसल यहां हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि बरसात वो पहली फिल्म नहीं थी जिसमें मुकेश ने राज कपूर के प्रोडक्शन के लिए गाया था। राम गांगुली के निर्देशन में आग में वो ये गाना गा चुके थे।

अब राज कपूर के साथ मुकेश ने किन किन फिल्मों के लिए गाया, एक के बाद एक लड़ी में फिल्में और गाने पिरोते हुए आज के फनकार कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आप हमारे साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए जरा अपने पैंट को थोड़ा सा ऊपर मोड़ लीजिए, सिर पर एक टोपी पहन लीजिए और सन 1951 में चलकर उछलते हुए मेरे साथ

सन 1964 में राज कपूर ने अपनी बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म बनाई, जो राज कपूर की पहली कलर फिल्म थी, फिल्म संगम। इस फिल्म में मुकेश ने ये मार्मिक गाना गाया।

0: रहा।
1: सन 1966 तक हम आ पहुंचे हैं और यहाँ हमारे हाथों में है फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक मारे गए गुलफाम। हमें याद शैलेंद्र की आ रही है जिन्होंने इस पुस्तक पर तीसरी कसम फिल्म बनाई और इस फिल्म में मुकेश ने बड़े मन से गाया।

और फिर सन 1978 मुकेश को अमेरिका की यात्रा पर जाना था और जाने से पहले जो आखिरी गीत उन्होंने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए रिकॉर्ड करवाया वो सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के लिए था।

इस गाने को रिकॉर्ड करने के बाद मुकेश ने एक लंबी उड़ान ली अमेरिका के लिए, और वहां से इससे भी लंबी उड़ान, वो इस फानी दुनिया को अलविदा कह के चले गए। ये बातें हुई राज कपूर और मुकेश के साथ वाले गानों की। लेकिन ऐसा नहीं था कि राज कपूर के लिए सिर्फ उनके प्रोडक्शन में मुकेश ने गाया हो। जरा 1950 में केदार शर्मा की बनाई फिल्म बावरे नैन का ये गाना सुनिए और याद कीजिए नीली आंखों वाले राज कपूर को।

अब आप सोच रहे होंगे ये भी कोई बात हुई कि पूरे आज के फनकार कार्यक्रम में केवल राज कपूर की बातें। अरे नहीं नहीं, ये नाइंसाफी हम नहीं होने देंगे। दिलीप कुमार के लिए जो प्लेबैक मुकेश ने किया वो तो लाजवाब था। फिल्म यहूदी का ये गाना सुनिए, शैलेंद्र के बोल हैं।

लेकिन ऐसा नहीं है कि दिलीप कुमार या मनोज कुमार के लिए ही मुकेश ने प्लेबैक किया हो। याद कीजिए काका राजेश खन्ना को फिल्म मर्यादा में।

0: जानी।
1: जाहिर है कि फिल्मी दुनिया के न जाने कितने नायकों ने पर्दे पर होंठ हिलाए, लेकिन आवाज तो मुकेश की थी, यानी उन्होंने मुकेश के गीत गुनगुनाए। मुकेश को भले ही एक दर्द भरी आवाज कहा जाता हो और रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड के बुक स्टॉल्स पर जो गानों की किताबें मिलती हैं उनके शीर्षक हों मुकेश के दर्द भरे नगमे, लेकिन मुकेश केवल दर्द भरे नगमों के गायक नहीं थे। जब भीगा भीगा मौसम आता है तो भला कौन सा ऐसा मनमौजी व्यक्ति हो जो ये गाना ना गुनगुनाए।

यानी हम ये कहना चाहते हैं कि मुकेश ने तरह तरह के गाने गाए। वो केवल एक दर्द भरी आवाज नहीं थे, वो एक जिंदा दिल आवाज थे। मुकेश एक बेमिसाल शख्सियत जिन्होंने हर समय लोगों का भला किया। 27 अगस्त 1976, डेट्रॉइट मिशिगन, एक कॉन्सर्ट चल रहा है और मुकेश गाना गा रहे हैं। पर्दे के पीछे जाते हैं, दिल का दौरा पड़ता है और वो इस अनजान दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं। कॉन्सर्ट जारी रहता है, उनकी आवाज को आगे बढ़ाते हैं उनके बेटे नितिन मुकेश। उसके कुछ दिन बाद मुंबई के एयरपोर्ट पर एक ताबूत उतरता है। एयरपोर्ट पर बेसब्री से इंतजार में हैं अभिनेता राज कपूर और अभिनेता मनोज कुमार। इसके अलावा फिल्मी दुनिया की कई जानी मानी शख्सियतें। मुकेश के ताबूत को देखकर राज कपूर रो पड़ते हैं और कहते हैं, मेरी तो आवाज ही चली गई। मुकेश के जाने से एक खला आ गई और ये खला कभी मिट नहीं सकती। मुकेश हम सब की आवाज हैं, हम सब थोड़े थोड़े मुकेश हैं।

0: जाना कहां।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक मुकेश पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
2: आज के फनकार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाए गीत कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, जब आपको प्रेम हो जाता है तो फर्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया को जीतने वाले सिकंदर हैं या गलियों में घूमने वाले कलंदर। लेकिन हाँ, प्यार में सब्र की बार बार परीक्षा ली जाती है। शायद मोहब्बत ऐसी ही होती है जो जख्म भी देती है और मरहम भी बन जाती है। लेकिन हाँ, इस परीक्षा में हर बार मैं तुमसे और दूर हो जाती हूँ। दूर, बहुत दूर, बहुत दूर।

प्रेम हर बार प्यारा नहीं होता, कभी कभी प्रेम क्रूर, विभत्स और भयावह भी हो जाता है। नाना नाना, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे बीच है प्यार, बहुत प्यारा। पर हाँ, तुम रहना तब भी जब किसी लड़ाई के बाद हमारे बीच चुप्पियां बिछी हों। सच कहती हूँ, तुम्हारी मौजूदगी मेरी सुलह बन जाएगी। हाँ,

शायद मैं ज्यादा भावुक हूँ, शायद मेरी ही अपेक्षाएं ज्यादा हैं। हाँ, शायद प्रेम ऐसा ही होता है। कहते हैं रिश्ते किसी तूफान की तरह नहीं टूटते, ज्यादातर गिरावटें बिना आवाज की होती हैं। हम उम्मीदों की टोकरी अपने सर पर लिए घूमते हैं और उम्मीद हर रोज किसी तारे की तरह टूटकर बिखर जाती है।

चाय गीत कार्यक्रम में अब लेते हैं एक अंतराल।

छाया गीत में आप हैं मंदाकिनी जोशी के साथ। उन सवालों के जवाब ढूंढने में दिमाग मत उलझाओ जिनका कोई जवाब है ही नहीं। हाँ, दूर निकल जाओ, बहुत दूर। कुछ पहाड़, जलती हुई लकड़ी की आंच, एक शांत मन। सच कहूं, मुझे तो बस इतना ही चाहिए। दूर कहीं कोई नदी चुपचाप कलकल कलकल बह रही हो, बस जीवन यूं ही चलता रहे अपनी धुन में, बिना शोर किए एकांतवास में।

अक्सर दिल इतना थक जाता है कि वो शिकायत करना छोड़ देता है। पर सोचिए, क्या वाकई जिंदगी इतनी सस्ती है कि कोई आपसे दो शब्द कड़वे बोलेगा और हमारी पूरी हस्ती बिखर जाएगी, प्यार से हमारा विश्वास उठ जाएगा? नहीं। हाँ, ये सच है, कुछ लोग प्रेम नहीं रचते, वो विवाद रचते हैं, रणनीति रचते हैं, और तब सबसे गहरी बुद्धिमता स्पष्ट शब्दों में नहीं, संयमित मौन में होती है। हाँ, संयमित मौन में।

कई बार प्रेम में असफल हो जाने पर वेदनाएं हमें हमारे अस्थियों और मांस मज्जों से भी ज्यादा बोझिल लगने लगती हैं। भावनाएं मानो जम सी जाती हैं। किसी की बेरुखी या खामोशी हमें तोड़ देती है और जीवन ऐसा मोड़ ले लेता है जहां सब कुछ होते हुए भी जैसे सब खत्म हो गया हो। मन खाली हो जाता है। गुलजार साहब की एक पंक्ति याद आती है, दर्द होता रहा छटपटाता रहा, लेकिन हाँ जब घुटन महसूस होती है तो साहिर लुधियानवी याद आते हैं। ये महफिलें, ये तंज, ये ताने, ये जिंदगी है या कोई मजाक, वहां सवाल भी थककर चुप हो जाते हैं।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि ये गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा की अवधि तय करे और सभी पहलुओं पर खुलकर बात करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने विपक्ष से इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार का साथ देने की अपील भी की। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। चीन के चांगझोउ में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:53 पर पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।